0: Don't postpone happiness for someday. You know, someday is not a date on the calendar. कहीं पर दिखा है आपको कैलेंडर पे someday लिखा हुआ? Monday, Tuesday, Wednesday, all right. But that day is not on a calendar, which is someday. Travel, love, laugh loudly. Wear the outfit. Start the thing. Now is the upgrade. Now is the upgrade. Upgrade yourself. चलिए अभी मौका देती हूँ. जुड़िए मेरे साथ इस गेम शो पर.
1: कर हिंदी हिंदी बोल
2: कर हिंदी हिंदी बोल कर हिंदी हिंदी बोल
0: ओय ओय ओय ओय तो जुड़िए. इफ दैट गिव्स यू हैप्पीनेस टू बी ऑन द रेडियो तो जुड़िए. अगर ये गेम शो में खेलना आपको बहुत मन है. गुड इवनिंग फायरशो रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
3: हेलो,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: वैभव.
0: वैभव, आप खेलना चाहते हैं गर्ल हिंदी हिंदी बोल?
3: जी, हाँ जी.
0: ऑल राइट, वक्त करा शुरू किया जाए आपका?
3: जी बिल्कुल.
0: ऑसम, वैभव का वक्त शुरू हो गया. ही इज जॉइंड अस ऑन फनीशर रेडियो ऑन 104.9 एफएम, गर्ल हिंदी हिंदी बोल. बहुत बहुत स्वागत आपका वैभव.
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा स्वागत कर रही हैं.
0: वेरी नाइस.
3: आपको भी बहुत स्वागत इस शुक्रवार की शाम को.
0: वेरी नाइस.
3: और आज के इस खेल में आपका भी हम स्वागत करते हैं.
0: वेरी नाइस.
3: आप स्वागत करते रहिए.
0: टन टन, ऐसा वाला मेरे पास म्यूजिक होना चाहिए था अभी जो मैं बोलती द टाइम हैज बिगन. सो वेयर हैव यू बीन?
3: बिल्कुल, संगीत आने से अच्छा रहता है हमेशा,
0: है ना. वेयर हैव यू बीन थ्रू आउट द डे?
3: जी
0: कहां थे आप? वेयर हैव यू बीन थ्रू आउट द डे?
3: मैं अपने काम पे व्यस्त था आज, बस आपके साथ काम से लौटते हुए फोन कर लेते हैं. तो
0: फोन कर लेते हैं? अच्छा, अच्छू. यही तो हुआ ना टॉइंग. नो वरीज, थैंक यू फॉर कॉलिंग. दो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं आप. कहाँ से वैसे पढ़े लिखे हैं?
3: हाँ जी, मैं बंगाल, मतलब पहले झारखंड था.
0: ये फोन वोन नहीं चलेगा. ओह माय गॉड, वैसे हम गली में हिंदी खेल रहे हैं लेकिन मेरा मूड जो है एक के बाद एक जो गाने बज रहे हैं, यू नो, पूरे दिल के साथ इस गाने को सुनिए क्योंकि दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचे ना तो लगती है टाइम.

0: Vishal Mishra at his best in Animal, Ranbir Kapoor, Tripti Dimri, ye wale gaane mein. Thank you dosto, tune in karne ke liye 104.9 FM Funny Jaw Radio par. Agar aapko financial guidance ki zarurat hai na, My Time Equity led by CPA Sudhir Pai offers portfolio management, real estate and alternative investments. Aap visit kar sakte hain mytimeequity.com ya fir phone uthaiye, number dabaiye 4697021272. Yahan par chaliye apne next caller ko main on air le rahi hu. Good evening, Faisha Radio. Aapka swagat hai. What's your name, please?
1: Archana.
0: Archana. Archana ji, kya haal chal hai?
1: Main bilkul theek hu.
0: Wonderful. Aapka waqt shuru kiya jaye gal hindi ke liye.
1: Mm-hmm.
0: Awesome. Look, she's totally in character. Aisa lag raha hai. Mujhe lag raha hai phone ko ekdam muh se very close se baat kar rahi hai. Aisa hai?
1: Haan.
0: Hai na? Kyun? Why?
1: क्योंकि पास से बात करने में आवाज अच्छी आती है.
0: हाँ तो रे एकदम क्लियर तो आ रही है, लेकिन मतलब थोड़े से दूर रहने से भी आ ही जाएगी. इतना तो आजकल माइक्रोफोन स्मार्ट हो गया है, आजकल स्मार्ट जमाना है एआई का.
1: हाँ इसे दूर संचार
0: अध्ययन. अच्छा
1: या मैं आपसे बात कर रही हूँ आपके दूर संचार के माध्यम से.
0: ऑलराइट, वेरी नाइस. सो वेयर आर यू राइट नाउ?
1: मैं अपने घर के बाहर ही हूँ.
0: पार्क्ड हो? गाड़ी में थे अभी तो, बिकॉज आई कुड हियर द सॉन्ग व्हेन यू कॉल्ड.
1: हाँ मैं अपनी गाड़ी में ही थी अभी तो.
0: थी मतलब अब है ना?
1: हाँ अभी भी बैठी हूँ, बस जाने की तैयारी कर रही हूँ अंदर.
0: कहाँ पे?
1: घर के अंदर.
0: अच्छा, कहाँ, कौन है अभी घर पे वेट कर रहे हैं?
1: घर पे हमारे पति देव है, हमारे बेटा है.
0: सो आप कहाँ गई थी वैसे? आप अलोन थी? यू जस्ट ड्रोव योर कार?
1: हाँ हम खाली अपनी गाड़ी चला रहे थे. आज मौसम बहुत अच्छा है
0: तो बस मौसम तो क्या हवा खाने चले गए?
1: हाँ सोचा कि घूमने चलते हैं.
0: लाइक व्हाट, घूम के कहाँ पर आई?
1: ओ, दुकान होती ना सब्जी उब्जी वाली. हाँ. वहाँ पे सब्जी लेने चले गए थे.
0: ओ, ग्रोसरी शॉपिंग.
1: और तो, हाँ वो भी कह सकते हैं हम.
0: हाँ मतलब ग्रोसरी शॉपिंग हवा खाने की काम होती है. माय गॉड, शॉपिंग ही कर लेती हैं आप, अच्छे कपड़े वपड़े, यू नो दैट इज फन शॉपिंग ना.
1: हाँ कपड़े भी खरीद लेते हैं कभी कभी.
0: बट वही, बट ग्रोसरी इज हवा पानी, हवा खाने खाने के लिए.
1: हवा खाने गए थे.
0: हवा भी खा लिए और ग्रोसरी भी आ गया, अब खाना भी बन जाएगा तो वो भी खा लेंगे, राइट?
1: हाँ खाना भी बनाने जा रहे हैं, दाल चावल बनाएंगे.
0: अच्छा दाल चावल, ऑलराइट. और फिर उसके साथ एक सब्जी तो होगी कि दो होगी?
1: दो सब्जी होगी.
0: वेरी नाइस. सो यू कुक एवरी डे और वंस इन अ वीक?
1: हम तो रोज पकाते हैं.
0: वेरी नाइस. हम मतलब आप और कौन?
1: हमारे पति देव.
0: हाँ वेरी नाइस. तो चलिए आज आपको छुटकारा भी दे देती हूँ मैं. आप जीत गई हैं रेड हॉट चिली पेपर से एक गिव अवे. कंग्रेचुलेशंस. कितना बनाएंगे आप? कितना, सिर्फ हवा खाने भी जा रही तो ग्रोसरी जा रही है. सो देयर यू गो. आप घर में जितना भी पका ले, जब आप रेड हॉट चिली पेपर का खाना खाएंगे ना, आपको आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे. Alright.
1: धन्यवाद.
0: वेरी वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस. मैं अपना एक गाना अपने लिसनर्स को भेंट करती हूँ. And then I'll come back and take your details. All right, Archana ji?
1: Okay, thank you.
0: Very nice.

0: ये वाले सो सब जो गाने हैं ना वो दिल वाले गाने हैं, जैसे कि दिल से दिल की बात निकले तो लगती है ठाई वाले गाने. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल दीज लवली सॉन्ग्स. और हमारे इतने स्मार्ट कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं गल हिंदी हिंदी बोल में. तो सोचिए क्या है कि मज़े के साथ गाने भी और पार्टिसिपेंट्स भी. तो चलिए मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को लेती हूँ ऑन एयर. गुड इवनिंग, फाइन शॉट रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. हाय
1: जी, गुड इवनिंग.
0: वेरी नाइस रशीद साहब, वेलकम टू यू. आप गल हिंदी हिंदी में जुड़े
1: जी जी,
0: आप रेडी हैं एकदम?
1: थैंक यू जी, बिल्कुल.
0: तो मैं आपका वक्त शुरू कर रही हूँ. ऑलराइट
1: जी, बहुत अच्छा,
0: वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस. तो कहाँ से हैं आप रशीद साहब, वेयर आर यू फ्रॉम?
1: जी मैं पाकिस्तान से, डेरा इस्माइल से मेरी पैदाइश है.
0: वेरी नाइस. सो हाउ लॉन्ग बैक डिड यू मूव टू अमेरिका?
1: जी 2006.
0: वाओ मैन, ये तो बहुत साल हो गया आपको. यही पूरा घर बसा लिया, घर बन गया ये तो फुल फ्लेज्ड.
1: जी अब तो ये नया घर है, यहीं के लोग हैं और यहीं जहां लोग हैं वैसे ही कारवा बनता गया.
0: Right.
1: और लोग मिलते गए और ये घर बन गया.
0: वेरी नाइस. सो यू हैव फुल फैमिली हियर?
1: जी जी.
0: वेरी गुड. तो फिर आज कहाँ से आ रहे हैं आप, ड्राइव कर रहे हैं क्या?
1: जी मैं ऐसे कुछ सामान लाने गया था बाहर.
0: ऑल राइट. सो ड्राइव करके तो गए होंगे ना, पैदल गए थे?
1: जी जी, अपने ही गाड़ी में गया था.
0: अच्छा, वेरी नाइस. सो अकेले आपको भेज दिया सवाल लाने के लिए?
1: हाँ जी, फिर से कहें.
0: अकेले आपको भेज दिया गया सामान लाने के लिए?
1: जी जी, हमारी बेगम उन्होंने हमें बोला कि आप ये ले आए, तो मैं बस वही.
0: तो फिर उसी की वजह से खाना बनेगा फ्राइडे नाइट? हाँ, क्या है, व्हाट्स द प्लान फ्राइडे नाइट?
1: आज खाना बाहर से ही खाएंगे, बस थोड़ा सा कुछ ज्यादा सामान जो कल परसों के लिए चाहिए तो वही लेके आ रहे हैं.
0: सो चोर से आज खत्म कर ले, कल और परसों आराम करे, फिर आराम से खाए ना, निकलना ना पड़े, ऐसा कुछ?
1: जी कुछ हद तक ऐसा ही है.
0: वेरी नाइस रशीद साहब. और उसके बीच में आप रेडियो में फोन लगा लिया, हाउ डज दैट हैपन?
1: बस ऐसे ही गुफ्तगू आपसे हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है.
0: हाँ, फिर आपने पहले भी मुझे कॉल किया है.
1: क्षमा करें, वैसे मेरी हिंदी और उर्दू मिली हुई है तो मुझे थोड़ा रुक के बोलना
0: पड़ा. हम सभी की तो है यार, हम सभी की हिंदी और अंग्रेजी उर्दू मिली हुई है, पता भी नहीं चलता कभी कभी उर्दू शब्द होते हमारे हिंदी में तो हम कैसे उसको छाटे भाई, वो तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना?
1: जी जी जी.
0: इंग्लिश को तो हम छाड़ लेते हैं, लोग मम्मी पापा को भी हिंदी बोल देते हैं.
1: कोशिश करते हैं छाटने की.
0: हाँ, वेरी नाइस. सो टेल मी,
1: नहीं जाती.
0: हाँ, तो छाटना इज नॉट अ उर्दू वर्ड, हाँ, इट इज हिंदी.
1: अच्छा.
0: हाँ, आपको पता था?
1: तो हमारे यहाँ भी वही शब्द बोले जाते हैं. तो
0: वही तो मैं बोल रही हूँ, हमें पता ही नहीं होता आधे से ज्यादा बार कि वो हिंदी है या उर्दू है, बिकॉज अच्छे से घुल मिल गई है ना, शरबत रंग
1: जी, जी, आपकी,
0: रंग शरबतों का जो मीठा घाट का पानी जब मिल जाता है शरबत बन जाता है ना.
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अलग अलग जगहों का भाषा अलग हो जाती है तो फिर वो उसके फायदे भी होते हैं.
0: तो आपको लेट नहीं हो रहा, आप फोन में बात कर रहे हैं बाहर से?
1: नहीं, आराम से जा रहे हैं, हम तो रास्ते में हैं.
0: ओ, आप ड्राइव कर रहे हैं, एकदम लग ही नहीं रहा है ड्राइव कर रहे हैं, सन्नाटा लग रहा है, लग रहा है.
1: नहीं,
0: आप इतनी अच्छी से बातें कर करके कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं?
1: नहीं नहीं, मैं अभी रुक गया हूँ.
0: आप पार्क कर चुके? वाओ मैन, डेडिकेशन कहते हैं इसको.
1: मैंने अपनी गाड़ी को रोक दी है सड़क के किनारे.
0: वेरी नाइस मैन, इसको डेडिकेशन कहते हैं, इसीलिए लोग जीतते हैं. ऐसा होना चाहिए हौसला, ऐसी होनी चाहिए कोशिश, है ना? लोग गाड़ी चलाते हैं और सोचते हैं.
1: नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा तो ध्यान करना पड़ता है आपसे बात करने के लिए. नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
0: सुपर मैन, यू वर सो गुड. आई नो ऑल द लिसनर्स कैन फिगर आउट, मैंने कितनी कोशिश की इधर से उधर से आपको खींचने की, लेकिन आप टस से मसने में पार्किंग जो किए हुए, मैन फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, सुपर डुपर, बहुत अच्छा खेला आपने. आपको मैं गाना भेंट कर दूँ?
1: जी जी.
0: कौन सा गाना भेंट करूँ बताइए?
1: तो वो अभी आई थी ना, वो एक वो एक धुरंधर, उसकी कोई कोई सा भी अच्छा सा गाना.
0: धुरंधर 2 आज आप नेटफ्लिक्स में देखने वाले, आ गया सेकंड वाला?
1: अच्छा अच्छा
0: आज ही?
1: जी नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने पहले ही देखी थी चलचित्र.
0: हाँ.
1: जाके
0: पहली वाली देखी ना, दूसरी वाली नहीं देखी?
1: नहीं नहीं दूसरी भी देखी, अच्छी थी बहुत.
0: हाँ तो अभी जाके आप देख लीजिए फिर से, बिकॉज आज ही वापस से आ गई है, थोड़ी ज्यादा अच्छी से समझ आ जाएगी.
1: आपने देखी है दूसरी?
0: हाँ,
1: वाली
0: मैंने तो दोनों देखी है, फिर से समझने के लिए मुझे वापस देखना पड़ता है.
1: अच्छा.
0: हाँ.
1: मुझे लगा मुझे ही समझ का फेर है, आपको भी हो जाता
0: हाँ,
1: है.
0: सेम सेम डिट्टो.
1: अच्छा कैसे, मुझे तो लगा आप बड़े ही समझदार हैं आप तो.
0: बस वही कभी कभी धोखा खा जाते लोग, बट मैं अभी वापस से देखने वाली हूँ ऐसे समझने के लिए. बट थैंक यू सो मच
1: अच्छा
0: फॉर
1: अच्छा
0: प्लेइंग.
1: अच्छा
0: आपका आपका गाना आ रहा है, मज़ा आ गया आपके साथ गेम खेलकर. यू आर सुपर डुपर. मैं सोच रही हूँ कौन सा गाना लगाया जाए, तम्मा तम्मा लगा दूँ?
2: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
0: That is Omar Khwaja, dosto. Sun rahe the 104.9 FM Funny Radio. Mere saath main aapki host Navneeta, kyunki aaj shaam hai.

और पता है ये जो अभी अभी जीत के गए हैं रशीद साहब, माय गॉड, डिड यू नो वो जो वैभव हारे थे ना वो रशीद ही थे. और वापस से आवाज़ बदल के उन्होंने बात की, ओ माय गॉड आई कुडंट रिकॉग्नाइज. और कहते हैं 10 बार वो मेरे से जीत चुके हैं आवाज़ बदल बदल के और 3 बार मुझसे हारे. तो आज वो वैभव बोले थे फ़ोन और वो बोले थे थका हुआ हूँ इसलिए हार गया हूँ, यूजुअली मैं नहीं हारता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली 10 बार मेरे से जीत चुके हैं. बाद में मुझे पता चला, मैं बोली माय गॉड, मैं सबको बताती हूँ आप बहरूपिये के बारे में जो वेट करते रहते हैं हर फ्राइडे सो दैट ही कैन ट्विस्ट एंड टर्न. मतलब जो इंसान हमेशा फनीशा रेडियो पर जीत रहा है वो वैभव रशीद उर्फ जो भी नाम वो बदल रहे हैं, बाकी सब को तो मैं ट्विस्ट कर ही लेती हूँ ना. एनी वेज वैभव उर्फ रशीद, ये आपका गाना फ्रॉम धुरंधर.

0: Duranta 2 has dropped in. माने कि अब थिएटर से बाहर आ चुका है और आपके OTT प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुका है. That is Netflix is hosting this movie Dhurandhar 2 and I know a lot of you are watching it this weekend only और आपका वही प्लान होना चाहिए. I hope वो हैंग नहीं हो जाए Netflix with the amount of people who want to get on to watch this new तम्मा तम्मा on Dhurandhar 2. सुन रहा है ऑरफ 9 FM और ले रही हूँ मैं अपने नेक्स्ट कॉलर को ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, आपका स्वागत है. नाम क्या है?
1: मेरा नाम सुवीना है.
0: सुवीना जी, आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल में.
1: धन्यवाद जी.
0: वेरी नाइस. तो शुरू क्या है आपका वक्त?
1: बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक तो.
0: All right.
1: इतनी प्यारी सी आवाज सुनकर और बेहतर हो गया.
0: वेरी नाइस, आई लव इट. सो योर टाइम हैज स्टार्टेड श्रीना जी, आप गलती मत कर दीजिएगा, अंग्रेजी के शब्द भूल से डाल मत दीजिएगा.
1: कितना मिनट मिलेगा मुझे?
0: मिनट हो गया, खत्म, आप आउट हो गए.
1: कैसे?
0: कैसे नहीं हुए आउट? चलिए मिनट को मैं छोड़ देती हूँ. आई एम बिकॉज मिनट विट बी मिनट ओनली. However, मिनट नहीं है, आप बस मुझसे बात कीजिए, बहुत जल्दी भी माफ कर सकती हूँ, बहुत देरी तक भी. यू आर अंडर द रडार राइट नाउ.
1: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक और मौका देने के लिए और हमारी पहले वाली गलती माफ करने के लिए.
0: सो मैं ना मिनट को हिंदी मानती हूँ इसलिए मैंने माफ किया. मैं किसी को माफ नहीं करती, मेरा ये रिकॉर्ड है. बट हाँ, टाइम कैसा है वैसे आपका?
1: टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है, पर प्रतीक्षा का टाइम बहुत लंबा था.
0: हाँ, बस ये टाइम जो है ना वो अंग्रेजी था मैम, मिनट नहीं था. टाइम जो था ना वो गलत था. That was a googly entry.
1: आपने मेरा समय गलत कर ही दिया.
0: सॉरी. So sweet.
1: मेरी पहली बारी थी आज आपसे बात करने की.
0: हाँ, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच. फिर कॉल कीजिएगा, नो वरीज. ये मैं थोड़ी सी म्यूजिक मोगैम्बो ऐसे नहीं बोलते, बोलते मुझे मोगैम्बो. और मोगैम्बो खुश हुआ.
1: खुश हुआ मोगैम्बो. ठीक है, वही मोगैम्बो की खुशी चाहिए हमें.
0: बस थैंक यू सो मच, बाय बाय.
1: थैंक यू जी,
0: बाय. वाह, सी वो मिनट फिर भी हम सोच सकते थे, एक घंटा और एक मिनट है ना, मिनट बोलते हैं, मिनट बोल दो, मिनट ठीक है चलता है, पर टाइम नो नो. चलिए एक ब्रांड न्यू गाना सुना रही हूँ आपको, लाइक इट इज जस्ट ड्रॉप्ड इन. ब्रांड न्यू गाना, फिल्म का नाम है बंदर, मंकी, यस बंदर. और इस बंदर में आ रहे हैं नन अदर देन बॉबी देओल.

थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स गाइज. अब आज के लिए गल हिंदी हिंदी बोल वी हैव स्टॉप्ड राइट हियर राइट नाउ. अगले हफ्ते तक का इंतजार रहेगा और मेरा शो रहता है 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एवरी फ्राइडे के फ्राइडे. एंड आई से थैंक गॉड दिस फ्राइडे एंड थैंक गॉड रियली आपका जैसा भी हफ्ता गया हो दिस मंडे टू फ्राइडे. अब देखिए वीकेंड इज राइट हियर एंड एज सून एज आई गेट इन टू द स्टूडियो आई ड्रॉप द वीकेंड. कहती हूँ आ गया है वीकेंड. वैसे बहुत देर से पहुँचे झेलू राम अपने क्लास पर तो टीचर ने पूछा तुम देर से क्यों आए. तो झेलू राम ने कहा सड़क पर लगे बोर्ड के कारण टीचर. तो टीचर ने कहा क्या सा बोर्ड कौन सा कारण. तो झेलू राम ने कहा बोर्ड पर लिखा था आगे स्कूल है कृपया धीरे धीरे चले. यार हम 20 miles पर आर पे चलते हैं यहाँ पर और सच्ची लेट हो रहे हो तो वो 20 miles क्या लगता है ना लाइक एक घंटे के बराबर. बट झेलू राम यू आर फनी. आपके जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना लोगों को ले लेने चाहिए. नेक्स्ट टाइम यू कैन जस्ट से दैट इन स्कूल. न्यू गाना खासियत.

ब्यूटीफुल है ना, खासियत है इस फिल्म का नाम चांद मेरा दिल। एक फिल्म आने वाली है, अनन्या पांडे और लक्ष्य है उसमें। लक्ष्य इज़ एन अपकमिंग स्टार डूइंग वेरी वेरी वेल। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो नज़र आए थे एज द हीरो एंड रियली हैज़ मेड ग्रेट ग्रेट प्रोग्रेस।

Staying very very well. The Bads of Bollywood में वो नजर आए थे as the hero and really has made great great progress. सचिन दिगर का म्यूजिक, राघवन, जोनिता गांधी, क्या वॉइस आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य की पेशकश इन लिरिक्स. यू नो अमिताभ भट्टाचार्य बहुत ही कंटेम्प्रेरी लिरिक्स लिखते हैं एंड ही इज सुपर. आई जस्ट लव हाउ ही राइट्स. बदले हैं जैसे कि लिरिक्स में बदले हैं उनके मिजाज कुछ दिनों से, बदले हैं उनके मिजाज कुछ दिनों से. वो बात तो करते हैं मगर बातें नहीं करते. ठाएं?

ये भी ब्रांड न्यू गाना है जन्मों जन्मों, हॉन्टेड 3D, मोहे चौहान की आवाज़ सुन रहे थे आप। और ये जाते जाते मेरे को ये पता नहीं क्या नशा हुआ कि ऑल दीज ब्रांड न्यू सॉन्ग्स विच हैव ड्रॉप्ड राइट नाउ इन सम टाइम, जो मैं आपको सुना रही हूँ। ये वाला जो गाना आपने अभी अभी सुना, विच आई प्लेड फॉर यू, जन्मों जन्मों, एंड दैट हैज़ रिलीज 2 days ago। और अभी जो नेक्स्ट गाना मैं सुनाने वाली हूँ वो जैसे कल ही रिलीज़ हुआ है 14 May को। सो लेकिन रिलीज़ कुछ भी हो, अभी आपको वेदर कैसा लग रहा है? ऑसम है कि मौसम की गर्मी लगने लगी है? ऑफकोर्स गर्मी लगने लगी है, लेकिन 69 लाइट रेन्स हैं, थोड़े पार्शियल क्लियरिंग टू ओवर नाइट, और 15 to 25 माइल पर हवाएँ चल रही थी, और चांसेस ऑफ रेन है इनफ, 69 इज राइट नाउ। अभी आप को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मौसम, और ये मौसम ऐसा रहे यही है, बट अभी डैलस का ऐसा मौसम है दिन और शाम, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स विल बी सो नाइस, डेज कैन फील सो हॉट, सो यू हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंगली। कल है शनिवार, शनिवार 88 हाई 73 लो, इट्स पार्टली क्लाउडी टुमारो, एंड संडे को सनी है 86 हाई 76 लो, बट बहुत विंडी भी है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा। संडे और मंडे 21 माइल्स पर आवर और 22 माइल्स पर आवर पे हवाएं चलेंगी। मंडे तो थंडर स्टॉर्म्स भी हैं विंड के साथ, 87 हाई 75 लो, 79 हाई है टेरिफिक ट्यूसडे, 64 लो विद स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म। तो ये पूरा हफ्ता बारिशाना रहने वाला है। वेडनेसडे मजधार ऑफ द वीक, स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म्स वंस अगेन, 75 हाई 65 लो, थोड़े टेम्परेचर्स बेटर हो रहे हैं, गिर रहे हैं। थम्स अप थर्सडे, 74 हाई 63 लो विद लॉट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स एंड 75% ऑफ रेन है। सो थर्सडे इट विल बी रिम झिम पूरे दिन। फन फिल्मी फ्राइडे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन लेकर उस समय आऊंगी स्कैटर थंडर स्टॉर्म्स ही, वो नहीं जाने वाले वीकेंड तक। 79 हाई 64 लो, सो दैट इज हाउ मे इज, इट मे रेन, इट मे बी 60s, इट मे बी 80s, इट मे बी 50s, इट मे बी हॉट, इट मे बी

wet, it may be cold. It is May, May, May. ये है ब्रांड न्यू गाना वो नहीं मैं वापस आऊंगा, ये रिलीज होने वाली है फिल्म. चलिए इसका गाना सुनते हैं फिर मैं बताती हूँ उसके बारे में.

वाह, दिस यू नो इम्तियाज अली, इरशाद कामिल और आदित्य रॉय कपूर, एंड दिस हैज़ बीन अरेंज्ड बाय यार रहमान. ये फिल्म जो है, मैं वापस आऊँगा, दैट्स द मूवी. एंड इट इज़ नॉस्टैल्जिया एंड इंटिमेट. वो नहीं, ये जो गाना है, कहते हैं इट फील्स लाइक टॉकिंग टू समवन हु इज़ नो लॉन्गर देयर येट समहाउ स्टिल एवरीवेयर. मैं वापस आऊँगा, एंड दिस इज रिलीजिंग ऑन 12th of June 2026 इन थिएटर्स. तो ये वाला गाना, ब्रांड न्यू गाना, May 14th यानी कि कल ही ड्रॉप. सो देयर यू गो, विद दैट सॉन्ग आई एम सेइंग बाय बाय फॉर दिस इवनिंग. और आज श्री राम सम्बुका में परफॉर्म कर रहे हैं, सो जो वहाँ हेडेड हैं, वाह, यू आर गोइंग टू हैव अ अमेजिंग अमेजिंग टाइम लिसनिंग टू श्री राम एंड हिज परफॉर्मेंस, विच इज़ गोइंग टू बी गोल्डन, आई एम श्योर. जो भी जा रहे हैं, इन्जॉय योर टाइम एट सम्बुका. और मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते ख्याल है, और ये ख्याल दिल से है. डोंट स्टॉप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. न्यू स्किल्स, न्यू स्टाइल, न्यू पैशंस, वाई नॉट नाउ एंड जस्ट नाउ. क्यूरियोसिटी कीप्स यू यंग. आप कोई भी उम्र के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टैग्नेशन एजेस यू फास्टर देन टाइम एवर कुड. वक्त की वजह से हम बूढ़े नहीं होते हैं, हम बस रुक जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं. सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बात है, बट गहराई में ही अगर हम डुबकी लगाएं ना, तो निकलता है सीप, विच इज़ ऑयस्टर, एंड वो मोती आपकी ज़िंदगी को चमका सकता है. एंड यस, डीपर इन द डीपेस्ट वी ऑल्सो फाइंड डायमंड्स, एंड यू आर दैट डायमंड. गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट. विशिंग यू अ फ्लावरफुल मॉर्निंग, अ कलरफुल नून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस day for you tomorrow. Started with a cup of positivity. फिर देखिए दिन कैसा जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि आप अट्रैक्ट ही करेंगे पॉजिटिविटी. वही तो जिंदगी है. क्या रोना जब है हमारे पास पॉजिटिविटी, वो आपका है. लेट नो बडी टेक इट फ्रॉम यू.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
4: क्योंकि ये कौन बोला
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
5: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: चिकन बनाना
13: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब make the chicken right.
14: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
15: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
17: डूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
18: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
17: कैसे
18: पेज 3 ईटरी
17: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
18: डूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स Classic bowls and the food crafted to suit every craving, every appetite.
17: Matlab great food, great drinks and great company. Yani ki main.
19: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
20: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
21: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
22: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.

0: Namaskar and welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio. Wow, what a weather that is. Oh my God. Weather ke baare mein to main kya hi kahun. Main diwani ho gayi hoon is weather ki. Aur lag raha hai ki yaar kya sama hai. Mujhe lag raha hai ki kyun din doobne wala hai. Bilkul yahi kahin waqt tham jaye. Main bahar hoon aur sochun aur kahun ki wah, ye mausam ka jadoo hai mitwa. Koi dil pe जादू है और बिल्कुल भी काबू नहीं है. मैं आपको बोलना चाहती हूँ डैलस कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो. आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं आरजे स्वाति. हंसते मुस्कुराते हुए दूंगी आपका साथ. आज मुझसे सबर नहीं हो रहा है. मैं बाकी का लेक्चर बाद में, लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवाऊंगी ये गाना जिसमें आप सुनेंगे मौसम का जादू. पहले ये एंजॉय कीजिए एंड उसके बाद मैं आपसे जुड़ती हूँ.
1: 7 6 5 4 3

व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग. देखो वाइब वाली बात होनी चाहिए यार, मेरा शो ही है फ्राइडे वाइब्स एंड आपको तो मेरे साथ इस वाइब में शामिल होना ही था. देखिए गाने रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन जो मेरा अंदाज है वो रिपीट नहीं होता. और अंदाजे बयां कर रही हूँ मैं इस खूबसूरत से मौसम में कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे. और मैं एक शाम चुरा लूँ अगर डैलस तुम्हें बुरा ना लगे. अगर बुरा ना लग रहा हो तो मुझे ये शाम चुराने दो यार. फ्राइडे वाइब्स में मैं आरजे स्वाति आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ. डैलस कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे वाइब के गाने हैं आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका मूड बनाने ही बैठी हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है आपका मूड बिगाड़ने में. एंड कुछ कॉल्स आ रहे थे एंड वो कॉल्स मैं उसमें ले नहीं पाई, तो प्लीज़ आप मुझे अब कॉल कर सकते हैं जब मैं ये गाना प्ले कर रही हूँ. यू आर वेलकम टू कॉल ऑन एयर 9 7 2 2 3 5 5 5 5.

0: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्ले।
1: वाह वाह वाह डैलस, क्या खुशनुमा मौसम है, क्या खुशनुमा मिजाज है, फ्राइडे वाइब्स। मैं आपको कहती हूँ ना डैलस की रखिए फन की फ्रिक्वेंसी राइट एंड एंजॉय कीजिए फ्राइडे वाइब विद नन अदर देन आपकी ड्राइव टाइम साथी हस्ती मुस्कुराती स्वाती। आपकी हो कोई फरमाइश तो यू आर मोर देन वेलकम। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। डैलस, आपको नहीं लगता कि सुहाने मौसम के साथ साथ दोस्ती का भी मौसम आ पड़ा है? तो अगर आपको दोस्ती करनी है तो कॉल कीजिए जरूर और फरमाइश बताइएगा जरूर।

दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी डैलस। देखिए मेरी दोस्ती आपको कहीं पे भी कोई रिग्रेट का मौका नहीं देगी, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर मैं हूँ तो मतलब गाने बेशुमार, एंटरटेनमेंट बेशुमार एंड ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या गाना आप सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ आपको वाइब मैच करना बहुत ज़रूरी है। आई नो आपके गाने की रिक्वेस्ट आ रही है, बट वो इस वाइब के साथ मैच नहीं कर रही है यार। यू नो व्हाट, आई एम वेरी वाइब की पक्की, तो आपको ज़रूर मेरा टेम्पो मैच करना पड़ेगा। वही टेम्पो जो आप मैच करेंगे उसी में बैठ के हम निकल लेंगे यार सैर सपाटे पे। चलिए टेम्पो का तो छोड़िए, क्या इस वक्त कश्ती में सफर करना चाहेंगे मेरे साथ?

0: What a beautiful chemistry. जी हाँ, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल, जब ये फिल्म आई थी ना डायलेस, तहलका मच गया था. इतना हैंडसम, इतना सुंदर दिखने वाला हीरो, ओ माई गॉड, क्या मतलब कितनी मासूमियत लेके एंड कितने अच्छे से डिफरेंस को दिखाया गया है. जो पहले के ऋतिक रोशन एंड बाद के ऋतिक रोशन में क्या डिफरेंस दिखाया गया है. एक बिल्कुल मैच्योर, सही, हैंडसम, एक मासूम, इनोसेंट और बड़ा सीधा साधा सा. सो, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके दिमाग में इतना कुछ कैसे आता है, आज भी मैं समझ नहीं पाती कि हर एक स्क्रीन पर जो लोग होंगे और किस तरह से एक्ट करेंगे, पीछे के लोग क्या कर रहे होंगे, आगे के लोग क्या कर रहे होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता होगा यार. टू मच थिंग्स, राइट? और पिक्चर बन जाती है.
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
2: Astrology readings have a guidance only and results may vary.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
7: आती है यार, बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
8: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
7: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
8: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
9: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है. प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

Welcome back to 104.9 FM Funisha Radio. Dallas, आपने कैलेंडर पर ध्यान दिया है? मतलब कौन सा दिन है, कौन सी डेट है? अरे यार, तारीख वारीख छोड़ो, आज का दिन कौन सा है वो तो आपको पता है ना? फ्राइडे, यानी कि मस्ती का दिन. वो दिन जिस दिन का हमको पूरे 4-5 दिन इंतजार होता है और आ जाता है ना, तो वीकेंड मोड ऑन हो जाता है. आप सब अपनों के साथ जरूर बाहर होंगे, क्योंकि आज का मौसम ऐसा है कि घर पे रह के बोर होने का नहीं बॉस, बाहर जाने का, हंसने का, गाने का, खेलने का, कूदने का, मस्ती करने का, खाने का, पीने का एंड अच्छे गाने गुनगुनाने का. अब आप देखिए, अगर आपके अच्छे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उन विचारों का आप क्या करेंगे? वो विचार एक से दो होकर उसकी कोई झाड़ नहीं लगने वाली. आप उन विचारों को मेरे साथ शेयर कीजिए. डैलस, क्या कहना चाहते हैं मुझे भी तो बताइए यार. मैं आपका मूड बना रही हूँ, मैं आपका वीकेंड बना रही हूँ, एंड आप मेरे साथ कुछ भी कहने और सुनने से कतरा रहे हैं, ये तो गलत बात है. तो बताइए ज़रूर कि आज क्या मिजाज है आपके, कहाँ चले आप, मुझे भी साथ लेके जाइए डैलस.

डैलस, हमको भी तुमसे बहुत ढेर सारा प्यार है। एंड पता है आपको जो मुझसे प्यार है ये बताने की ज़रूरत कहाँ है यार। जैसे ही मैंने एक बात डाली है और उसके बाद जो मेरे पास अपनों का कॉल आ रहा है, इसके बाद तो मुझे प्यार जताने की ज़रूरत ही नहीं है डैलस। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास किसका कॉल आया, गेस वॉट। जी हाँ, अमृता एंड प्रेरित जी, एंड उन्होंने मुझे कहा कि स्वाति जी, दिल में जो बात है कह दो। आहा, क्या गाना रिक्वेस्ट किया है फिल्म रन का। मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ रन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो प्यार की गाड़ी है जो जहाँ आके रुकी है, वो गाने से मैं भी बड़ा एतबार रखती हूँ। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच अमृता एंड प्रेरित जी कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया एंड ये ब्यूटीफुल गाना किया है रिक्वेस्ट। ये आपकी रिक्वेस्ट पर गाना, यू नो वॉट, अपनों से मिलकर जो अच्छा लगता है, अपनों से बात करके जो अपनापन फील होता है, वो कहीं और नहीं, उससे बड़ा सुकून है ही नहीं डैलस। यकीन नहीं है तो किसी अपने को फटाफट फोन घुमाओ, क्या पता कोई अपना अपना वेट कर रहा हो।

जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ लेके जाइएगा डैलस, क्योंकि मेरा साथ आपके आपके सफर को खूबसूरत बना देता है. ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ के बगैर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए इट्स अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि मेरे साथ के बगैर आपका जो सफ़र है वो अधूरा अधूरा सा रह जाएगा. तो प्लीज़ आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ लेके जाइए. आपको बता दूँ कि 10 May 14th to May 17th स्टेप इंटू अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाई एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स. बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज टू स्लो डाउन. यू नो वॉट, गाड़ी भी चला रहे हैं ना, तो कहाँ इतनी जल्दी कहाँ पहुँचना चाहते हैं डैलस. इतू सा तो डैलस है, यहाँ से चले वहाँ ख़त्म हो गया. तो फिर जितनी जल्दी आप अपना सफ़र तय कर लेंगे उतनी जल्दी मेरा साथ भी तो ख़त्म हो जाएगा ना. इसीलिए समटाइम्स स्लो डाउन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे गाड़ी चलाइए ताकि ज़्यादा ज़्यादा मज़े ले पाएंगे आप, है ना. लेकिन आपको बताया है जो मैंने वो भूल मत जाइएगा. रजिस्टर कीजिए नाउ एट osho.universal.org, जहाँ पर 14 to 17 May तक आपको इमोशनल ब्लॉक हटाने का और स्ट्रेस रिलीज करने का मौका मिल सकता है. वैसे ये भी एक मौका होता है जब आप फ्राइडे वाइब एन्जॉय करते हैं मेरी यानी आरजी स्वाति के साथ. यास्मिन जी ने जो मुझे डांट लगाई है ना, माई गॉड, यास्मिन जी ने कहा है कि मेरा गाना ही नहीं लगा रही हो आप. यार मैं कोशिश तो करती हूँ कि भेदभाव ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है एक के ऊपर एक रिक्वेस्ट आते चले जाते हैं और फिर मैं भूल जाती हूँ. मुझे माफ़ कर दीजिए डैलस, क्योंकि पता है आपको सबसे बड़ा इमोशनल ब्लॉक और स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका ये है कि आप किसी को कितनी जल्दी माफ़ कर देते हैं. जितनी जल्दी आप माफ़ कर देंगे उतनी जल्दी आप हल्का महसूस करेंगे. And you know what, 90s की vibes ही ऐसी है डैलस. अगर वाइब की बात हो रही है तो 90s की बात होगी, क्योंकि ये गाने आपका स्ट्रेस बिना किसी मेहनत के उतार देते हैं.

वंडरफुल सॉन्ग. आय हाय क्या मूड बन जाता है यार इन गानों से. मतलब आप अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हो ना और फिर भी आप इन गानों को सुन ले तो आपका पूरा ध्यान इन्हीं गानों पर अटक जाता है. ये गाने हैं ही ऐसे. लिखने वाले ने क्या लिखा है, बजाने वाले ने क्या बजाया है, एंड गाने वाले ने क्या गाया है. यू नो वॉट, इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आ रही है. जैसा कि हमसे यास्मीन जी ने कहा कि आप उनको पुराना वाला ये सुनना है जो कि टिप टिप बरसा पानी. देखिए अभी तक पानी बरसा नहीं है बट बरसने और गरजने के आसार हैं. वैसे बोलते हैं कि जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं. वॉट इफ कोई गरजे भी और बरसे भी, क्या कहेंगे आप बताइए. देखिए मेरे साथ जुड़ जाइए और मुझे अपनी फरमाइश ज़रूर बताइए. क्या होता है ना, जब प्यार मोहब्बत की बात आती है ना तो ऐसे रोम रोम खिल जाता है. ऐसा लगता है बस कोई तो मिले जिससे ढेर सारा प्यार हो जाए. एंड देखिए हर फ्राइडे आप मुझे मिल जाते हैं, फिर मेरे को ढेर सारा प्यार हो जाता है आपसे और इस माहौल से. एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो फॉल इन लव विद दिस फ्राइडे वाइब. 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

0: heading to a शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उसके बाद गानों का सिलसिला रहेगा जारी डायलेस। मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं 104.9 FM फनीशर रेडियो पर मुझे यानी आरजे स्वाति को, एंड मेरे पास आपके लिए काफी एक्साइटिंग गिव अवेज भी हैं, तो प्लीज आप सुनते रहिएगा क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम आपको एक चीज तो है कि एक चीज तय है कि आप जहां भी जाना चाह रहे हैं आपको मन नहीं करेगा कि वो डेस्टिनेशन बहुत जल्दी से आ जाए, आपको मन नहीं करेगा कि गाड़ी छोड़ के आप उतर जाएं, क्योंकि गाने इतने जबरदस्त बज रहे हैं ना जो आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई टेंशन रहा हो और मेरे प्रोग्राम के थ्रू आपको ये प्यार वाली थेरेपी मिली हो, ये मूड अपलिफ्ट वाली थेरेपी मिली हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ डायलिस, वो तो है ही, लेकिन इसलिए भी कि मुझे खुशी होगी कि एक किसी का दिन और मौसम और मिजाज मैंने बना दिया है। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 104.9 FM, और आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारे गाने भी लाइनअप है। और मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ कि यू नो हैप्पी आवर देती हूँ मैं आपको और 104.9 FM पर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhua dhua. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है, पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
4: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
13: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
4: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट at Osho Transformation Retreat.
14: May 14th to May 17th, a three-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.

Hello, Namaskar, and welcome back. With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait, Dallas. Call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn cost into cash. आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि अगर आप में से किसी एक का भी ऐसा हो कि मूड खराब हो और आपने मेरी बातें सुनकर, मेरे गाने सुनकर, मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद आपका मूड बदला हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. यू नो व्हाट, हमारी एक कॉलर का फ़ोन आया. मैं उनका नाम नहीं ऑन एयर बोलूँगी, लेकिन शी टोल्ड कि मेरा इतना ख़राब मूड था, मेरे लाइफ में इतनी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद जब मैंने आपके शो को ट्यून इन किया, मैं बस ऐसे ही मैंने कार ऑन किया एंड यू नो 104.9 FM चलने लगा, लेकिन जिस तरीके के गाने आपने बजाए हैं, जिस तरीके की बातें आपने की है, डेफिनेटली मेरा मूड अपलिफ्ट हो गया है. एंड शी इज़ नॉट लुकिंग बैक, क्योंकि उनका मूड अब अच्छा हो चुका है. मैंने उनसे ये भी कहा है कि ऑलवेज देयर फॉर यू फन एशिया रेडियो, आपके सुहाने सफ़र का साथी. सुहाने सफ़र का साथी तो होता है, लेकिन आपके साथ अगर आपका सफ़र सुहाना नहीं है तो सुहाना बनाने में मददगार भी होता है. तो डैलस, चिंता विंता छोड़िए और गाने एंजॉय कीजिए 104.9 FM पर आपकी ड्राइव टाइम साथी. यूं ही नहीं कहती कि मेरा साथ खूबसूरत है, देखिए आज तो मैंने प्रूफ भी ले लिया.

you so much, Dallas, for your overwhelming response. Oh my God, आज का फ्राइडे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है यार. या तो मैं बोरिंग नहीं हूँ या आप बोरिंग नहीं है. वैसे मैं तो शो ऐसे ही करती हूँ, मुझे तो बस बातों में बातें करना और फिर गाने खूबसूरत बजाना यही पसंद है, क्योंकि मेरा तो टैगलाइन ही यही है कि चलो कुछ अच्छा सुनते हैं, है ना. तो कुछ अच्छा सुन भी रही हूँ, कुछ अच्छा सुना भी रही हूँ, पर डैलस आप जो आज साथ दे रहे हैं ना, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी. एंड आप ये गाना सुनने के बाद अपने उस एक पर्सन को नहीं भूलेंगे जिसको आप इस वक्त अपने बिल्कुल करीब पाना चाहेंगे. यू नो व्हाट, ऐसे थोड़ी ना कहती हूँ कि फ्राइडे वाइब है. बस इस गाने की जो वाइब है, नेक्स्ट लेवल.

This soulful track from the film Mother will captivate you with its melodious charm and heartfelt feeling. Yaar, kya baat hai? You know what, Dallas, this song has a vibe. And abhi वैसे ही गाने बज रहे हैं. And मेरे पास जो request आई थी वो काफी पुराने गाने की आई थी. हमारे एक फैन हैं, हमारे एक रेडियो लिसनर हैं श्रीनी जी, एंड उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट करी कुछ अलग ही. मैंने कहा नहीं श्रीनी जी, नहीं, आपको ऐसे गाने की रिक्वेस्ट करनी है जिसमें ये वाइब हो. तो उन्होंने कहा किस तरीके का वाइब. मैंने उनको बताया कि एक अपना कोई बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा इंसान आपके साथ गाड़ी में इस वक्त आपके बाजू में है. इतना खुशनुमा मौसम है, ये मौसम के मिजाज हैं, एंड आपके लिए ऐसे वाइब और खूबसूरत वाले गाने बज रहे हैं. लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं आप, और आपके मन में जो बात चल रही है वो ये है कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, काश यही वक्त रुक जाए एंड ये वाइब जारी रहे. 104.9 FM फनिशर रेडियो पर आप एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे नाइट. मेरे यानी आरजी स्वाति के साथ हंसते मुस्कुराते हुए दे रही हूँ डैलस आपका साथ. नेक्स्ट गाना है कुछ इसी वाइब का, एंड क्योंकि श्रीनी जी नाकामयाब रहे इस वाइब का गाना रिक्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने उनके लिए क्या चुना है डैलस, क्योंकि मेरे ऊपर अब ये जिम्मेदारी आ गई है कि मैं उन्हें गाने की चॉइस के थ्रू बताऊँ कि एक्चुअली में कौन से वाइब की मैं बात कर रही हूँ. लीजिए ये रहा वो गाना.

The biggest South Asian grocery store in town, Desi Mandi, has amazing, amazing offer. Craving more for less? Then this week, you are covered. Ji haan, Monday se Wednesday, buy one, get one free on biryani, noodles and fried rice. Thursday and Friday, buy one, get one free on dosas and chaats. Every weekday, 5 baje se leke 9 baje tak aap ja sakte hain and enjoy kar sakte hain ye amazing offers. No mix match, terms and conditions apply. More flavor, more savings all week long. Desi Mandi, located in Louisville, Texas. Zaroor jaiye aur check out kijiye. Dallas, hum jab gaane ki baat kar rahe hain, ek aisa kaisi film aayi thi jo film, you know, Bewafa ke naam se thi and usme koi Bewafa hota nahi actually, but kuch baat hai is film mein. ये फिल्म उस दौर में आई थी जब ऐसी फिल्में चल नहीं रही थी, मतलब यू नो एक 90s से ट्रांजिशन हो रहा था 2000 की तरफ और कुछ अलग जॉनर की फिल्म बनने लगी थी. एक टिपिकल उस तरीके की बात नहीं थी जैसे फिल्मों में एक बड़ी सादगी होती थी. इस फिल्म में यू नो साली को जीजा जी से शादी करनी पड़ जाती है और यही पर उस एक बंदे के साथ बेवफाई हो जाती है जिससे वो साली साहिबा प्यार कर बैठती हैं. तो बेवफाई एक्चुअली नहीं होती क्योंकि जो ये शादी होती है वो होती मजबूरी है, लेकिन फिल्म में इसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया. फिल्म आपने देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये गाना चलाने का क्या मतलब है, क्योंकि जैसा टेम्पो हम पकड़ के चल रहे हैं ना डैलस, एग्जैक्टली वही वाइब है.

0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू नो वॉट, सब चीज एक्साइट, और जो तारीफ मिलती है अपने पसंदीदा पर्सन से वो एक तरफ है ना. क्या इमोशनल बॉलीवुड ड्रामा वाली फिल्म थी यार, लेकिन मजेदार गाने, एक दिलरुबा है, प्यार का अंजाम, कैसे पिया से, और गिला गिला दिल गिला, ये सब गाने क्या गाने हैं, वाह वाह वाह, मज़ेदार हैं. दूसरा गाना अपने आप ही पॉप अप हो गया है डैलस, लेकिन हमारे पास एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने का वक्त है. और एक गाने की रिक्वेस्ट आई है संजय जी की तरफ से, वो है दिल संभल जा ज़रा. अपने लोग जो है ना, मैंने अपने एक ग्रुप में ये चीज़ डाली थी कि आज मैं शो कर रही हूँ, है ना, यू नो वॉट, उस ग्रुप से निकल के जितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमेशा मुझे ये करना चाहिए कि अपनों के बीच अपनों की बात पहुँचानी ज़रूर चाहिए, ताकि उनके दिल में से भी जो निकल के आए वो भी हम तक पहुँच पाए. एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा, कहीं पहुँच गए हैं तो गाड़ी बाहर लगा के सुनते रहिएगा हमारा ये फर्निशियर रेडियो 104.9 FM. फ्राइडे वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं आप. 8:29 हो चुके हैं और कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और यही एनर्जी के साथ बने रहिए.
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click. TheJagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

0: Welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio Dallas. क्या request आ रही है आज? मैंने आज जो दिशा पकड़ी है ना, उसमें मजा आ रहा है यार जाने में. अच्छा, एक गाने की request काफी पहले आई थी जो कि अभी वाले vibe से थोड़ी different है, but इंदु जी की request पर हम ये गाना चला देते हैं, क्योंकि जब भी हम बॉलीवुड की चांदनी को याद करना चाहते हैं, इट्स नेवर टू लेट. हेलो, नमस्कार, वेलकम ऑन एयर. क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वसीम जी ने जब पहले कॉल किया, तब उस समय पर मुझे तुरंत एक दूसरी कॉल आ रही थी जो बहुत देर से आ रही थी, और उनके डिटेल्स लेनी थी. एंड अभी वाले में मैं ऑलरेडी दूसरे कॉल पर थी. आपका कॉल ऑन एयर के दौरान आया है. जी, अब बताएं.
1: मैं इसलिए फोन किया, रात के 12 बजे मेरा बर्थडे भी आ रहा है.
0: अरे वाह, हैप्पी बर्थडे वसीम जी, क्या बात है. एंड आपका बर्थडे इस बार स्पेशल भी है. जी,
1: मुझे कुछ गाना देने चाह रहे थे, अच्छा सा गाना लगा दे.
0: चलिए, मैं एक अच्छा सा गाना लगा देती हूँ. आपने कुछ स्पेशल फरमाइश नहीं करी है, पर इस गाने के बाद हम आपको डेडिकेट करते हुए गाना लगा देंगे. ठीक है?
2: सही है.
0: थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज कई बार हम दूसरी कॉल पर होते हैं और कोई कॉल बार बार मिस हो जाती है, है ना? पर ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता डैलस कि हम आपको जरा सा भी इग्नोर करें. आप सब हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, बट नॉट मोर देन श्रीदेवी डैलस. बिन पूछे ये काम किया तुमने, हमें बदनाम किया.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम

0: बड़ी मस्ती करता है ऋतु, मेरी सोना सोना सोना सोना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
1: चांदनी मेरी चांदनी,
0: अरे चाचा चांदनी चांदनी करता है।

प्यार में तू जीत गई अपने प्रेमी पागल से, लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है यार, यू नो व्हाट, उनको कहना ही पड़ता है लड़कियों को कि चल भाई तू जीत गई मैं हार गया। एंड मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी कह लो उतना अच्छा है। वैसे मैं एक लड़की होने के नाते आपको ये भी बता दूँ कि मैं भले ही कह रही हूँ कि आप जितनी जल्दी ये कह लो वो अच्छा है, तो अगर लड़के ना बेचारे प्रिकॉशनरी तौर पर इसको जनहित में जारी करके अपना लेते हैं, अगर उन्होंने अगर कॉन्वर्सेशन शुरू होते आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही अगर पहले ही बोल दिया लड़की को कि यार कोई बात नहीं यार तू सही मैं गलत, तो पता लड़की इस बात से भी गुस्सा हो जाती कि तुम्हें कॉन्वर्सेशन कैरी ही नहीं करना, तुम चाहते हो कि ये कॉन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाए, इसलिए तुम इसको ख़त्म करने के लिए अपनी गलती मान रहे हो और मुझे सही ठहरा रहे हो, मुझे पता है तुम दिल से ऐसा फील नहीं करते हो। लड़कियों का क्या है यार, समझ ही नहीं आता चाहते क्या। हम चाहते तो यही कि तुम अपनी गलती मान लो, लेकिन जब अपनी गलती मान लेते हो वो भी बहुत जल्दी से, तो हमें डाउट होता है इतनी जल्दी कैसे मान गए। ओके, सो वसीम जी का है बर्थडे। हम वसीम जी आपको ढेर सारी बधाइयां, एंड आपके लिए गाना एक पल का जीना, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको हर पल जीने की दस्तक देती है, आपको ये सोचना है कि आप इसे कैसे जिएंगे। ये तो सोचना ही नहीं है कि जिंदगी जीने नहीं दे रही है, हमें ये सोचना है हर पल जीने की दस्तक दे रही है कैसे जीना है ना।

राइट ऑल राइट डैलेस, ये रिक्वेस्ट हमने वसीम जी को, मतलब ये डेडिकेशन हमने वसीम जी को किया था. अब हमारे एक और रेडियो फैन जो कि 104.9 FM सुनते हैं, स्पेशली मेरा शो सुनते रहते हैं, उनका नाम है प्रतीक पटेल. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन प्रतीक, एंड इट्स योर बर्थडे टुमारो, एंड कल तो मैं होंगी नहीं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्यों नहीं हम आज ही कर लेते हैं. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक. आई विश आपको कल आपके बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट मिले जिसका आपको बड़े लंबे समय से इंतजार था, है ना. और इसी शुभकामना के साथ अगला गाना चलाऊंगी. वो गाना इतना वाइब से भरा हुआ है कि आई एम श्योर एवरीबॉडी, यानी कि डैलस की पूरी जनता इसे लाइक करेगी. बट क्यों ना इस गाने को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाते हुए मैं आपको इसमें प्रतीक को गिफ्ट तो कर ही रहे हैं हम गाना, लेकिन आपको कुछ एक्साइटिंग जीतने का मौका दे देते हैं. चलिए, हियर इज योर चांस टू विन कड़ाही पनीर और कड़ाही चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन. आप एंजॉय कर सकते हैं इसकी स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमट ड्राइव इन एलन. विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. जी हाँ, आपको जवाब देना है कि ये जो गाना मैं अगला बजा रही हूँ, जिसको हमने डेडिकेट किया है प्रतीक के लिए, ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है. A very happy birthday to you, Prateek, once again. And may you find your best gift tomorrow.

वंडरफुल, क्या बात है यार। ये गाना मैंने आपको पूछा और इस गाने के लिए मेरे पास कॉल्स की लाइन लग गई। हर किसी को पता था कि ये फिल्म अक्सर का गाना है। एंड उस टाइम ना ये सारे गाने एक साथ, आशिक बनाया, भीगे होंठ, यू नो तू ही मेरी शब, एंड फिर ये अक्सर का झलक दिखला जा, एंड ये जो अभी गाना सोनिए सुन रहे थे आप, एंड इसके बाद इसी लाइन में पता है कौन सा गाना आ रहा है ना? ये गाना भी बिल्कुल जाता है इसके साथ। जालस, मानना तो पड़ेगा यार, आज जो मैंने आपके लॉन्ग ड्राइव वाला मूड बनाए रखा है कॉन्स्टेंटली, आप मुझे पता है बड़ी सारी दुआएं दे रहे होंगे और बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे, है ना, हमारे इस रेडियो स्टेशन का और मेरा भी।

डैलस, यकीन मानिए हम कभी नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी अनहोनी हो, लेकिन अगर इन केस यू इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप और फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी अमर ख्वाजा आपके लिए आपका केस फाइट करेंगे एंड आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड दैट कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर यू एंड इफ़ यू आर फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस, देन यू नीड टू कॉल इमिडिएटली 4693005046. जी हाँ, अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे. यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर फ्री कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली कॉल दिस नंबर 4693005046 या फिर विजिट कर सकते हैं attorneyumar.com. ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त इस आखिरी गाने के साथ. अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपनी यादें बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा एंड डेफिनेटली डू मिस मी ताकि मैं अगले फ्राइडे वापस से आपके साथ जुड़ जाऊँ. थैंक यू सो मच मेरा इतना खूबसूरत साथ निभाने के लिए. डैलस 104.9 FM फनीशर रेडियो. सुनते रहिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: Club Phanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: बड़ी

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: पीवीएस मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बउआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई।
2: पूरी की

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
2: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Anand?
1: Lagi do.
2: I love you.
1: Anand, tera phone aaya yaar.
0: Aur

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
3: अरे मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो

0: one is your one. Oh, 4.9 FM, Dallas got deal.
1: जिद छड़ दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

सब क्या बोल रहे सब लोग एमवे बनता है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: Moon, you're

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: When they mount, pain of God. Let's go, yeah.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: एक ब्रेसलेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैक इट राइट अवे।

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy।
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodiyalcpa.com.
8: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
10: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
10: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bhai super hit.
11: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
12: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
13: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आपके कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको बहुत ही प्यारे गीतों की ओर, जो कि पुने हैं आज एक ही धागे से, यानी कि थीम शो ले आई हूँ फिर एक बार आपके लिए। आज थीम शो की जानिब से कहूंगी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट टुडे। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट हाईलाइट्स the fundamental role of light in science, in culture, in art, in education and sustainable development. And with that said, main le aayi hu kuch aise gaane jin mein baatein hongi light ke bare mein. Light, illumination. Well, ek bahana chahiye tha, mil gaya is theme ke liye, इन गीतों को एंजॉय करने के लिए, इस प्रस्तुति को आप तक ले आने के लिए। उम्मीद करती हूँ देंगे आप मेरा साथ ऑल द वे अंटिल 10 AM, और शुरुआत करते हैं इस गीत से, सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। आई आस्क यू टू लेट मी नो व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ नेचुरल लाइट। ऑन दैट नोट 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की जानिब से आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए पेश है. ले आई हूँ कुछ गीत जिनमें होंगी बातें अबाउट लाइट. On that note, asking you the question, what are some natural sources of light? Let me know at 972-235-5555. जो तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे बताएंगे वो 972-235-5555 पे. While we enjoy this beautiful track, सूरज हुआ मध्यम.

0: such a dreamy track that is, taken from the film K3G. Suraj Hua Madham, with backdrop of the beautiful pyramids and other beautiful scenes captured from Egypt. Aur dreamy song ke baad ye kahungi ki agar dream hai aur hasil karna cha rahe hain, yani ki sapno ko haqeeqat mein badalna cha rahe hain, kaun se wale sapne? Ghar khareedne wale sapne. So then you want to remember the name Dream Home Mortgage, because they've been helping families achieve home ownership since 1998. That's a long time and lot of experience. Iske alawa, they also license in all 50 states. Aur inka jo expert team hai, wo deliver karta hai stress-free tailor mortgage solutions. And then they go ahead to make your dream home a reality. For more information, give them a call at 972-245-5626. Ya visit kijiye dreamhomemortgage.com.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
0: तो मैं आपसे पूछ रही थी, व्हाट आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि नॉट द वंस दैट आर मैन मेड बट बाय नेचर. तो काफी अच्छा लिस्ट है ये, द सन, द स्टार्स, द मून लाइट ऑल्सो. आई मीन इट इज आफ्टर ऑल इन नेचर, इट मे नॉट बी द प्राइमरी सोर्स, हाउ एवर इट इज इन नेचर. एंड इसके अलावा द ऑरोरा बोरालिस और व्हाट आर नाउ बेटर कॉल्ड द नॉर्दर्न लाइट्स, देयर इज अ फायर दैट्स मेड नेचुरली, एंड द बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फायर फ्लाइज. फायर फ्लाइज को भाई हिंदी में क्या कहते हैं वो बताएंगे अब मुझे आप 972-235-5555 पे, while we enjoy this beautiful track, Chandni.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम।

0: ओ मेरी चांदनी तू मेरी चांदनी ओ मेरी चांदनी।
1: बहुत ही प्यारा गीत, फिल्म का नाम भी चांदनी, टाइटल सॉन्ग, यस दैट वाज। तो आपसे मैं पूछ रही थी कि जब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के नाम है तो वी नो इट इज द सन, द मून, द स्टार्स, ऑल्सो द लावा, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जेलीफिश। और आपसे पूछा मैंने जेलीफिश एंड फायरफ्लाइज कि भाई फायरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभी भी आप बता सकते हैं मुझे 9722355555 पे। वैसे जो अगला गाना है ना, दैट माइट गिव इट ऑफ, सो वांट टू गो अहेड एंड लेट यू नो कि फायरफ्लाई को कहते हैं जुगनू, एंड द फीमेल फायरफ्लाई इज जुगनी। समथिंग वी लर्न टुडे, राइट?

वैसे कोई चांस नहीं है हमारे फ्यूचर व्यूचर का। हे मीरा, कुछ दिन यू नो दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कुछ सोचने को कि

एंड वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत जो कि जुड़े हुए हैं आज इंटरनेशनल डे ऑफ द लाइट के जानिब से, और इस सेगमेंट को ओपन करना चाहती हूं विद दीज लिरिक्स। आपने मुझे बताना है ये कौन सा गाना है। अंतरे के बीच में आते हैं ये दो पंक्तियां। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। वन मोर टाइम। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। बताना ये कौन सा गाना है। वाइल वी एंजॉय अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक, वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जोकर, और ये बातें कर रहे हैं जुगनू के बारे में। जुगनू इज अ फायर फ्लाई एंड इट्स डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ लाइट व्हेन इट इज ओनली डार्क अंटिल दे अराइव।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स
1: ब्यूटिफुल ट्रैक दैट वॉज लिया था फिल्म आंधी से. द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फेल्ट इवन मोर व्हेन इट इज ऑल डार्क बिफोर दैट एंड व्हेन यू सी द फ्लिकर ऑफ लाइट और जस्ट अ बीम ऑफ लाइट इट फील्स ब्राइट इमिडिएटली फील्स ब्राइटर सडनली. ये गाना मुझे याद आया, मैंने सोचा आज आपको सुनवाती हूँ. बहुत ही प्यारा गीत है.

0: अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है. Well, all you need is that guide, someone to help you, support you, and be with you in case you are involved in a car or a truck accident or maybe a slip or a fall incident. Or someone to be by your side. उनका नाम है अटॉर्नी उमर ख्वाजा. He will fight for your case. मदद करेंगे आपकी to get the compensation that you deserve. आपके लिए इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी वार्तालाप करके आपकी मदद करेंगे. एंड ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड. नाउ ऑल्सो वॉन्ट टू एड दैट यू डोंट पे अंटिल यू विन इज़ व्हाट दे से एट उमर ख्वाजाज ऑफिस. सो नाउ फॉर ऑल दिस एंड मोर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन रादर कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
0: जब अल्फाजों हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. वो है गाना जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए. पेश है आप सभी के लिए राइटर ऑन म्यूजिक मंत्र जिसमें मैं हूं आपकी संग संगीता.

जब किसी के लाइफ में बस डार्कनेस है, बी दैट बीकन, दैट पर्सन दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, बी द ग्लिमर ऑफ होप, ऑफर स्मॉल बट एनकरेजिंग साइंस ऑफ समथिंग गुड इज पॉसिबल. बी दैट गाइडिंग स्टार, द रोल मॉडल दैट लीड्स थ्रू चैलेंजेस, और बी अ फ्लैश ऑफ इनसाइट विच लाइक अ सडन मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट लाइट्स अप देयर माइंड.

0: Ye Tara Wo Tara, perfect song for our show. So talking about light on this International Day of Light, on that note, I ask you a question. What are some man-made sources of light? Yaniki, sources of light that are not natural. You're going to call me in the studio and let me know at 972-235-5555. Abhi waqt hota hai Ravi Imports Warehouse ki janib se kuch batane ka aapko. Well, Dallas, listen up. Store owners, this is your time to pay attention because this one is for you. Ravi summer kickoff is back. So mark your calendars for June 3rd and June 4th from 9 a.m. until 5 p.m. And this year, it is bigger. It is much bigger. The entire warehouse turns into a tropical experience. You want to come out there to get your hands on some crazy deals, because that's what you're going to expect. Crazy deals, new product launches, and free gifts all day long. Come out and meet vendors, discover best sellers, and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse at 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
0: 104.9 FM. सुन रहे हैं आप म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपकी संग संगीता, आपका मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक. हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत जो कि जुड़े हुए हैं एक थीम से. द थीम इज ऑल थिंग्स लाइट, बी इट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. We are making this day beautiful and bright. So if you have a song on mind that has to do with the theme, remember the number 972-235-5555. Aur ek aur baar dohrati hu mera sawal. Bataye mujhe names of some man-made sources of light. We're going to come back and hopefully probably start off with some happy, peppy songs, making this morning and this show more beautiful and super bright. Stay tuned. Sun rahe aap Music Mantra, jismein main hoon aapke sang sangeeta. Man-made sources of light is what I'm looking for from you.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that, when it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
6: Boom! भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
12: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
13: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
12: सच में बिल्कुल घर जैसा।
13: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
14: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.

0: Hello.
1: We are the sounds of the streets.
2: Beautiful track from Tumhari Sulu. That was a fun one. Bijli girane main hu aayi. Kehte hain mujhko hawa hawai. Aur aapse poochti hu agar panktiyan hain, battiyan bujha do. बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। ये कौन से गाने की पंक्तियां हैं बताएंगे 9722355555 पे, सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम man-made sources of light, and those include definitely the light bulb. Uske alawa there is lanterns. Well, there's fire also, man-made fire with wood, one of the first and the warm inventions with light was the fire with wood. And there are some more that you're going to share with me at 972-235-5555.

0: All right, Saavan Mein Lag Gayi Aag, fun song. And, you know, if it was just enough, same kind of fun and enjoyable, if it was okay to have fun when you are going to a clinic, or maybe you felt enjoyable going to a clinic. Has it happened really ever with you? If not, then this afternoon, yes, today, from 2 to 4, you want to go and step into a whole new healthcare experience at Lenoxy Medical by Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting in Frisco. When you go there, you're going to enjoy a drink or a sip from a custom latte bar. Enjoy nothing bundt cakes. There'll be ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Remember, this clinic is in Frisco and the address is 9191 Kaiser Way, Suite 205. This is happening today from 2 to 4 p.m. It is their grand opening and they will also give you a chance to enter the grand opening raffle to win exciting med spa prizes. So remember, Lenoxy Medical is having their grand opening today from 2 to 4 p.m. in Frisco. Be there. You want to be there.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
0: Talking about man-made sources of light, we have quite a few actually, right? I mean, this is like a huge invention of man-made sources of light. Now, with that said, one of them is the candle. Candle ko Hindi mein kya kehte hain? Batayenge mujhe 972-235-5555 pe. And we will talk about the importance of having a candle on the cake. One more time, celebrating International Day of Light. You have a song on mind you want to listen to that's based on this topic. Aap mujhe call karenge studio mein 972-235-5555 pe. I'm going to be here until 10 a.m. Lungi aapki darkhwas aur koshish karungi aap tak le aane ke liye wo geet. What is the importance of having a candle on a birthday cake? If any of you know, let me know that as well. 972-235-5555 is the number to the studio.
2: Laptop, charger, coffee, phone, oof! ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
3: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
2: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
3: आहा आई कीप दैट पाथ सिंपल
2: कैसे
3: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
2: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
3: या कैरेटली इन काइंड
4: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carrot Lane, a Tata product, now open in Frisco.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan, dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का
7: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
8: विजिट psychicramnath.com कॉल 469-347-4401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना
5: फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
12: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601.
10: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
12: Amreen Salon. Style that moves with you.
10: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
13: Hi, I'm Rajkumar Rao. And you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Such a cute song, A.R. Rahman ka, Sangeeta, or Ishan Khattar ki dance moves, always enjoyable. Well, here's your chance, friends, to win either a kadai paneer dish or a kadai chicken dish from Chandigarh Bites in Allen. Plus, enjoy the special thali from Monday to Friday with exciting new dishes, jo ki har roz lunch ke liye rotate karte hain. Aur address batana chahungi, inka location hai McDermott par in Allen. Aur online par hai chandigarhbites.com pe. So now, question is, ye jo agla gana main aapko sunaungi, ye gana kis film ka hai? Bahut hi saral sawal hai. आपका अगर सही जवाब है मैं आपका नाम डालूंगी एक लिस्ट पे और अगर आप जीतेंगे तो आप बताएंगे मुझे आप वो कढ़ाई पनीर पसंद करेंगे या कढ़ाई चिकन चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन से. ऑलराइट, वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर एट द नंबर 9722355555. आल्सो स्टिल टेकिंग द रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन, कैंडल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर पहले ये वाला, आप बताएं मुझे ये गाना किस फिल्म से है.

That was bitchily, bitchily. And now something very

0: Well, मुझे जो घड़ी है ना वो बता रही है कि वक्त हो गया है जाने का. I want to say that nothing can dim the light that shines from within by Maya Angelou.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
0: तो दोस्तों, रोशनी सिर्फ सूरज या बल्ब में नहीं होती, वो हर उस लम्हे में होती है जो हमें जीना सिखाती है. कभी वो जुगनू बनकर अंधेरे को तोड़ती है, कभी चिराग बनकर रास्ता दिखाती है, और कभी नूर बनकर दिल को रोशन कर देती है. और इस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर मैं कहती हूँ, बी ब्राइट, बी हैप्पी, बी यू. विद दैट ये भी कहती हूँ कि ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो द फनी शो रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. फनी शो.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
14: भाई, ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
15: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
14: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
15: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
16: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, मीट योरसेल्फ.
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद 972-235-5555। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। जैसा कि मैंने कहा आज हम जस्ट चिल में, अब जैसे पिछली बार हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की, तो आज मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश की। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, जा चुके हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555।

वेल दैट वॉज मायरी यूफोरिया एंड यस, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है दैट इज भोपाल। एंड भोपाल से मेरा कुछ खास ही रिश्ता है, और वो इसलिए कि भोपाल इज ऑल्सो माई ससुराल। जी हाँ, तो ऑफ कोर्स यू नो एक अलग ही उसका एक इम्पोर्टेंस है। सो वेल, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो और भी बहुत सी मज़ेदार बातें हैं भोपाल की जो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये गाना विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। एंड इफ यू हैव अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन माइंड रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, डू गिव मी अ कॉल। द नंबर इज़ 972-235-5555।

0: जी हाँ, मेरे नैना जो थे पिया से भोपाल में ही लड़े थे. एंड भोपाल की अगर बात करें राइट, तो ऑफ कोर्स इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश. एंड मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शोले मूवी मध्य प्रदेश में ही काफ़ी कुछ शूट हुई थी एंड फेमस हुए थे सूरमा भोपाली. सो हाउ अबाउट वी लिसन टू वन ऑफ सूरमा भोपाली'स डायलॉग एंड देन आई विल टॉक मोर अबाउट मध्य प्रदेश.
1: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दू तब ना, एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते कि धरवा और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने. बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने.
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो.
1: अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है. अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो. वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए.
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ. अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, झटा झट झटा झट बहुत मारा बहुत मारा.
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा.
3: क्या कहा?
1: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे. अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो. चलो हाँ काम करो. अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ. मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था. और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से. ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी डन डन हो रही है.
3: सूरमा भाई.
1: हाँ भाई.
3: हम अपने 1000 रुपए लेने आए.
1: 1000 रुपए?
4: हाँ हाँ, 1000 रुपए.
1: अच्छा हाँ, 1000 रुपए. अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे. वो दिन है और आज का दिन है. लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो. ये देखो 200 के 10 है, गिन लो.
5: Tracks that put you on the right track.

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो।

जी हाँ, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ना, रुडयार्ड किपलिंग्स की जो जंगल बुक है, वो जो जंगल है, माना जाता है कि वो जंगल यहीं कहीं मध्य प्रदेश में ही था। एंड इसी बात पर ये अगला गाना, विच इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: Astrology readings have a guidance only and results may vary.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: Tune सुनते ही brand click कर गया ना? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
9: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
10: Thank you so much for tuning into 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, और आज हमारे travel segment में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की. तो आपको बताऊं दैट फॉर सेंचुरीज मध्य प्रदेश जो है ना हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक. कहते हैं कि यू नो टू मिडिवल लेजेंडरी सिंगर्स तानसेन एंड बैजू बावरा व बॉर्न नियर ग्वालियर. तो ये ग्वालियर की पैदाइश, ग्वालियर के पास की पैदाइश थी तानसेन और बैजू बावरा की. वेल ऐसे ही कुछ और फन फैक्ट्स एंड मज़ेदार बातें करूँगी आपके साथ शेयर दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355 55, 55.

Well, that was taken from the movie Hum Dil De Chuke Sanam. अच्छा, despite all safety measures, कई बार होता है कि आप कोई ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, यू नो, कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाता है, तो वैसे ही आपको इतना शॉक लगा होता है कि समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें, हु शुड बी रीच आउट टू. सो याद रखिए अटर्नी ओमार ख्वाजा को, एज ही कैन फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी से भी वही डील करेंगे. एंड अच्छी बात यह है दैट यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 469-300-5046. द नंबर वंस अगेन इज 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

Well, that was Anaida singing Uchi Nichi Hai Dagariya. That was a request coming from Kirti, Sandeep, Surbi and Soumya all the way from Kuwait. Thank you so much for tuning in. And yes, aaj hum baat kar rahe hain Madhya Pradesh ki. To jo ye Kirti hain, ye bhi Bhopal se hi hain. And yes, kuch aur mazedar baatein bhi bataungi aapko Madhya Pradesh ki. To aapko bataun ki independence ke baad jo pehli capital thi city of Madhya Pradesh, that was Nagpur. लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स भोपाल हो गई एंड देन द अमेजिंग खजुराहो टेम्पल्स ये भी मध्य प्रदेश में ही हैं यू नो दीज एंशियंट एंड वन ऑफ अ काइंड टेम्पल्स इन द वर्ल्ड आर अडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट यू नो सेंसुअस कार्विंग्स एंड जो स्कल्पचर्स हैं दे शोकेस द ओपन प्रोग्रेसिव एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द टाइम ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं दे आर एपिटोम ऑफ आर्किटेक्चरल मार्वल एंड एलिगेंस और ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं ये कहते हैं वर्ल्ड फेमस हैं फॉर इट्स स्टनिंग टेंपल कार्विंग्स एंड इज आल्सो कंसिडर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट

Well, that was a beautiful, beautiful song taken from Utsav. And yes, अब जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर हैज़ अ मैजिकल मार्बल रॉक्स एट भेड़ाघाट वेयर द रिवर फ्लोज बिटवीन जायंट व्हाइट मार्बल क्लिफ्स. ये भी बड़ी अच्छी सी एक साइट है देखने के लिए. देन ऑफ कोर्स द स्पिरिचुअल टाउन ऑफ उज्जैन है विच होस्ट द फेमस कुंभ मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट. एंड सांची स्तूपा, उन सब की भी बात करूंगी. एंड वहाँ पे ना मध्य प्रदेश में एक पन्ना जो है, पन्ना खान है, एंड बड़ा ही खूबसूरत से वहाँ पन्ना निकलता है. सो बहुत सी और बातें, लेकिन पहले ये अगला गाना, विच इज़ अगेन अ सॉन्ग रिक्वेस्ट.

0: वेल, अभी अभी मम्मी ने फोन किया और डांट पड़ी कि भैया पन्ना नहीं निकलता है, हीरा निकलता है. सो यस, हीरा निकलता है. एंड यस, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ना ग्वालियर में एक मेला लगता है. तो मम्मी मेरी आई हुई हैं एंड शी वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि वहाँ क्या कब लगता है ये मेला और कैसा होता है. सो चलिए सुनते हैं उनसे. तो आप क्या बता रही थी, मेला कब होता है?
1: अब मेला वहाँ दिसंबर महीने में होता है, दिसंबर एंड से शुरू होकर जनवरी तक जाता है।
0: अच्छा.
1: और वहाँ हम लोग सब फैमिली समेत सब जाते थे, घूमते थे, खूब चाट पकोड़े खाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब दिसंबर आए और कब हम लोग एंजॉय
0: तो ये
1: करें।
0: जो मेला है ग्वालियर का, ये पूरे
1: जी,
0: साल नहीं लगता है, सिर्फ
1: पूरे साल
0: दिसंबर
1: नहीं
0: में?
1: लगता है, दिसंबर में ही लगता है। वहाँ जानवरों का भी मेला लगता है, पहले जानवर बिकते हैं,
0: अच्छा.
1: उसके जैसे गाय भैंस बैल लोग खरीदते हैं किसान,
0: हाँ,
1: और उसके बाद ये मेला लगता है। तो वहाँ सभी पब्लिक बहुत एंजॉय
0: और
1: करती है।
0: मुझे याद
1: और
0: है

0: वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सी स्टॉल्स लगती हैं।
1: चाट चाट का मेल वहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉक आता है। वो
0: अच्छा
1: लोग तरह तरह की चाट खिलाते हैं, तो
0: अच्छा
1: बच्चे वगैरह फैमिली समेत जाओ, बहुत अच्छा लगता है
0: तो
1: वहाँ।
0: खाने में सबसे ज्यादा वहाँ क्या खाना चाहिए, रबड़ी या जलेबी या दूध जलेबी?
1: गाजर का हलवा बहुत अच्छा
0: अच्छा,
1: बनता
0: लेकिन मैंने सुना है कि दूध जलेबी भी काफी अच्छी होती है।
1: दूध जलेबी भी रहती है,
0: हाँ
1: वो तो वगैरह अपनी अपनी पसंद है, जो जिसको
0: हाँ
1: ज्यादा अच्छा लगे।
0: अच्छा, तो आपका बचपन ग्वालियर में ही बीता
1: मेरा
0: है?
1: बचपन ग्वालियर में बीता, मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई,
0: अच्छा
1: पद्मा विद्यालय और KRG कॉलेज से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की।
0: अच्छा अच्छा अच्छा और जो आप वो हीरा पन्ना बता रही थी, तो पन्ना की खान है उसमें से हीरा निकलता है,
1: जी हाँ,
0: कहाँ पे है ये?
1: ये पन्ना में ही है, वहां से थोड़ा दूर पर है, एक विलेज है वहां से निकलता है।
0: अच्छा। वेल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग माई एरर। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। एंड यस, मेले में जाएं तो ये सब तो खाएं, गाजर का हलवा, लेकिन मेरा फेवरेट दूध जलेबी भी ज़रूर खाइएगा।

जी हाँ, वाह भाई वाह, जलेबी तो खाएं। एंड मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पोहा जलेबी ज़रूर खाएं। एंड मध्य प्रदेश जाएं तो इंदौर ज़रूर जाएं। बट एक तो बड़ी साफ़ सुथरी सी ये सिटी है, एंड खाने पीने की तो लग्जरी जो इंदौर में है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको इतनी आसानी से मिलेगी। वहाँ एक सराफा है, वेल उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बताऊंगी मैं ल्यूनॉक्सी मेडिकल के बारे में। जी हाँ, डैलस, व्हाट इफ गोइंग टू अ क्लिनिक एक्चुअली फेल्ट इंजॉयबल। सोचिए, मतलब डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं लेकिन मज़ा भी आने वाला है। सो आज May 16 को यू कैन स्टेप इनटू अ होल न्यू हेल्थ केयर एक्सपीरियंस एट ल्यूनॉक्सी मेडिकल, टेक्सस प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स ग्रैंड रिबन कटिंग। ये होगा 2 बजे से दोपहर के 4 बजे तक इन फ्रिस्को। सो यू नो यू कैन सिप फ्रॉम अ कस्टम लाते बार, एंजॉय नथिंग बट केक्स एंड आइसक्रीम एंड मोर वाइल टूरिंग द मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक। साथ ही साथ एंटर द ग्रैंड ओपनिंग रैफल फॉर अ चांस टू विन एक्साइटिंग मेड स्पा प्राइजेस। तो मतलब किस बात की देरी है, बस एड्रेस जान लें। जी हाँ, यू नीड टू विजिट ल्यूनॉक्सी मेडिकल एट 9191 काइसर वे स्वीट 205 एंड दैट्स इन फ्रिस्को। अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट, यू नो, विद नो कोस्ट लाइन, तो बस और ट्रेन सर्विस से ही यू नो यू कैन कवर मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब तो रोड्स भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं, सो यू कैन यू नो ट्रैवल बाय कार, अदरवाइज ट्रेन्स एंड बसेस आर द बेस्ट मोड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इट्स वेरी सीनिक, स्पेशली तो आप जाएँ एंड यू कैन ट्रैवल अ लॉट यूजिंग यू नो कार्स, ट्रेन्स और बसेस।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Chicken banana.
11: चिकन बनाना?
12: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
4: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
4: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
14: Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
15: Aaja meri gaadi mein baith ja.
16: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
17: Wo thoda overheating tha.
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
9: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

Well, that beautiful song was taken from the movie Guide. जी हाँ, Guide की भी काफी कुछ शूटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में ही हुई थी. अच्छा, मध्य प्रदेश में ही एक शहर है रीवा. जी हाँ, रीवा जो है मेरी ननिहाल है एंड मेरा बहुत ही प्यारा सा ये क्यूट सा शहर है. मेरे मामा मामी अभी भी वहाँ रहते हैं एंड दिस इज़ अ शाउट आउट टू पंडित मामा, रीता मामी, सेठ मामा, सिठानी मामी एंड ऑल माई लवली कजन्स, क्योंकि ऑल दो बहुत साल हो गए हैं रीवा गए हुए, लेकिन रीवा जो है दिल में बसा हुआ है. अच्छा, रीवा की अगर आपको बात बताऊं तो इट्स फेमसली नोन एज द लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, और वो इसलिए कि दुनिया का जो पहला नोन वाइट टाइगर जिसका नाम था मोहन वॉज डिस्कवर्ड इन 1951, और ये रीवा का ही है. सो रीवा का मतलब कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ सफ़ेद बाघ है. Many white tigers seen in zoos around the world today are believed to have roots connected to Rewa's royal lineage. Ji haan, Rewa ka fort bhi jo hai na is a very rich royal history and was once home to the Baghela kings of region. Rewa ki agar aur baat bataun aapko to was once an important princely state during British India and had strong cultural and musical traditions, you know. Ye jo famous classical music legend Tansen hai, he is believed to have had connections with Rewa ki royal court before unhone Akbar ka jo court join kiya. Uske pehle Tansen jo hai, he was in the Rewa ka जो कहते हैं महाराजाओं के उसमें थे. एंड रीवा इज़ नोन फॉर ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स, जैसे कि यू नो केतकी फॉल्स एंड पुरवा फॉल्स. सम ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन मध्य प्रदेश आर ऑल नियर रीवा. एंड इस रीजन को कहा जाता है गेटवे टू द विंध्या रेंजेस, गिविंग इट स्टनिंग एंड नेचुरल लैंडस्केप्स एज वेल. रीवा का एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है विद हिंदी लिटरेचर एंड फोक कल्चर, स्पेशली बाघेली लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस. आपको पता है ये जो वर्ड रीवा है इज़ अनदर एंशियंट नेम फॉर द नर्मदा रिवर. सो इतनी सारी बातें एंड सबसे अच्छी बात कि मेरी ननिहाल है एंड आई लव रीवा. सो अ बिग शाउट आउट टू ऑल माई मामाज एंड मामीज एंड माई कजन्स. आई लव रीवा. ऑफकोर्स बहुत साल हो गए हैं रीवा आए हुए, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आप सबको विजिट करूँ. अच्छा, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले बताना चाहूँगी दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ए जी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. ये आपको ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो यू कैन कॉल देम, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintechs.com. अच्छा, कमिंग बैक टू रीवा, रीवा में ना मेरे जो सेठ मामा है वो हर रोज शाम को शिवजी का एक शंकर मंदिर है वहाँ जाते हैं वॉक कर रहे हैं. सो वो एक अच्छी सी याद है क्योंकि हम हमेशा उनके साथ वॉक करते थे एंड ही वुड बाय अस वो आइसक्रीम, उसके ऊपर वो टूटी फ्रूटी लगी हुई. अभी भी आई हैव दोज फॉन्ड नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ रीवा.

0: Well, that was Kailash Kher's Bum Lehri, and that was a song request coming from Mayank. Mayank, thank you so much for tuning in to each and every show of mine. You are a wonderful listener. Thank you so much for tuning in. Sun rahe hain aap 104.9 FM, Pan Asia Radio, bringing the community together. Main hoon Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, I do have a listener who is from Indore. Hi, you're live on air.
1: हाय, कैसी हैं आप? आपने रीवा का नाम लिया तो मैंने कहा कि आपकी टांग खींची जाए थोड़ी.
0: नहीं नहीं, आप क्यों टांग क्यों खींचेंगे भाई, हमारी ननिहाल है, रीवा की बात तो बनती है.
1: बिल्कुल, तो आप आए नहीं दाल बाफले खाने, तो
0: मैं आई हूँ. पता है, मैंने इंदौर भी, क्योंकि मेरी ससुराल भोपाल है, तो और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने इंजीनियरिंग इंदौर से की है, तो ही हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स इंदौर, एंड इंदौर में मेरी बुआ रहती थी, सो आई हैव ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ इंदौर. सराफा ले जाती थी, वो शीश महल उन्होंने घुमाया था, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट इंदौर. बट आप बताइए, आप इंदौर में,
1: मैंने कहा कि डैलस में आपने दाल बाफले मिस कर दी है.
0: हाँ, अब आप बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगी खाने. लेकिन आप बताइए, सराफे में जाके शिकंजी पी कि नहीं पी?
1: हाँ बिल्कुल, वो तो पीना बनता ही है. और सून गोइंग टू डू दैट अगेन, मतलब इट्स नेवर इनफ. और छप्पन में और नेमा जी की 24 कैरेट वाली कुल्फी.
0: आपने ना मेरी बुआ की याद दिला दी. माय बुआ यूज्ड टू लिव देयर, माय भिन्नू बुआ यूज्ड टू लिव देयर इंदौर में, और वो मुझे ले जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे ये सब पसंद आएगा, तो वो कीस खिलाती थी, वो भुट्टे की जो कीस होती है ना,
1: भुट्टे की कीस, करारू,
0: मुझे याद है कि वो मेरे को वहाँ पे इंदौर में लहंगा वहीं से आता था हमेशा मेरे लिए, लहंगा जो है वो इंदौर से आता था, एंड पायल दिलवाती थी, एंड ये सब खाने पीने की चीजें, और वहाँ के वो जो टेम्पो थे ना जो हमें ले जाते थे सराफे तक, आहा, सब कुछ याद आ रहा है.
1: अब वो टेम्पो नहीं रहे, बस उनकी यादें दिल में बसी हुई.
0: True. तो अच्छा, लास्ट आप कब गई थी इंदौर?
1: मैं गई थी दिसंबर 2024, बट आई एम गोइंग टू गो सून.
0: तो भैया मेरी तरफ से शिकंजी जरूर पीजिएगा. अच्छा, लिसनर्स को बता दूं कि शिकंजी, वो लोग शिकंजी से कंफ्यूज ना हो लिसनर्स, सो शिकंजी इज नॉट अ नींबू पानी, इट्स लाइक अ लस्सी. इट्स लाइक अ लस्सी और पता नहीं किसका मिक्स, बताऊं, एंड अमेजिंग होते
1: हैं. नहीं, उसपे फिर ड्राई फ्रूट डलते हैं, प्लस रबड़ी अलग से डलती है ऊपर से. मतलब अगर आपने शिकंजी पी तो आपका लंच हो गया,
0: लंच डिनर, अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी हो गया. वो इतनी हैवी होती है कि हम चार लोग भी अगर स्प्लिट करके उसको पियेंगे ना तो भी हमारा पेट भर जाएगा. सो
1: आई थिंक अभी हमारी जो एपेटाइट हो गई है, मतलब वो एक बंदा फिनिश नहीं कर सकता. मतलब फिनिश कर तो लेगा, बट बहुत उसकी हालत खराब होती है. अब हमारी एपेटाइट उतनी बड़ी हुई है, हैवी क्रीम, मतलब हैवी रबड़ी नहीं खाने लायक नहीं रही है.
0: थैंक यू सो मच.
1: बता दो, ये डैलस में बहुत रीवा के लोग हैं, कभी आइएगा तो आपको मिलवाते हैं रीवा से.
0: अच्छा, तो रीवा के लोग, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि रीवा भोपाल के मिले हैं, इंदौर के मिले हैं, बट रीवा के आई डोंट नो कि यहाँ लोग हैं. मुझे लगता था मैं ही एक अकेली हूँ रीवा के.
1: जब भी आपको टाइम मिले तो हम आपको रीवा वालों से भी मिलवा देंगे.
0: जरूर जरूर जरूर आऊंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.
1: ताजा हो जाएगी कि आपकी वो गली, वो नुक्कड़, वो सब कैसे है, आपको हालचाल पता चल जाएगा.
0: श्योर श्योर, डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड रिमाइंडिंग मी ऑफ माय ब्यूटीफुल मेमोरीज. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.
1: एब्सोल्युटली, एनी टाइम.
0: टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीकेंड. बाय बाय.

They can from the movie Ahsoka, that was Raat Ka Nasha. And Madhya Pradesh ki baat karein, to chalo aapko main Chanderi shahar ke baare mein bataun. Chanderi jo hai is world famous for elegant Chanderi sadis, known for their ultra light fabric and royal look. Traditionally, you know, weavers jo the, they would apply kajal ki ek bindi on the sadi to protect them from the evil eye, ki buri nazar na lage. Chanderi Fort kaha jata hai, stands on a hill and offers breathtaking views of the ancient town. Of course, main nahi gayi hoon, lekin maine bahut si baatein suni hai is Chanderi Fort ke bare mein. And Chanderi jo hai is a mix of Bundel, Mughal and Malwa architecture, making it feel like a living history book. अगर आपको स्त्री मूवी याद हो तो दैट वॉज उसमें भी चंदेरी की ही स्टोरी बताई गई है. एंड चंदेरी वंस ले ऑन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड राउट कनेक्टिंग नॉर्थ इंडिया विद द डेक्कन रीजन. ये जो शहर है इट हैज़ मोर देन 350 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग गेटवेज, पैलेसेस, मॉस्क्स एंड स्टेप वेल्स. यू नो डिस्पाइट इट्स रॉयल हेरिटेज, चंदेरी रिमेन्स पीसफुल एंड लेस क्राउडेड कंपेयर टू अदर हेरिटेज टाउन्स इन इंडिया. एंड ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्त्री मूवी वॉज एक्सटेंसिवली शॉट इन चंदेरी एंड द स्टोरी ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड चंदेरी की ये जो शहर है.

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization NDAW.
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM.

You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, आज हमारे travel segment में बातें कर रही हूँ मध्य प्रदेश की. तो आपको ग्वालियर के अगर बारे में बताऊं तो ग्वालियर फोर्ट को अक्सर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव हिल टॉप स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस. ये जो फोर्ट है इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन जीरो इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड इनसाइड अ टेंपल डेटिंग बैक ओवर 1500 ईयर्स. सो यस, ये फोर्ट भी देखने लायक है. ऑफकोर्स अंदर बहुत सी चीज़ें हैं विच यू फील कि वाओ, यू नो, अभी तक इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं एंड इतने सालों पुरानी हैं, येट दे आर स्टिल होल्डिंग स्ट्रांग. सो यस, ग्वालियर फोर्ट इज अनदर प्लेस दैट यू कैन गो एंड विजिट.

Well, that was taken from the movie पद्मावत. एंड अब आ गया है एक गिव अवे आपके लिए फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. जी हाँ, हैज अ चांस टू विन अ दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. एंड ये जो गिव अवे है इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. तो आपको वहाँ जाके ये खाना खाना पड़ेगा एंड आपको दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन जो है वो एज अ गिव अवे फ्री मिलेगा. एंड फॉर ऑल लिसनर्स, यू नो, मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे फॉर एनी अदर शो एट फनेशिया इन द लास्ट वन मंथ, क्योंकि हमें और भी विनर्स को तो चांस देना है, राइट? सो अब आप क्वेश्चन सुने. क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. अब ऑफकोर्स हम यू नो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है विच इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. एंड दूसरा सवाल आपके लिए ये है दैट विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश का कौन सा वो रिवर है विच इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, एंड कौन सा वो शहर है विच इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. तो इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए एंड जीत लीजिए फ्लेवर लाउंज का ये गिव अवे.

0: वेल आई वॉज टेकन फ्रॉम लक बाय चांस, एंड कोई चांस की बात नहीं है। अगर आपको इस गिव अवे के सवाल के जवाब पता था तो आप गिव अवे जीत जाएं। तो ये फ्लेवर लाउंज का गिव अवे क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे बेसिकली, कि एक तो बताएं कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, एंड दूसरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश का कौन सा रिवर है विच इज कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाई, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Yeah, first of all, thank you so much for covering Madhya Pradesh on your show.
0: Of course, मेरी ससुराल है तो ये तो बनता है, right?
1: आपका ससुराल है और मेरा दाद का मतलब पूरी लाइफ ही वही की है, इंदौर की।
0: Oh, okay.
1: जी हाँ जी हाँ।
0: Okay, so अरेरा कॉलोनी?
1: नहीं नहीं मैं इंदौर से हूँ, विजयनगर।
0: अच्छा जी हाँ जी हाँ। Okay, okay. So इंदौर में मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग की है।
1: GSITS?
0: जी जी जी। स्मॉल वर्ल्ड। तो बताइए, पहले तो गिव अवे का जवाब बताइए।
1: जी हाँ, तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा जी, बहुत ही मान्यता है उनकी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और सिटी ऑफ लेक्स, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल।
0: Awesome.
1: और मैं खुद इंदौर से, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 6 years 7 years।
0: दैट इज सो ट्रू। पता है इतनी वहाँ पे वो जो चाट वाट खाते हैं तो आपको लगेगा कि दोने और ये सब रास्ते में पड़े दिखेंगे, बट कहीं नहीं, इट्स ऑलवेज वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। आई लव इंदौर एंड मैं बचपन से जाती रही हूँ, तो आई नो इंदौर क्वाइट अ लॉट।
1: जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपने कवर किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू यू।
0: ऑफ कोर्स। एंड व्हाट्स योर नेम?
1: क्षितिज।
0: ऑलराइट क्षितिज, तो बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपने फ्लेवर लाउंज का ये गिव अवे जीत लिया है। इज देयर अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू?
1: सॉन्ग फ्रॉम मूवी जब वी मेट, ना है ये पाना।
0: Awesome, awesome. So I'm going to play that song and I'll take you off air, take some details from you. Thank you so much for tuning in.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Thank you. Bye.

रत्न्स ऑफ एम्परर अकबर्स कोर्ट वॉज फ्रॉम ग्वालियर. आपको पता है द सिटी अभी भी होस्ट द फेमस तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल एवरी ईयर. साथ ही साथ ग्वालियर जो है इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द फेमस ग्वालियर घराना. सो म्यूजिक का काफ़ी यहाँ पर आना जाना है.

Well, that was Araj from Bandish Bandits Season 2. Yes. अच्छा आप वीकेंड है तो भूल ना जाएं कि अपनी ग्रोसरीज कर लें और वीकेंड पे ना हो पाए तो वीक डेज में भी जाएं. यू नो यू कैन गो टू देसी मंडी द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. उनके पास बहुत से अमेजिंग ऑफर्स हैं. अगर आप क्रेव कर रहे हैं फॉर यू नो मोर फॉर लेस देन इस वीक आप कवर्ड हैं. जी हाँ, क्योंकि अगर आप मंडे और वेंसडे जाएंगे तो यू कैन गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस. ट्यूजडे एंड थर्सडे जाएंगे तो यू गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स. हर वीक डे एवरी वीक डे 5 PM टू 9 PM है ये ऑफर आपके लिए. नो मिक्स एंड मैच इज पॉसिबल. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग देसी मंडी. इट्स लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. तो बेसिकली ग्रोसरी की ग्रोसरी और साथ में कुछ पेट पूजा भी हो जाएगी. एंड दैट्स देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. वेल इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो. एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
4: क्योंकि ये कौन बोला
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
5: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
6: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
6: कैसे
7: पेज 3 ईटरी
6: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
7: Dude, इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
6: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स And great company, yani ki main.
8: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
10: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
10: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
12: Goodness is a beautiful thing and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity, hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

दिस इज KZMB 104.9 FM फनी शरीरों पे आप है मेरे यानी नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारे ये म्यूजिकल साथ हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ 2 बजे तक, जहाँ पर बॉलीवुड बेस्ड कुछ गाने होते हैं, थीम बेस्ड गाने. कभी किसी कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी हम किसी एक ही शब्द पर आधारित गाने होते हैं, फिल्मी कहानी का सेगमेंट और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं हर शनिवार की दोपहर. और 2 से 3 के बीच में आपकी और हमारी बातें होती है कम्युनिटी के हवाले से. जी हाँ, कम्युनिटी आउटरीच की होती है ये प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप टिल 3 PM विथ मी योर होस्ट नीलम. मधुलिका को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर अ वंडरफुल शो. और अब कुछ होगी हमारी बातें. सो वेल, आज हमारी जो बातें होने वाली है, एक कलाकार को हम करने वाले हैं सेलिब्रेट. आप जानते हैं हम अक्सर किसी भी कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन के मुताबिक. तो आज जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, उनका जन्मदिन था कल. जी हाँ, आज नहीं लेकिन कल था, यानी कि 15th of May. आपको जानते ही होंगे और आप उनके बहुत बड़े फैन होंगे, बहुत बड़े दीवाने होंगे. सो चलिए, आप सुनते रहिए उनके ये गाने और मुझे ये भी बताइए कि किन की कर रही हूँ मैं बातें.

जी बिल्कुल, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई और सितम कर लेना। प्रेम प्रतिज्ञा से सुना आपने गीत और आपने सही पहचाना, क्योंकि आज हम मना रहे जन्मदिन बॉलीवुड की उस धड़कन का, धक धक गर्ल, जिसकी मुस्कान पर करोड़ों दिल फिदा है, और आप भी होंगे, जिनकी डांस में बहुत सारे लोगों को थिरकना सिखाया। कहा जाता है कि उनकी डांसिंग स्किल को देखकर, इसे बड़े पर्दे पर उनको देख देख कर कितनी लड़कियां माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। एंड इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, देर वॉज अ मूवी ऑल्सो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। जी हाँ, जिनकी अदाओं पर आप भी फिदा है, पूरा बॉलीवुड फिदा है, उनकी करेंगे कुछ बातें, उनके होंगे कुछ गाने ऑन 104.9 FM।

जरा फिर से कहना। जी हाँ, राजा फिल्म से सुना आपने ये गीत, माधुरी दीक्षित पे फिल्माया हुआ था और उनके साथ आप जानती है कि थे संजय कुमार, और संजय कुमार, संजय कपूर कुमार क्यों बोल रही हूँ बेचारे को। जी हाँ, और बातें चल रही है धक धक, यानी कि माधुरी दीक्षित की हम कर रहे हैं यहाँ पे बातें, और यही बातें हम करते रहेंगे टिल 2 PM। आपकी कुछ पसंद के गाने, कुछ हमारी पसंद के गाने, और इसी धक धक 90s से लेकर उनके जितने भी गाने, वो सारे गाने हम आपके लिए फिर से आपके जहन में, आपके दिलों में वो गाने, वो यादें ताज़ा कर देंगे। 90s का वो दौर आपको याद है, अगर आप बड़े होते होगे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप होगे, तो एक उनका दौर था, राइट, कि माधुरी दीक्षित का गाना आते ही जैसे कि पूरा परिवार स्क्रीन के सामने बैठ जाता था। इट वॉज जस्ट नॉट अबाउट हर एक्टिंग, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अच्छी अदाकारा, आई थिंक इट वॉज अबाउट हर डांसिंग एज वेल। उनकी जो एक्सप्रेशन है, जब भी वो कोई भी गीत करती है, स्लो, फास्ट, कथक, ये वाला, क्लासिकल, नॉट सो क्लासिकल, हर गाने में कहीं ना कहीं उनकी अदाकारी जो है, अलॉन्ग विथ बीइंग अ ग्रेट डांसर, देखिए डांसर यानी कि डांस स्टेप्स करना, अच्छी तरह से करना, वेरी मेथोडिकली करना, ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ वो गाने को जीना, उस डांसिंग के इमोशंस को जीना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें करती थी माधुरी दीक्षित। उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बातें, कुछ गाने, कुछ आपकी पसंद के, कुछ हमारी पसंद के, ऑन 104.9 FM फनी एशिया रेडियो, टिल 2 PM।

0: साजन फिल्म से सुना आपने ये जिए तो जिए कैसे 90s के दौर के कुछ गाने एंड ऑफकोर्स उसके बाद के भी गाने हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे, कुछ आपकी पसंद के कुछ हमारी पसंद के। दग दग यानी कि माधुरी दीक्षित की कर रही हूँ मैं बातें नीलम, क्योंकि 16 मई है आज, लेकिन 15 मई दैट वॉज यस्टरडे उनका जन्मदिन जो मना रहे हैं हम आज यहाँ पे, क्योंकि आपकी और हमारी मुलाकातें होती है, म्यूजिकल मुलाकातें ओनली ऑन वीकेंड्स और सैटरडेज, खास करके सैटरडेज आपका और हमारा जो साथ होता है बॉलीवुड सेगमेंट में, हम आपके लिए लाते हैं कुछ थीम बेस्ड गाने। बातें चलती रहेगी, गाने होते रहेंगे आपके ढेर सारे कॉल्स के साथ, आपके कुछ पसंद के साथ कुछ हमारी पसंद के साथ। लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं ड्रीम होम मॉर्गेज का। सिंस 1998, जी हाँ, डालस फोर्ट वर्थ में आप ही की सेवा में 1998 से है ड्रीम होम मॉर्गेज, अ ट्रस्टेड नेम लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। जरूर उनको कॉल कीजिएगा आपके घर के ख्वाब को पूरा करने के बाद, आपकी जो भी मॉर्गेज की स्ट्रेस है सिचुएशन जो भी है वो बिल्कुल आपको मदद कर सकते हैं। एंड द नंबर इज 9722455626। और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com, वंस अगेन दैट इज dreamhomemortgage.com। कहीं मत जाएगा, अभी भी कुछ उनकी बातें बाकी है, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ आपकी जानकारी लेना चाहूंगी माधुरी दीक्षित के लिए, कुछ उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, कुछ उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, कुछ उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई बातें, आफ्टर मैरिज उनकी कमबैक की बातें, और ये सारी बातें आप ही के साथ रहेगी टिल 2 PM। सो कहीं मत जाएगा बी विथ अस।
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
9: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
8: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
9: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
8: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
10: May 14th to May 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट ओशो यूनिवर्सल.org। पॉज द नॉइज, meet yourself.
11: Hi, I'm Abhishek Bachchan, and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

0: यही अदा तो एक सितम है जी हाँ, माधुरी दीक्षित की अदाकारी और उनकी अदाए हम गारे कहे बातें यहाँ पर, क्योंकि उनके बर्थडे को जो था कल 15th of May सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं नीलम आज। वेरी वेरी वार्म वेलकम एक बार फिर से, प्यार भरा स्वागत है आप सभी का ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो। आपका और हमारा साथ होता है एवरी सैटरडे 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। माधुरी दीक्षित जिनका जन्म 15th May 1967 मुंबई के मराठी परिवार में, आप जानते ही है पिताजी का नाम शंकर दीक्षित और माताजी का नाम स्नेहलता दीक्षित। तो चलिए माधुरी जी के लिए आप बहुत कुछ जानते हो कि आप उनके दीवाने हो गए उनकी हंसी के, उनकी अदाकारी, उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनकी इमोशंस वगैरह वगैरह। सवाल पूछना चाहूंगी, पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित इज अ ग्रेट डांसर, राइट? एज वी ऑल नो, कोई भी फिल्म हो जहाँ पे उनका डांस हो, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल वे ऑफ जो पोर्ट्रेइंग हर स्किल सेट, जो बहुत ही खूबसूरती से इतनी आसानी से वो डांस करती है कभी भी कोई भी गीत पे। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि शी इज़ अ ट्रेंड डांसर, राइट? हम सभी जानते हैं। देखिए अभी डांसर्स में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसिंग, तो किस फॉर्म में वो कौन सी ऐसी नृत्य कला है जिसमें वो ट्रेंड डांसर है, वो बताएंगे मुझे आप। 972-235-5555 सवाल फिर से दोहरा रही हूँ कि डांसिंग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कला है, डांसिंग की कौन सी स्किल है जिसमें वो है ट्रेन डांसर। एंड फनीश योर लाइव ऑन एयर।
1: कथक।
0: रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिए प्लीज।
1: कथक।
0: कथक में है वो ट्रेन डांसर। ऑलराइट, आई विल टेक दैट आंसर। एंड फनीश योर लाइव ऑन एयर।
1: हाय
0: हाय,
1: आप अभी माधुरी दीक्षित के क्लासिकल डांस के बारे में पूछ रहे
0: थे ना? जी जी पूछ रही हूँ, बताइए।
1: कथक।
0: और आप जानती हो डांसिंग, आपको अच्छा लगता है डांस करना?
1: सॉरी,
0: आपको डांस करना अच्छा लगता है? आर यू अ डांसर और यू डू यू लव डांसिंग?
1: या आई एम नॉट अ डांसर बट आई लव डांसिंग एक्चुअली। आई
0: लव डांसिंग। सो आप कौन से फॉर्म में डांस करती है? डू यू गो टू बार डिस्को डांसेस, या फिर आप हमारे डांडिया भी होते हैं वो करती है, या फिर आप ऐसे ही किसी पार्टी में आपने भांगड़ा कर दिया, क्या करती है ज्यादातर आप?
1: I follow somebody who is dancing and then follow
0: that. That's a very good idea, right? हमें कुछ टेस्ट करने नहीं है, मैं किसी को अगर देखूंगी तो मैं वहाँ पे खड़ी है, but at least you can follow. See, that's also a great talent. किसी को फॉलो करना भी आसान नहीं है, राइट? अगर मुझे कहे कि फॉलो कर ले तो मैं नहीं कर
1: लेती
0: हूँ। Wonderful, wonderful. Thank you, ma'am and Phanish. Yeah, you're live on air and I lost that line. डांसिंग इज अ वेरी वेरी ग्रेट टैलेंट, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझ में वो टैलेंट नहीं है। एंड फॉर नहीं जायो लाइव ऑन एयर।
2: या माधुरी दीक्षित इज ट्रेंड इन कथक।
0: यस सर इट इज। एंड यू लाइक डांसिंग? ऑफ कोर्स आप तो कथक नहीं करते होगे, लेकिन कौन कौन सी कला है जो आपको अच्छी लगती है डांसिंग में?
2: Yeah, I mean, she's amazing. Whatever she does is great, but I know she's trained in Kathak.
0: She's trained in Kathak. Wonderful. Thank you so much, sir. And yes, it is a Kathak dancing. सिर्फ 3 साल की थी, when she was only 3 years old, she started learning कथक। और कथक में वो इतनी बेहतरीन है कि उन्होंने जब देवदास के लिए जब ये कोरियोग्राफी हो रही थी पंडित बिरजू महाराज से, तब उन्हें एक ही टेक में, एक जस्ट वन सिंगल टेक, एंड शी डिड दिस वंडरफुली ऑन द स्क्रीन फॉर द फिल्म देवदास।

शुमार डाला फ्रॉम द फिल्म देवदास, माधुरी दीक्षित की कर रही हूँ मैं नीलम बातें आप सभी के साथ। 80s के दौर में, लेट 80s के दौर में श्रीदेवी वॉज ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट फीमेल सुपरस्टार। उसी दौर में माधुरी दीक्षित ऊपर आना चाहती थी। ना सोचिए ज़रा कि दोनों ग्रेट डांसर्स, राइट, दोनों माधुरी दीक्षित भी इतनी खूबसूरत डांसर है, बेहतरीन डांसर, श्रीदेवी भी बहुत ही अच्छी डांसर थी। सरोज खान तब जो कोरियोग्राफर हुआ करती थी श्रीदेवी की भी, श्रीदेवी के डांसर्स की भी, एंड ऑल्सो फॉर माधुरी दीक्षित। लेकिन माधुरी दीक्षित ने जल्द ही अपनी जगह बना दी थी सरोज खान के दिल में। वो उनकी फेवरेट, पसंदीदा स्टूडेंट बनने लगी थी। सरोज खान सरे

सरोज खान तब जो कोरियोग्राफर हुआ करती थी श्रीदेवी की भी, श्रीदेवी के डांसर्स की भी, एंड ऑल्सो फॉर माधुरी दीक्षित. लेकिन माधुरी दीक्षित ने जल्द ही अपनी जगह बना दी थी सरोज खान के दिल में. वो उनकी फेवरेट पसंदीदा स्टूडेंट बनने लगी थी. सरोज खान सरेआम जहाँ पर भी इंटरव्यूज होते थे, जहाँ पर भी उनके पब्लिक इवेंट्स होते थे, वहाँ माधुरी के डांस की, उनके एक्सप्रेशन, उनकी लगन की बहुत तारीफें किया करती थी. और यही शायद बात थी, कहीं ना कहीं उनकी जो डांसिंग थी सरोज खान के साथ, उनकी जो जोड़ी बन रही थी डांसिंग की, वो भी शायद वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर हो सकता है, राइट, उनकी सक्सेस में, उनकी सफलता में. नाउ श्रीदेवी उन दिनों में, ऑफकोर्स उनकी भी, सरोज खान वॉज वन ऑफ हर बेस्ट कोरियोग्राफर्स. जब वो सुनती थी, लगातार तारीफें सुनती थी श्रीदेवी की, श्रीदेवी जब सरोज खान के मुँह से, अपने ही एक अच्छे टीचर के मुँह से दूसरे स्टूडेंट की, तो जैसे कि क्लास में कैसे स्टूडेंट राइवलरी हुआ करती थी, राइट, जब हम छोटे थे कि अरे मैं सबसे फेवरेट हूँ या वो सबसे फेवरेट है स्टूडेंट की, तो ये एक बहुत ही एक इट वाज अ वेरी वेल नोन फाइट, वेरी वेल नोन कोल्ड वॉर बिटवीन टू फॉर द डांसिंग. और ये भी कहा जाता है कि सरोज खान ने बहुत ही संभल कर, वेरी टेक्टफुली शी बैलेंस्ड बोथ ऑफ देम, क्योंकि वो दोनों के साथ काम करना चाहती थी. ऐसा नहीं था कि एक के साथ काम किया, दूसरे के साथ काम नहीं करना था. She knew that Shridevi is a great dancer, already established superstar. माधुरी दीक्षित जो ऊपर आना चाहती है और उनमें इतनी लगन है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क वो करना चाहती है. सो दोनों के साथ वो काम करना चाहती थी और किसी को भी ना करना नहीं चाहती थी. खैर वो अक्सर होता है बॉलीवुड में, राइट, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप जब आ जाती है विच योर प्रोफेशनल. और ये कहा जाता है कि एक ऐसा दौर आया कि श्रीदेवी ने काम करना कम कर दिया था सरोज खान के साथ, लेकिन सरोज खान ने माधुरी के साथ काम करना कम नहीं किया था. एंड शी डिड हर डांसेस, ऑलमोस्ट ऑल हर डांसिंग कोरियोग्राफी बाय सरोज खान.

खलनायक से सुना अपने गीत माधुरी दीक्षित पे फिल्माया हुआ, जी हाँ, जहाँ पे उन्होंने 80s में, लेट 80s या मिड 80s से अपने करियर की शुरुआत की थी। कमर्शियल ब्रेक के बाद उनकी पहली फिल्म की भी कुछ करेंगे बातें, लेकिन एक भी ऐसा डायरेक्टर नहीं था, एक भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं था जो माधुरी दीक्षित के साथ काम करना नहीं चाहते थे। हर एक उस ज़माने के 80s की, 90s की, इवन 2000, लेट 2000 तक उन्होंने काम किया था, हर एक अच्छे जाने माने डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या कोई भी कलाकार हो, सभी ने उनके साथ काम करने की चाह की थी और किया भी था, एंड दैट इज़ माधुरी दीक्षित।

0: बेटा फिल्म से सुना आपने गीत सजना माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, सोच रहे कि क्यों भाई माधुरी के गाने सुन रहे हम बैक टू बैक, क्योंकि कल 15 मई था उनका जन्मदिन। धक धक गर्ल, जिनकी एक अदा पर, जिनकी उनकी मुस्कान पर आपके कॉलेज डेज में, आपके स्कूल डेज में या अभी भी आप फिदा होगे, बिल्कुल फिदा होगे। तो ऐसे बहुत सारे गाने हम सुनते रहेंगे, कुछ और भी सवाल होंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, सो कहीं मत जाएगा। एंड समटाइम्स यू नो इट डज हैपन कि हम ना चाहते हुए भी किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। दैट इज ओमर ख्वाजा सर, जिनका नंबर है 4693005046। एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन। जी हाँ, आपने सही सुना, आप बिल्कुल पे नहीं करते अंटिल यू विन। तो उसके लिए एक बार फिर से नंबर याद कर लीजिएगा 4693005046। और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट इज attorneyomar.com फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। आज ही कॉल कीजिएगा अटर्नी ओमार को इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू एक्सीडेंट। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहूंगी 3 बजे तक, लेकिन ये गाने रहेंगे आपके लिए 2 बजे तक ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओह हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
11: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
10: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
11: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
10: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
11: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
10: नंबर बोल जल्दी।
11: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
12: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
13: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
14: अरे यार, डालस में पंजाब?
15: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म।
16: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
17: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintechs.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटेक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
18: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
19: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
17: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
20: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
21: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
20: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
21: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
17: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
22: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
23: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
22: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
24: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to FunAsia Radio.

और एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो। जी हूँ, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। और आज हमारी बातें हो रही है दग दग गर्ल, जिनकी मुस्कान पर आप फिदा है आज भी, जिन्होंने डांसिंग के नए स्टैंडर्ड, जी हाँ नए स्टैंडर्ड कर दिए साबित। दैट इज माधुरी दीक्षित, जिनका जन्मदिन मना रही हूँ मैं नीलम आपके साथ आज। चलिए एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित फिल्मों में आने से पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ करती थी, नॉट हुआ करती थी, शी वॉज स्टडिंग इन पार्ला ईस्ट, एंड आई बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई आई नो, एंड इनफैक्ट माई इन लॉ स्टे इन पार्ला वेस्ट, सो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू वेयर आई हैव माई इन लॉज हाउस इन पार्ला। सो खैर, बातें हैं कि देखिए, जिंदगी में हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं कि मुझे ये करना है, बड़े होकर वो करना है, लेकिन किस्मत में भगवान ने, अल्लाह ने जो आपके लिए सोचा होता है वही होता है। तो उन्होंने, जब भगवान ने सोचा होगा कि हाँ भाई तू पढ़ ले, जहाँ पर भी जाना है तुझे, तू पार्ले ईस्ट में कॉलेज में जा या इधर जा उधर जा, लेकिन आना तो तुझे है फिल्म में। तो वो जब 12th ग्रेड में थी, सिर्फ व्हेन शी वाज ओनली 12th ग्रेड की वेकेशन की छुट्टियाँ मना रही थी, तब उन्हें एक फ़िल्म की ऑफ़र मिली, जो उनकी बड़ी बहन है, उनके दोस्त के पिता जो थे वो बना रहे थे कोई फ़िल्म, और उन्होंने सोचा कि एक नई लड़की को, जो बहुत ही मासूम सी क्यूट सी लगती हो, ऐसी नई लड़की को लिया जाए, और उनकी नज़र पड़ गई थी माधुरी दीक्षित पे। तो मुझे आप बताएंगे कि वो कौन सी पहली फ़िल्म थी, 1984 या 85 की कर रही हूँ मैं बातें, जब उनकी पहली फ़िल्म आई थी, बताएंगे मुझे आप 9722355555। और बातें हो रही है कि माधुरी दीक्षित की कौन सी वो पहली फ़िल्म थी जो उन्होंने साइन कर ली थी। चली नहीं चली वो अगर दूसरी बात है, लेकिन फिर भी उनकी पहली फिल्म आई थी इन मिड 80s। बताएंगे मुझे आप 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड, एंड आप मुझे बताएंगे उनकी पहली फिल्म का नाम।

0: तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि अरमा हुए पूरे दिल के. फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो
1: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: जी
1: ये
0: बताइए.
1: जी जी इनकी पहली फिल्म आरोग है क्या? बहुत कुछ ऐसा है.
0: आरोप या अभोर ऐसा कुछ है. ओके, आपको याद है क्योंकि आपने देखी हुई है या आपने कहीं पे पढ़ा हुआ था?
1: नहीं नहीं देखी, नहीं देखी.
0: अच्छा, आपने नहीं देखी ना. हाँ, मैंने भी, आई डोंट थिंक कि
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: उनकी कभी भी पहली फिल्म देखी हो. थैंक यू सो मच सईदा जी. तो सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि क्या आप जानते हैं कि 84 या 85 में जब वो कॉलेज जा रही थी, उनकी छुट्टियाँ थी 12th ग्रेड में, जैसे कि हम अक्सर अपनी छुट्टियों में कैसे ऐश कर देते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में एंड इन मुंबई, जो समर वेकेशन हुआ करते थे, तो वो भी बेचारी ऐश करती थी. और तभी उनके दिमाग में ये बात भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी कि मुझे मूवीज़ में जाना है. लेकिन जब उनके ये बात पता चली कि उन्हें ये एक ऑफर मिली है, शी वॉज वेरी हैप्पी इन अ वे. एंड फनीश, आई लॉस्ट दैट लाइन. तो मैं कहानी बता रही हूँ कि कैसे उनको ये पहली फिल्म मिली थी. और उनको लगा कि चलिए पढ़ाई तो चलती रहेगी, ये भी ट्राई कर लेते हैं तब तक. एंड फनीश, आई योर लाइव ऑन एयर. हेलो.
2: हेलो,
0: यस
2: कैन यू
0: मैम.
2: हियर मी?
0: जी, आप, यू कैन हियर, आई कैन हियर यू. योर लाइव ऑन एयर, बताइए.
2: यस, द मूवीज नेम यू वांटेड, राइट? इट्स अबोध.
0: अबोध, यस, अबोध. तो आपने देखी थी अबोध ये?
2: नो, मैंने नहीं देखी है.
0: मैंने भी नहीं देखी, यू नो. एंड कहा जाता है कि देर वॉज वन जया भादुरी की एक फिल्म थी उपहार कर, इट वॉज वेरी सिमिलर कि एक छोटी सी लड़की की शादी हो जाती है, तो कैसे वो शादी के बाद, बिकॉज शी इज जस्ट लाइक यू नो, उनकी जब उम्र थी जब ये मूवी उन्होंने साइन की, शी वॉज ऑल्सो 18, राइट? 17 और 18. तो इसी कहानी थी पूरी उनकी जिंदगी पर. बट थैंक यू सो मच मैम. तो जी हाँ, ये है अबोध, जो राजश्री प्रोडक्शन की थी. देखिए कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, राइट? और उनके सामने एक बांग्ला कलाकार थे जिनका नाम था तपस पॉल. तो छुट्टियों में ये ऑफ़र मिला था. उनका कोई इरादा नहीं था कि फिल्मों में काम करना है, बॉलीवुड में जाना है. एंड शी वॉज एन्जॉइंग हर हॉलीडेज. तब राजश्री प्रोडक्शंस का नाम बहुत बड़ा है. जब उन्हें ये ऑफ़र तब मिली, तब ऑडिशन के लिए कहा गया था. ऑफ़र यानी कि ये नहीं था कि बस आप ही बनेगी मेरी हीरोइन. कहा गया था कि भाई हम बहुत सारी लड़कियाँ की ऑडिशन ले रहे हैं, तो आप भी आ जाएगा ऑफिस में. एंड देखिए तकदीर उनकी, किस्मत उनकी, कि उनको ये ऑडिशन वो पास कर दी और उनको ये मिल गई थी पहली फिल्म अबोध, जिसमें ऐसी कहानी थी. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जया भादुरी की एक फिल्म थी, उसमें भी कुछ ऐसी कहानी थी कि बहुत ही छोटी सी लड़की की जब शादी हो जाती है, हाउ शी इज़ इंटरेक्टिंग विथ हर हस्बैंड एंड हाउ शी कोप्स अप विथ अ न्यू लाइफ, उनके रिलेशनशिप और उनके इंटरेक्शंस उनके इन लॉज के साथ वगैरह वगैरह. अबोध, जिसका मतलब ही है इनोसेंट, वेरी वेरी इनोसेंट. तो यही कहानी थी, लेकिन वो कहानी चली नहीं थी.

पहली फिल्म तो हो गई थी फ्लॉप, जिसका नाम था अबोध. वेल जाना भी नहीं था फिल्मों में, ऐसा लगा कि अरे भाई मुझे कहाँ जाना था. आप ही ने ऑफर की थी, आप ही ने कहा कि चलिए आपको फिल्म में अभिनेत्री बनाएंगे और ये अगर फ्लॉप हो गई कोई बात नहीं, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूँगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाऊँगी. ये सोचा था माधुरी दीक्षित ने. 3-4 साल उन्होंने कुछ फिल्मों में नहीं किया. लेकिन देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि फिल्म्स की बात है, जहाँ ग्रामर की बात है, मीडिया की बात है, ये एक ऐसा कीड़ा है, ये एक ऐसी बात है कि अगर आपने एक बार कर ली, आपके जहन से वो बात जाती नहीं. कोई भी हो, राइट, हमने कितने सारे हमारे कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, जिनकी कहानियाँ सुनी है कि उनकी एक फिल्म के बाद उन्होंने 3-4 साल कुछ नहीं किया और फिर सोचा कि नहीं, करना है तो यही करना है. इवन दो दे मे हैव डन दैट ग्रेजुएशन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी एक बार फिल्मों में आने के बाद, आई डोंट नो इफ इट इज़ द पॉपुलैरिटी प्लान, कि इट इज़ द ग्लैमर थिंग, इट इज़ द मनी थिंग, लेकिन कोई भी, जितनी भी आप ग्रेजुएशन की बात कर लो, मैंने अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं, एक्टर एक्ट्रेसेस की मैं बात कर रही हूँ, कि जहाँ सोचा कि चलिए फिल्म नहीं चली तो क्या बात है, हम वी विल गो बैक टू बैंकिंग इंडस्ट्री, विल स्टार्ट दिस बिजनेस दैट बिजनेस. नो, दे डोंट वांट टू, दे वांट टू कंसिस्टेंटली कीप ट्राइंग, राइट, कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी, एक के बाद फ्लॉप, एक के बाद फ्लॉप आती रहेगी, लेकिन बनूंगी तो मैं हीरोइन ही. माधुरी दीक्षित ने भी यही कहा. 3-4 साल उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई भी कर ली, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, करना है तो फिल्मों में ही काम करना है. और उसके बाद उन्होंने 3-4 साल कुछ ऐसी ही बातें हिफाजत कर ली, कुछ स्वाति नाम की भी एक फिल्म आई थी, बहुत सारी, 3-4 उन्होंने लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप पर फ्लॉप वो देती रही, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही. क्योंकि ऐसा नहीं था कि अगर ये फिल्म नहीं करूँगी तो घर पर पैसे नहीं है, शी वॉज जस्ट डूइंग इट अपने माँ बाप के साथ, एक रहती हुई थी तो एक करियर के ऑप्शन पर. और 88-89 के बाद उनकी जैसे कि तकदीर बदल गई थी, जब वो बन गई थी तेजाब की 1-2-3 गर्ल. बस फिर क्या था, 90s तक 94-95 तक शी वॉज द वन ऑफ द हाइएस्ट पेड फीमेल सुपर स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री. इतना ही नहीं, राजश्री प्रोडक्शंस की जब हम आपके हैं कौन आई थी, सलमान खान वॉज प्रिटी न्यू 94 में, अब वो नॉट प्रिटी न्यू बट स्टिल सलमान खान से ज़्यादा पैसे लिए थे माधुरी दीक्षित ने फॉर दिस फिल्म.

0: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार, लेकिन ये पहली पहली फिल्म नहीं थी माधुरी दीक्षित की. दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक जो कपते ना कि सूरज जब तपता है, बहुत तपता है, ये थी उनकी बातें.
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025228. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
6: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो, या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
4: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
6: Amreen Salon. Style that moves with you.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है, पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
8: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
7: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
8: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
9: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.

एंड वेलकम बैक, दिस इज़ KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो. मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड. इस खूबसूरत दोपहर में आपका और हमारा साथ होगा 3 बजे तक, लेकिन 2 बजे तक होते ही ये बॉलीवुड में कुछ गाने, बॉलीवुड के थीम बेस्ड गाने. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माधुरी दीक्षित को. जी हाँ, 15th of May 1967 उनका जन्मदिन. दी दग दग गर्ल. और उससे पहले चलिए कुछ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी AG फिनटेक्स का, 4699429888. और यू कैन विजिट agfintechs.com, एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्स फर्म इन द US, जहां पर सिर्फ आपके लिए ही नहीं लेकिन बिजनेस के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस दोनों के लिए है उनकी टेक्स फर्म, एंड दैट इज agfintechs.com. क्लिनिक में जाना हमें अच्छा नहीं लगता है ना, चाहे प्राइमरी रीज़न के लिए हो या एनुअल विजिट के लिए, कोई भी रीज़न हो. लेकिन कहाँ पर जब भी आप जाए और कुछ अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो डॉक्टर्स के साथ, तो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगती है. एंड दैट इज टेक्सास प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स ग्रैंड रिबन कटिंग, जहाँ पर आप जा सकते हैं आज May 16 को बिटवीन 2 to 4 PM इन फ्रिस्को. और ये सारी बातें हो रही है, वंस अगेन मैं आपको एड्रेस दे दूँ, दैट इज लिनोक्सी मेडिकल एट 9191 काइजर वे स्वीट नंबर 205 फ्रिस्को. दैट इज काइजर वे स्वीट नंबर 205 इन फ्रिस्को. डांसिंग की परिभाषा जिन्होंने बदल दी, स्टैंडर्ड्स बदल दिए, दैट इज माधुरी दीक्षित, जिनके एक्सप्रेशंस को देख देख कर कहा जाता है कि एक्टिंग स्कूल में ये एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दी जाती है कि देखिए जब भी आप डांस कीजिए ऐसे एक्सप्रेशन हो, ऐसे उनके इमोशंस हो, ताकि लगे कि आप हर एक गीत को, हर एक इमोशंस को जी रही हो. कुछ ऐसी बहुत सारी उनकी बातें होगी, जारी रहेगी. और उसके साथ एक और सवाल होगा आप ही के लिए, लेकिन कुछ गानों के बाद ऑन 104.9 FM.

सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में, माधुरी दीक्षित पे फिल्माया हुआ था, फिल्म का नाम कोयला। देखिए माधुरी दीक्षित, जैसे कि मैंने कहा 84 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी एंड बाय लेट 90s तक वो बन गई थी फीमेल सुपरस्टार। बाद में शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, वैसे ही मैरिज, शादी, हर कोई अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है कहीं ना कहीं, कितनी भी ग्लैमरस दुनिया क्यों ना हो, कितनी भी पॉपुलरिटी क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है, एक्ट्रेस के लिए या एक्टर के लिए, राइट? एक्टर की बात चलिए हम बाद में करेंगे, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट एक्टर्स, लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए। और लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि देखिए अगर एक्ट्रेस ने शादी कर ली तो वैसे कि रिटायरमेंट ले लेते, अभी ऐसा नहीं है। अब हमारी बॉलीवुड की हीरोइन शादी के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी करती है, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज शी डिसाइडेड, ये उनकी चॉइस थी, उनकी पसंद थी कि मुझे नहीं रहना है, US जाना है, US जाकर मुझे बॉलीवुड की दुनिया से बहुत बहुत दूर जाना है, एंड शी डिड दैट राइट फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अगेन, किसी की अगर अच्छी टैलेंट हो, किसी की अगर अच्छी, मैं कहूँगी नॉट ओनली टैलेंट राइट, हर डांसिंग स्किल्स, टैलेंट, उनकी जो चाहत थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं एक फिल्म में एक बार फिर से माधुरी दीक्षित मिल जाए। यश चोपड़ा की फिल्म जब बन रही थी, आदित्य चोपड़ा जब बना रहे थे ये फिल्म आजा नचले, तब उन्होंने ये तय किया था कि अगर ये फिल्म में कोई काम करेगा एज अ लीड एक्टर, दैट वुड बी माधुरी दीक्षित। तो उन्होंने उनको मनाने के लिए, कहा जाता ही मेड अ US ट्रिप स्पेशली जस्ट टू मीट हर एंड कन्विंस हर कि भाई ये फिल्म तो आप ही करेगी और कोई नहीं करेगा, एंड शी डिड दैट फिल्म आजा नचले। और उसके बाद मैं मानती हूँ, अगेन एंड व्हाट मैं मानती हूँ मैं आपको बातें बताऊंगी, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं गीत आजा नचले। व्हेन शी डिसाइडेड कि बॉलीवुड में काम नहीं करना है, बट शी केम बैक विद दिस फिल्म।

0: बाद खाओ इतनी मिर्ची, खा खा के मर जाओगे एक दिन।
1: ये दिया तो बिजली कटने वाली है।
0: टीवी पर लता।

0: अरे क्या कर रही है चुड़ैल।
1: आचार अंजलि से सुना आपने गीत, तो एंड एज आई सेड यू नो आफ्टर हर मैरिज फॉर फ्यू इयर्स शी वांटेड टू स्टे अवे, सबसे दूर, बॉलीवुड से दूर, बस अपने बच्चों में, अपने परिवार में रहना चाहती थी। लेकिन आचार अंजलि के बाद शी केम बैक इन टू बॉलीवुड। मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट अ बोथ, कि इंडस्ट्री में एक बार आने के बाद, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस तो मैं कभी गई नहीं हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई एम टेलिंग यू दिस कि मैं भी एक कलाकार हूँ, नॉट एन एक्टर एक्ट्रेस, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेती हूँ एंड हैव बीन एसोसिएटेड विथ मीडिया फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज ऑन द स्टेज एंकरिंग एंड वगैरह वगैरह। तो ये मैं मानती हूँ कि अगर आपका दिल, आपका मन, आपका सोल किसी कला से जुड़ा हुआ है, इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि आई विल स्टे अवे फ्रॉम दैट, बस बहुत हो गया। फॉर अ ट्रू आर्टिस्ट, फॉर अ ट्रू आर्ट, इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर आर्ट, यू वुड नेवर वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम योर आर्ट। कि मैं होपफुली, नॉक ऑन द वुड, आई वुड नेवर वॉन्ट टू से कि मैं रेडियो से दूर रहना चाहूँगी या मैं स्टेज पे से दूर रहना चाहूँगी, मैं एंकरिंग नहीं करूँगी, मैं गाना छोड़ दूँगी, ये नहीं होता, ये मुमकिन ही नहीं होता, बिकॉज योर हार्ट एंड सोल आर सो कनेक्टेड टू दैट आर्ट। सो माधुरी दीक्षित के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा कि वेन शी डिड दोज कपल ऑफ फिल्म अपनी शादी के बाद, देन शी प्रॉबेबली रियलाइज दैट, उनके इंटरव्यूज में भी उन्होंने एक दो बार ये बात कही थी कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम बॉलीवुड, मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और उनके पति का बहुत ही सपोर्ट था टू डू दैट। एंड यू नो दैट इज़ सच एन आयरनी कि उनके पति को पता भी नहीं था उनकी शादी के वक्त कि माधुरी दीक्षित क्या है, लाइक हाउ सच अ बिग नेम शी इज़ इन द इंडस्ट्री। लेकिन जब उन्होंने शादी की, शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का नाम कितना बड़ा है। खैर, वो वापस इंडिया आ गई कुछ सालों के बाद, एंड शी डिड नॉट डू जस्ट ईच एंड एवरी मूवी दैट केम अक्रॉस हर वे। उन्होंने ये तय किया था कि बहुत ही सिलेक्टेड मूवीज़ करूँगी, कम करूँगी, सिलेक्टेड मूवीज़ करूँगी, और उसी पे

शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का नाम कितना बड़ा है। खैर, वो वापस इंडिया आ गई कुछ सालों के बाद, एंड शी डिड नॉट डू जस्ट ईच एंड एवरी मूवी दैट केम अक्रॉस हर वे। उन्होंने ये तय किया था कि बहुत ही सिलेक्टेड मूवीज़ करूँगी, कम करूँगी, सिलेक्टेड मूवीज़ करूँगी। और उसी पे आता है मेरा एक सवाल। आजकल की दुनिया में मूवीज़ से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पे ये वेब सीरीज़ वगैरह वगैरह होती है। आप मुझे बताइए कि आपने टीवी के पर्दे पर माधुरी दीक्षित को कहाँ देखा? नॉट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डांस कंपटीशन में एज अ जज ये वो, मैं एज एन एक्ट्रेस बता रही हूँ, पूछ रही हूँ आपको कि कौन सी ऐसी वेब सीरीज़ थी, एक दो आपको जो भी याद आए, कि जहाँ पर आपने माधुरी दीक्षित को देखा ऑन OTT प्लेटफॉर्म। 9722355555 बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। एक बार फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी वेब सीरीज़ है जहाँ पर आपने माधुरी दीक्षित को देखा ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स।

0: वेब सीरीज की करी हूँ मैं बात है. एंड फनीशिया, योर लाइव ऑन एयर.
1: Yes, I'd like to give an answer.
0: Yes, please.
1: First of all, Madhuri Dixit is my favorite one of the actress that I would like to.
0: क्या बात है. तो क्या कौन सी ऐसी बात है कि आपकी favorite actress है, कौन सी उनकी बात.
1: Because I actually sing all each dances on her song, mm-hmm. and मुझे बड़ा उनके like every in each song पे मैं बिल्कुल डांस करती हूँ.
0: अरे वाह. Yeah, very good.
1: I mean, yes. Even though like Tamma Tamma Loge, oh my, that's my one of the biggest favorite song that I would like to sing a dance with her if I would like to get a chance. You know,
0: very good.
1: But yeah, but I think main iska jawab dena chahti hu. It's a Mrs. I think Deshpande.
0: Mrs.
1: The series I have watched.
0: जी.
1: In up to 2022, yeah.
0: Yeah. और उनकी एक और सीरीज थी जिसका मैं नाम ढूंढ रही हूँ, लेकिन जी बिल्कुल मिसेस देशपांडे उनकी रिसेंट है. उससे पहले भी उनकी एक आई थी संजय कपूर के साथ, तो अगर आपको वो याद नाम है तो थोड़ा सा मैं आपको वक्त देती हूँ. चलिए मैं आपको 5 मिनट का और वक्त देती हूँ, ठीक है.
1: ओके,
0: थैंक यू मैम. एंड फनीश, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो.
0: यस, यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए. मिसेस देशपांडे बिल्कुल है, और भी है उनकी एक सीरीज. एंड फनीश, यू आर ना लाइव ऑन एयर.
2: नमस्कार जी, नीलम जी.
0: नमस्कार
2: विवेक
0: है. जी सर, बताइए क्या है आपका जवाब.
2: वो जवाब ऑलरेडी दे दिया पहले, ये जो आपने कॉल किया था
0: मिसेस देशपांडे. लेकिन
2: वहाँ पे एक गाना आया है.
0: जी,
2: अगर आप सुना दे तो
0: प्लीज.
2: वो सैलाब का,
0: तेजाब का. ओके, आई विल ट्राई सर. मैं 2 बजे ये सेगमेंट में खत्म होगा मेरा, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश
2: करूंगा.
0: थैंक यू सर सो मच. थैंक यू जी. फनीश, या योर लाइव ऑन एयर. यस,
1: it's a fame game.
0: Fame game. Yes, yeah. Yes. Fame game. मैं वही नाम ढूंढ रही थी. थैंक यू. और आपका नाम क्या है. थैंक यू. एंड लास्ट कॉलर ऑन एयर. तो जी बिल्कुल, माधुरी दीक्षित, एज आई सेड, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम USA, उन्होंने हर कोई फिल्म नहीं की, बहुत कम फिल्म्स की. एंड फनीश, आई लाइव ऑन एयर.
1: हाय.
0: Yes, hi.
1: उसका संजय कपूर स्टारर विद माधुरी दीक्षित वाज द फेम गेम.
0: इट इज फेम गेम.

फेम गेम से सुना आपने ये गीत दुपट्टा मेरा, एंड करण जौहर की ये थी प्रोडक्शन फॉर वेब सीरीज, और उन्होंने माधुरी दीक्षित को कांटेक्ट किया था उसका नाम, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी, फिल्म एक्ट्रेस फिल्म स्टार अनामिका उनका नाम था, और उनके जो पति थे वो संजय कपूर थे, और ये उनकी पहली वेब सीरीज, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम एवर शी केम ऑन दिस नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। इट वॉज अबाउट 3 to 4 years अगो एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीजन, हाँ मैं भी भूल गई थी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, यू नो आई वॉज लाइक वो कुछ थी उनकी सीरीज 3-4 साल पहले। सो इट इज़ अ फेम गेम जो संजय कपूर के साथ उन्होंने की थी, एंड देन रिसेंटली, वेरी रिसेंटली उन्होंने एक सीरियल किलर, जो पहली बार मैं मानती हूँ कि उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई होगी, नॉट इवन इन फिल्म शी हैज़ एवर डन दिस काइंड ऑफ रोल, तो एक बहुत ही अलग उनका रोल रहा जिसका नाम है मिशिष देशपांडे। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहाँ पर वो एक गृहिणी, लाइक यू नो व्हेन यू लुक एट हर, वेरी वेरी सिंपल लुकिंग लेडी इन हर 50s, लेकिन आप कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल लेडी के पीछे भी कितने राज थे।

तेजाब से लेकर चंद्रमुखी पारों तक, आजा नचले से लेके मिसेस देशपांडे तक, ये है उनका सफर। लेकिन हर हीरोइन के लिए कैसी मिसाल है वो, हर एक लड़की के लिए मिसाल है कि अगर डांसिंग बनना है, डांसिंग दीवार, तो माधुरी दीक्षित की तरह। एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़न कि एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। जी हाँ, अगर आप डांसिंग हो या अभिनेत्री बनना चाहते हैं, हर किसी की एक मिसाल होती थी माधुरी दीक्षित। उनकी ज़िंदगी के नाम, उनके करियर के नाम, उनकी सफलता के नाम, उनकी अदाकारी के नाम, उनकी मुस्कान के नाम आज का ये सेगमेंट। और उम्मीद रखती हूँ कि बस ऐसे ही आप आपके ढेर सारे कॉल्स के साथ मुझे अक्सर सुनते रहिएगा एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

दिस इज KCMP 104.9 FM फनेश रेडियो पे मैं हूं नीलम आपके साथ और ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूं जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। कार्यक्रम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में, जहां पर हमारे कम्युनिटी में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स की एक्टिविटीज की जानकारी, हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि जिनसे करते हैं हम कुछ बातचीत फॉर देयर अपकमिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, कुछ हमारे शहर से जुड़ी हुई बातें, कुछ हमारे शहर के इवेंट्स की बातें, कुछ संस्था की बातें, और ये सारी बातें बनती है आपसे, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, आप ही के गानों से बनता है ये कार्यक्रम और आप ही की बातों से आपका सहकार होता है हमारे साथ एवरी वीकेंड। कुछ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गानों के साथ, कुछ इंस्पिरेशनल बातों के साथ कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम एंड इट इज़ ब्रॉट टू यू बाय आवर सीईओ वैशाली ठक्कर।

एकला चालो रे जी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशनल बातें गाने रहेंगे आप ही के साथ टिल 3 PM ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: फिर कार्ड यूज किया?
1: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
0: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
1: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
3: हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
4: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Ambreen at 214-909-6601
2: or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
4: Ambreen Salon, style that moves with you.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
1: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
1: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कुक मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
2: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
12: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
2: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट at Osho Transformation Retreat.
13: May 14th to May 17th, a 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.
14: एंड वेलकम बैक, दिस इज KCMP 104.9 FM फनेश रेडियो पे। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM फनेश रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और ये कार्यक्रम आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं एंड इट इज ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर। कार्यक्रम के दौरान जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की और एक्टिविटीज की जानकारी, हमारे शहर में होने वाले इवेंट्स की जानकारी, हमारी कम्युनिटी की जानकारी। और हमारा एक प्रयास होता है, छोटा सा प्रयास, टू हेल्प आवर एंटायर कम्युनिटी। कोई संस्था बड़ी हो या इंडिविजुअली आप कुछ प्रयास में हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपका प्रयास है, बिल्कुल हम उसकी प्रमोशन करेंगे ड्यूरिंग दिस आवर एवरी सैटरडे। एंड ऑन दैट नोट हम चलते हैं हमारे अगले प्रतिनिधि की तरफ, जो है फ्रॉम विवायो श्रीनाथदाम हवेली लोकेटेड इन कॉपल टेक्सास। उनके अपकमिंग इवेंट के लिए हमें कुछ जानकारी देंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव जिग्नेश जी, जिनसे करेंगे हम कुछ बातचीत। जिग्नेश भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर, एंड दिस इज फनेश रेडियो, योर लाइव ऑन एयर।
15: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल एज योर लिसनर, दिस इज अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून।
14: थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद अस ऑन फनेश रेडियो। सो टेल अस समथिंग अबाउट द अपकमिंग इवेंट दैट इज हैपनिंग स्टार्टिंग ऑन मे 28th एंड 29th।
15: या सो as you know, the Purushottam Mass, mm-hmm. or the Adhik Mass will be beginning starting tomorrow.
14: Jeez, sir.
15: And we have so many colorful events during this month. Ye Purushottam Mass or Adhik Mass ke jo mahina hai, it's Jee. Very auspicious for our Hindu culture, our Sanatan community.
14: True.
15: May 28th ko hum log श्रीनाथ धाम हवेली में श्री कृष्ण कथामृत का आयोजन कर रहे हैं। ये कथा जो है दशम स्कंध की, श्री भागवत दशम स्कंध की पूरी कथा श्री सागर भाई पंड्या जो हुई इज अ पीएचडी इन संस्कृत एंड इन अवर हिंदू स्क्रिप्चर वो उनके वक्ता है। और ये चार दिन हम एक बड़ी इवेंट कर रहे हैं, उसमें May 28 एंड May 29 का टाइमिंग आप सब लिस्टनर को बता दीजिए। गोइंग टू बी फ्रॉम 6 PM टू 8 PM, सो दैट्स गोइंग टू बी थर्सडे एंड फ्राइडे May 28 एंड May 29 फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स। May 30th विच इज अवर सैटरडे द कथा विल बी फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। और शनिवार को May 30th को हम लोग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन कर रहे हैं।
14: जी सर।
15: ऑन द सेम डे ऑन May 30th इन द मॉर्निंग आवर्स वी आर ऑल्सो डूइंग पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम यज्ञ शनिवार को जो हो रहा है।
14: जी, जी।
15: और May 31st का कथा का टाइमिंग है 10 सुबह से 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक।
14: जी।
15: सो फ्रॉम 28 to 31st चार दिनों के लिए इट्स गोइंग टू बी दशम स्कंध कृष्ण कथा अमृत कथा हम लोग आयोजित कर रहे हैं।
14: वंडरफुल।
15: इनकेस इफ एनीवन नीड्स एनी इंफॉर्मेशन दे कैन लॉग इन टू अवर वेबसाइट विच इज www.dallashoveli.org और यू कैन कॉल अस एट 469-422-1377। There is another number which is 510-274-9340. So main event is the Purushottam Sahasranam Yagna which will be held on Saturday May 30th in the morning. And the evening we will have the Govardhan Puja as well as the Annakoot.
14: वंडरफुल। ग्रेट इवेंट कमिंग अप। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई। एंड एज ही सेड इट इज dallashoveli.org इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन मोर डिटेल्स और एनी डायरेक्शंस फॉर द वेन्यू इटसेल्फ इट इज इन कोपल एंड वंस अगेन इट इज श्रीनाथ धाम हवेली लोकेटेड इन कोपल टेक्सास एंड द वेबसाइट इज dallashoveli.org वेर यू कैन फाइंड देयर मंथली कैलेंडर एज वेल एज ऑल द अपकमिंग इवेंट्स। थैंक यू सो मच इग्नेश भाई एंड वंस अगेन गुड लक टू यू। यस सर प्लीज।
15: निलंबन देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट बिकॉज़ द पुरुषोत्तम मास और अधिक मास विल बी स्टार्टिंग टुमारो।
14: जी
15: वी आर ऑल्सो डूइंग हिंडोला विच इज केसरी घटा का दर्शन एट 11 AM ऑनवर्ड्स टुमारो।
14: वंडरफुल। सो टुमारो 11 AM ऑनवर्ड्स इट इज एट हिंद बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस हिंदू मंथ स्टार्टिंग टुमारो दैट इज अ पुरुषोत्तम।
15: राइट।
14: जी जी।
15: सो ऑल द वैष्णव्स ऑल द सनातन हिंदू कम्युनिटी आर वेरी वेलकम टू अटेंड दिस ब्यूटिफुल इवेंट्स एंड दर्शन ऑफ ठाकुर जी।
14: ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई एंड वंस अगेन गुड लक टू यू एंड टू योर एंटायर कमिटी for all this beautiful events and I'm sure you will all do great job in this. Thank you so much sir.
15: Thank you so much.
11: जी सर। थैंक यू। रंग सुनहरा हूं गंगा जमुना मेरी आंखें मैं नए भारत का चेहरा मैं कल भी था मैं आज भी हूं मैं नवयुग का अंदाज भी हूं सारी दुनिया का घर मुझ में इस मिट्टी का आदर मुझ में मैं देश भक्त भी कह रहा हूं मैं नए भारत का चेहरा हूं मैं नए भारत का चेहरा मैं बेटी की मुस्कान में हूं मैं नारी के सम्मान में हूं मैं बेटी की मुस्कान में हूं मैं नारी के सम्मान में हूं विज्ञान में और किसान में हूं हर वीर में और जवान में हूं मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा।

0: शुरू से शुरू करते हैं।
1: जीरो से शुरू करते हैं।

104.9 FM Phoenicia Radio पे मैं हूँ नीलम आपके साथ. वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. ये कार्यक्रम जो आप अभी सुन रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम है कम्युनिटी राउंडअप. जी हाँ, जहाँ पर हमारी छोटी सी कोशिश होती है आपके लिए कुछ इवेंट्स की जानकारी, कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पिरिचुअल गाने एंड अलॉन्ग विद दैट आप ही की संस्था के प्रतिनिधि जुड़ते हैं हमारे साथ एवरी वीकेंड ऑन सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM. सिटीजनशिप, फ्री सिटीजनशिप वर्कशॉप, जी हाँ आपने सुना सही, फ्री एंड दिस इज फॉर एंटायर कम्युनिटी, हैपनिंग ऑन मे 30th एट माउंटेन व्यू कॉलेज इन डैलस टेक्सस. वंस अगेन इट्स अ फ्री कम्युनिटी वर्कशॉप एंड इट्स अ फ्री सिटीजनशिप वर्कशॉप एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द सिटी ऑफ डैलस. तो बिल्कुल आप जा सकते हैं इस फ्री कम्युनिटी इवेंट में, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हमारी कोशिश होती है ऐसे बहुत सारे फ्री इवेंट्स की जानकारी आपके लिए लाए, क्योंकि यही है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम और आप ही से बनता है ये कार्यक्रम हर शनिवार के दोपहर. वंस अगेन इट इज़ फनीशा रेडियो कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी वीकेंड. सेवा इंटरनेशनल एंड दे आर आस्किंग फॉर मे इज अ सीजन ऑफ माइलस्टोन्स. जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं ग्रेजुएशन, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, तो आपकी जो सेलिब्रेशन है उसे ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं कैसे, बाय गिविंग बैक थ्रू मंगल निधि. जी हाँ, दिस इज अ सेवा हिंदू मोबाइल मेंट्री, जहाँ पर आप इस पेंट्री में दे सकते हैं कुछ फूड जार्स, कुछ भी हेल्प आप करना चाहते हैं अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए. इट इज़ बाय सेवा इंटरनेशनल, सेवा डैलस चैप्टर की है ये एक प्रस्तुति एंड दैट इज़ कॉल्ड सेवा हिंदू मोबाइल पेंट्री. सो वंस अगेन इट इज़ sevausa.org, जहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एंटायर इनिशिएटिव एंड इट इज़ बाय सेवा इंटरनेशनल. और भी इवेंट्स की जानकारी देती रहूंगी, और भी कुछ गाने होते होंगे आप ही के साथ, हम प्रस्तुत करते रहेंगे ये सारी बातें ऑन 104.9 FM एवरी सैटरडे, ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर.

इस बहुत ही खूबसूरत बात के साथ मैं नीलम लूंगी आप सभी से अनुमति इजाजत। एंड एक बहुत ही अच्छी बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी, लुक बैक एंड गेट एक्सपीरियंस, लुक फॉरवर्ड एंड सी होप, लुक बैक एंड गेट एक्सपीरियंस, लुक फॉरवर्ड एंड सी होप, लुक अराउंड एंड फाइंड रियलिटी, लुक अराउंड एंड फाइंड रियलिटी, लुक विद इन एंड फाइंड योर सेल्फ, लुक विद इन एंड फाइंड योर सेल्फ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
8: चिकन बनाना, चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब make the chicken right.
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya, kahin pe kala jadoo, dhuan dhuan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
13: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
16: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: you love, love.
1: Picture abhi baki hai mere dost. Picture abhi baki hai.
2: Hot entertainment bhi. Stay tuned to Funasia. Funasia.
3: Attention stall owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
4: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
6: Samasya ka pakka samadhan.
5: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
9: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
9: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में
12: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA लोन एक्सपर्ट्स फैसला क्लैरिटी के साथ
13: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
14: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity, hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
15: Best Bollywood!
16: खुश आमदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Funasia Radio ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त अमरीन हसनात और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से जी हाँ अगर आप बहुत अरसे के बाद ट्यून इन हुए हैं Funasia Radio पर सो यू मस्ट बी सरप्राइज आई हैव रिटर्न्ड आफ्टर हाईएस्ट ऑफ 10 months दैट्स राइट 10 महीने के बाद लौट कर आई हूँ 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर आपके मनोरंजन आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आपसे होगी हमारी मुलाकात हर सैटरडे को 3:30 से लेकर 6 बजे तक और फिर संडे को बिटवीन 3 and 6 PM आई होप यू विल रिमेंबर दैट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीवन जॉइंस अस ऑन सैटरडे एंड संडे आफ्टरनूनस आज मैंने सोचा है कि हम शुरुआत करेंगे अपने सेगमेंट के साथ विच इज़ बोली प्यार की क्या है बोली प्यार की वेल प्यार की बोली है जो भी प्यार से बोली जाए राइट सो इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे सुरीले गीत सुनाएंगे जो कि हिंदी इंग्लिश या उर्दू में नहीं है। इसके अलावा किसी भी साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेज के गाने की आप कर सकते हैं फरमाइश सिंपली बाय कॉलिंग 972-235-5555। That's right, that's 972-235-5555। ये सेगमेंट हम पहले भी करते थे जब मैं वीकली शो किया करती थी तो बहुत पॉपुलर था। सो आई फिगर्ड कि अभी आप लोगों का मन होगा ऐसे कोई गीत सुनने का तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड विल सी कि ये सेगमेंट 30 मिनट्स का करेंगे या 1 आवर का या आवर एंड अ हाफ, ये तो आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा। सो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं इस बांग्ला सॉन्ग से। होप यू एंजॉय।

0: की कोरे तो के बोलबो सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह की आवाज में ये बांग्ला सॉन्ग. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग ये गाना तो हमने पहले सुना है, दैट्स बिकॉज देयर इज अ हिंदी वर्जन ऑफ दिस सेम सॉन्ग, सुनो ना संगे मरमर, जो मुझे बेहद पसंद है. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने बाय रिक्वेस्ट. इस सेगमेंट में हम उर्दू हिंदी इंग्लिश गाने नहीं प्ले करते बल्कि रीजनल सॉन्ग्स प्ले करते हैं, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पर. किसी भी भाषा का गाना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 9722355555. बट वुड लाइक टू बी फेयर टू एवरीवन, सो हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करेंगे. इफ यू कैन हियर मी राइट नाउ देन स्टे ऑन द लाइन, इफ यू ऑलरेडी ऑन होल्ड बिकॉज आई विल बी टेकिंग यू ऑन एयर मोमेंटरली. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: My name is Siddiq.
0: Yes, Siddiq Saab. How are you today?
1: I am very good. How are you? Fine. And again, as I said, I'm so happy that you are back and we do hear your voice. That's the only way we can hear. Other than that, we were thinking, where are you? What happened?
0: That is so sweet. Now, right now, I'm taking requests for regional language songs. Is there a song that you would like to request? And tell me which language.
1: Yeah, Pashto.
0: Pashto song, okay. And what's the name of your song?
1: Zuma Janan.
0: Janan? Okay, the one by Hadika Kiani?
1: Yes.
0: All right. That's a great song. I'd be happy to play it for you. Thank you so much for your call. And keep listening. Here is your Pashto song.

0: बट पार्थ, थैंक यू सो मच. आपने इतना प्यारा, इतना सुरीला उड़िया गाना रिक्वेस्ट किया, सुनकर वाकई में बहुत अच्छा लगा. एंड आई डोंट नो हु सौरभ भारद्वाज इज, बट ही इज गॉट अ वेरी सोलफुल वॉइस. ब्यूटिफुल. 49 मिनट्स पास्ट 3, इट्स 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हियर इन द मकिनी एरिया. टुडे इज हाई 87, लो ऑफ 71 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू द वन एंड ओनली आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. इफ आई प्लेस यू ऑन होल्ड, प्लीज धीरज धरें, थोड़ा पेशेंस रखें. योर कॉल विल बी आंसर्ड इन द ऑर्डर इट वाज रिसीव्ड. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हाय, आई एम डिंपल.
0: हाय डिंपल, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड.
0: ऑलराइट, बोलिए कौन सी भाषा का गाना रिक्वेस्ट करेंगी आज?
1: हरियाणवी सॉन्ग.
0: हरियाणवी सॉन्ग, लेकिन नाम क्या है गाने का? अच्छा, यू नो बिकॉज मेरी हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं है, आपने बहुत फास्ट से बोल दिया. कैन यू जस्ट टेल मी द वर्ड स्लोली एंड क्लियरली? चुंदड़ी जयपुर से मंगवाए. अरे बड़ा अच्छा किया, अगर मंगवाए रहते एक मेरे लिए भी मंगवा देते. नहीं, ऑल राइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच डिम्पल फॉर योर कॉल. आई होप यू आर एंजॉइंग योर सैटरडे.
1: Yes.
0: Here you go. Here's your song. और फिर से रिमाइंड कर दूं कि हम हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले कर रहे हैं. We have to be fair.

0: video song mein, you can see Sapna Chaudhary doing her little thumkas and stuff, looking cute as always. All right, ladies and gentlemen, you're listening to Dil Se, aur ye hai Boli Pyar Ki, jisme hum aapko aapki farmaish par regional language songs sunwa rahe hai. Har language ke sirf do hi gaane play honge. Just to kind of give you a heads up so you know kaun-kaun si language ke gaane ho gaye hai. We had one Bangla song, one Pashto song, ek Tamil gaana sunaya, ek Uriya gaana suna, aur ye tha hamara Haryadvi gaana. Ab aayye dekhte hai, agle caller ko sunna hai kaun si language ka song. Panisha Radio, aap on air hai, aapka naam? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: मेरा नाम कृष्णा है
0: जी. कृष्णा बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का
1: आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया, थैंक यू.
0: बताइए.
1: मैं, मुझे गुजराती लैंग्वेज का गाना सुनना है, गोतीलो.
0: ओह, आई लव दैट सॉन्ग, दैट इज गॉट सो मच स्पिरिट एंड एनर्जी इन इट, है ना? बहुत. और वो हर किसी को पसंद आता है, चाहे उनको समझ में आए कि नहीं आए, है ना? I will play that for you. आपका सैटरडे कैसा गुजर रहा है?
1: एकदम बढ़िया.
0: Awesome. Let's make it even better with this song, also known as, I think, Khalasi, right? Here it is. Enjoy. Here comes Gujarati song.

0: was Goti Lo, Gujarati song. And you know what? I am pleasantly surprised ke abhi tak kisi bhi language ka gana repeat nahi hua. So far, we played 6 different languages and none of them have been repeated. So I think that's awesome. We're doing good. 55 minutes past 3. You're listening to Dil Se on 104.9 FM. Main hoon aapki host, aapki dost Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 PM. We're going to continue this segment based on kaisa response mil raha hai. Aap call karke request karte rahenge. To ye segment hum at least 1 ghanta kar sakte hain, yani ke till 4:30 PM. Now, if you own a business and you want to advertise, you know what? I can help you out. I mean, here I am on my show. If you think ki meri baat karne ka andaaz acha hai, ya main aapka paigham, aapki business, aapki product ke baare mein अच्छे से सुनने वालों को बता सकती हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आप यहाँ स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली 214-725-7466. अभी नहीं, बाद में, अभी तो मैं शो कर रही हूँ, राइट? और यू कैन कॉल द स्टूडियो 972-235-5555. आई कैन हेल्प यू आउट. यू नो, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज इन आउटसाइड, वेल आउटसाइड इंडिया आई वुड से, नॉट जस्ट इन द US बट इन द वर्ल्ड. इससे बड़ा कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें साउथ एशियन म्यूजिक बजता है और जिसमें इतने लोग सुनते हैं. सो यू वांट टू मेक श्योर यू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड एडवर्टाइज विद फनीशा रेडियो. कॉल अस राइट नाउ 972-235-5555. लेट्स सी हूज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, थैंक यू फॉर होल्डिंग. क्या नाम है आपका? हेलो.
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हाय, माय नेम इज वासुधारा सेन.
0: जी वासुधारा, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: सो आई वांट टू रिक्वेस्ट अ बंगाली लैंग्वेज सॉन्ग.
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: इट्स कॉल्ड बाजलो छुट्टीर घंटा.
0: बाजलो छुट्टीर घंटा. ओके, तो छुट्टी हो गई है, তাহলে আমরা যাই, বাসা যাব. ঘন্টা বেজে গেছে, এখন তো বাসা যেতে হবে, তাই না? মজা করবো. অলরাইট, আই উইল প্লে দ্যাট ফর ইউ. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কল. ইয়ে রাহা আপকা বাংলা সং. হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল রেস্ট অফ দিস অসম স্যাটারডে, ব্রাইট এন্ড বিউটিফুল.
2: একদম গন্ডগোল করো, মন দিয়ে পড়াশোনা না করলে জীবনে কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না. আন্দোলন পর্যন্ত ভালো করে মুখস্থ করবে. আর একটা কথা মনে রেখো, তোমরা

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
7: अरे सारे तो सेम है
6: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
7: ओ हाँ ये तो अलग है
8: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
11: Astrology readings have our guidance only and results may vary.
12: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
13: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
12: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
14: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
15: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता
14: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स
15: कितने एप्स ट्राई किए यार बट
14: देन डोंट ट्राई अलोन एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट
16: मे 14th टू मे 17th अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org पॉज द नॉइज
17: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त अमरीन हसनात बैक ऑन Fun Asia आफ्टर 10 months. And now you'll be able to hear my show Dil Se every Saturday between 3:30 and 6 PM. और संडेज को 3 से 6 बजे के दरमियान होगी मुलाकात ये और बात है आई विल नॉट बी हियर टुमारो टुमारो, लेकिन क्यों ना आज का दिन एंजॉय करें। इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स का रिक्वेस्ट सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें बहुत प्यार से हम आपको रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवा रहे हैं। ज्यादा रूल्स नहीं है, बस ये है कि हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने सुनवा पाएंगे, और सो फार हमने 6 अलग भाषाओं के गाने आपको सुनवाए हैं, जिसमें से के बांग्ला के 2 गाने हम प्ले कर चुके हैं। I also want to let you know कि इस segment में मैं on air आपकी request लेती हूँ और play करती हूँ, so whole time could be anywhere from 5 to 10 minutes. So अगर वैसा patience है आप में तो ज़रूर call कीजिए और ज़रूर hold कीजिए. I will make sure that your song is played. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग। आई नो आप लाइन पर हैं काफी देर से। आपका नाम?
18: परवीन मोरानी।
17: जी परवीन जी, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना सुनेंगी?
18: पहले ये कि आपको वेलकम बैक, वी रियली मिस यू
17: एंड
18: नाउ वी आर हैप्पी दैट यू आर बैक। तो वो गुजराती गाना है पंखीड़ा ने पिंजड़ू जूनू जूनू लागे।
17: जी जी, काफी लाइक एक पुराना गाना है, राइट?
18: हाँ राइट।
17: मोहम्मद रफी का गाना है ये, राइट?
18: मुकेश
17: साहब का, दैट्स राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम आपके लिए प्ले करते हैं दिस हैपेंस टू बी द सेकंड गुजराती सॉन्ग टुडे, यानी कि अब हम और गुजराती गाने तो नहीं प्ले कर पाएंगे, ना बांग्ला की रिक्वेस्ट ले रहे हैं ना गुजराती की, बिकॉज उनके दो दो गाने हो गए।

0: What a fun Kannada song. That was Bangal Bangari. And jitna time ye gana chal raha tha, main saath saath dance kar rahi thi because it was sounding so much fun. It's 12 minutes past 4 and this is Boli Pyar Ki. You'll be able to hear this segment every Saturday between 3:30 and 4:30 p.m. It's 12 minutes past 4 and we're going to continue playing the songs. Bahut se log mujhse call karke ye pooch rahe the ki main kya kar rahi thi, kahan chali gayi thi, wagaira wagaira. कहाँ चली गई थी उसे रहने देते हैं, मैं वापस आ गई हूँ, उस पे फोकस करते हैं. बट आई ऑल्सो वांट टू लेट यू गाइस नो दैट आई डू इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट कोऑर्डिनेशन. सो इफ एनी ऑफ यू नीड हेल्प विद एनी टाइप ऑफ इवेंट, वेदर इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर, यू नो, डिनर पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, या कोई बहुत बड़ी वेडिंग या कॉर्पोरेट इवेंट, थ्रू आसम इवेंट्स आई विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू गाइस हैव एन आसम इवेंट. आई एम एन ए टाइप पर्सनैलिटी, सो आई एम ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. या अगर आपके इवेंट में आपको किसी अच्छे से प्यारी सी एमसी की जरूरत है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली 214-725-7466. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग. बोलिए, आपको कौन सा गाना सुनना है? हेलो हेलो,
1: आई वांट टू लिसन. हाय
0: जी,
1: आपका नाम? नेपाली सॉन्ग.
0: नेपाली
1: जी, मेरा नाम अजीत है.
0: नेपाली सॉन्ग, ऑलराइट. क्या नाम है आपके नेपाली सॉन्ग का, अजित?
1: यस, आई वांट टू लिसन दैट देवराली मा बतास चल्यो.
0: फिर से बोलिए क्या?
1: या देवराली मा बतास चल्यो फ्रॉम द मूवी कॉल्ड उनको स्विचर. सो देवराली मा EEAU.
0: ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं ढूंढती हूँ आपके लिए गाना.
1: And it's really good to hear your voice after so long.
0: Oh, I'm so glad. Thank you so much. Pata hai, kabhi-kabhi main kahin bahar jaati hu, and when I see a lot of Nepali people, I'm like, oh my God, these are my people. I need to say hi to them. Do they know who I am? Lekin I know ki koi mujhe chehre se pehchanta nahi hai. I know that I do have a lot of Nepali listeners. So guys, if you think you know who I am and you see me outside, please come say hi to me. That'll make me feel really good. So thank you, Ajit, for your call.
1: You're welcome.
0: Aapka Nepali song.
1: Thank you. Bye-bye.

0: माजिद की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये मीठा सा नेपाली सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग पेशेंटली. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो
1: केविन.
0: हेलो केविन, हाउ आर यू?
1: गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: चंदे, पंजाबी.
0: पंजाबी सॉन्ग. और गाने का नाम क्या बताया आपने?
1: कुड़ी नू नचन दे.
0: कुड़ी नू नचन दे. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच केविन फॉर योर कॉल.
1: आई टॉकिंग टू यू. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू.
0: वेल लाइकवाइज, ऑलवेज. थैंक यू सो मच. ये रहा आपका गाना. एंजॉय.

0: कुड़ी नू नचने दे। सुन रहे थे आप ये पंजाबी गाना केविन की फरमाइश पर। इट्स 19 मिनट्स पास्ट 4 इन दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय पेज 3 ईटरी। वेल, ब्रेकिंग न्यूज इज नाउ ऑन पेज 3। डैलस का एक नया जायका हब 121 में दे गॉट अ ग्रेट एम्बियंस एंड देयर फूड इज अमेजिंग टू। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि खाने का जायका अच्छा हो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट एट पेज 3। यू गेट द फ्लेवर, यू गेट द वाइब एज वेल एज द प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग। चाहे आप वहाँ ब्रंच के लिए जाएं, लंच करें या डिनर करें, it is perfect for everyone, foodies, dates, flavor chasers, whatever. Check it out. That's page 3 eatery. You can visit their website, which is page3eatery.com. I do want to thank everyone who is tuned in right now to Boli Pyar Ki. Believe it or not, ab tak hum 9 languages ke gaane play kar chuke hain. I'll do a quick recap. Bangla, Pashto, Tamil, Odia, Haryanvi, Gujarati, Kannada, Nepali and Punjabi. Aur बांग्ला और गुजराती के दो दो गाने हो चुके हैं, इसलिए दैट मीन्स कि अब हम और इन दो लैंग्वेजेस के गानों की रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे, सिंस वी हैव टू बी फेयर टू ऑल ऑफ आवर लिसनर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हेलो।
0: हेलो जी, आप ऑन एयर है?
1: जी, मलिक बोल रहा हूँ।
0: हेलो मलिक साहब, क्या हाल है आपका?
1: जी वेल, जी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू फनीशा, आई एम ग्लैड टू हियर योर वॉइस।
0: Thank you so much. Thank you. I appreciate the love. I appreciate the warm welcome.
1: आपके बिना फनीशिया सुना सुना लगता है। आपके आने से फनीशिया में चार चांद लगे हैं।
0: Oh, so sweet. Thank you so much. अब ये बताइए कि हम आपके दिन को कैसे चार चांद लगाएं? कौन सा ऐसा गाना है जो आज सुनने का मन है और कौन सी भाषा में है?
1: हाँ, मैं पंजाबी में सुनना चाहूंगा। एक पंजाबी का एक गीत है, इज माई फेवरेट, उतारियां।
0: ओ, वो तो मेरा भी फेवरेट है। आई लव दैट सॉन्ग, जितनी बार सुनूं उतनी बार अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग माय फेवरेट सॉन्ग मलिक साहब, एंड एंजॉय एंड यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। ये रहा जनाब हमारा फेवरेट पंजाबी सॉन्ग। और कौन है जो पंजाबी गाने सुनता हो और सतिंदर सरताज का फैन ना हो?

0: ना गल मेरे वस्ती रही उडारियां। सतिंदर सरताज को सुन रहे थे हम मलिक साहब की फरमाइश पर। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस का ये रिक्वेस्ट सेगमेंट बोली प्यार की। एंड इट सीम्स लाइक वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, दिस माइट कंटिन्यू ऑन टिल 5 PM, देखेंगे। वादा नहीं करती, बट वी विल सी। लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट कॉलर। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो,
1: हेलो, नीलेश बोल रहा हूँ।
0: जी नीलेश, बोलिए, क्या हाल है आपका?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मराठी।
0: मराठी सॉन्ग, ऑलराइट, दैट विल बी आवर फर्स्ट मराठी सॉन्ग टुडे। क्या नाम है आपके गाने का?
1: फूल पारिजात फ्रॉम मूवी राजा शिवाजी।
0: क्या नाम है? फूल
1: पारिजात।
0: फूल पारी पारिदा। ओके,
1: पारिदा।
0: ओके, सिंगर का नाम क्या बताया था आपने?
1: राजा शिवाजी मूवी का।
0: शिवाजी मूवी का नाम है?
1: राजा शिवाजी।
0: राजा शिवाजी, ओके। चलिए हम ढूंढते हैं आपके लिए, होपफुली आई विल गेट लकी एंड फाइंड दैट सॉन्ग। श्रेया घोषाल, ओके, गॉट इट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। ऑलराइट जनाब, ये रहा आपका मराठी सॉन्ग। यू नो, मराठी सॉन्ग हैज दिस डिफरेंट वाइब, दिस डिफरेंट फील टू इट। मतलब आज तक मैंने जितने मराठी गाने सुने ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड ये मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है अजय अतुल का है, अच्छा ही होगा। तो आइए देख लेते हैं, मेरा मतलब है सुन लेते हैं।

0: और अ मेलोडियस सॉन्ग भूल भरी रात सुन रहे थे हम ये मराठी सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनेशा रेडियो आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो.
1: हेलो
0: जी. केविन बात करें. आपका गाना हमने प्ले किया था. आपको क्या कोई दूसरी लैंग्वेज का गाना सुनना था?
1: नहीं पंजाबी एक और लगा दीजिए.
0: आई एम सो सॉरी. नहीं, क्योंकि देखिए हर लैंग्वेज के ना हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर रहे हैं. सो अब पंजाबी गाना
1: लगा दीजिए.
0: इस सेगमेंट में हिंदी नहीं होता. बट थैंक यू सो मच. आई एम सॉरी यू हैड टू होल्ड फॉर सो लॉन्ग. तो मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ इस सेगमेंट के रूल. इसमें हम सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने प्ले करते हैं. बट दैट मीन्स इज नो हिंदी, नो इंग्लिश, नो उर्दू. ठीक है, ये तीन लैंग्वेजेस तो हो गई साइड पे. दूसरा, जितनी भी साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तक 20-25 तो होंगी, राइट? उनमें भी हम सिर्फ हर लैंग्वेज के सिर्फ दो गाने प्ले करते हैं. दैट वे एवरीवन गेट्स टू हियर अ सॉन्ग फ्रॉम देयर लैंग्वेज. सो लेट्स सी हुज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है. आपका नाम? हेलो.
2: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर है. आपका नाम?
2: मेरा नाम बदना है.
0: जी बोलिए, कौन सा गाना, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी? Hello? Which language song would you like? All right, it seems the line got disconnected. Well, we're going to take a short break, but don't worry. Hum wapas laut kar aayenge, segment ko continue karenge 5 baje tak. So kahin jana nahi.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा.
6: कौन सा?
5: कैरेट लेन.
6: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
5: हाँ वही.
6: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
5: देखा, ढूंढ के दिया ना.
7: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carat Lane, a Tata product.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
17: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 p.m. That's right, I am back after 10 months of being off air. Ab aap mujhe weekends pe sun payenge between 3 and 6 p.m. It is 33 minutes past 4 on this Saturday evening. I hope you guys are doing well and enjoying our lovely show, Boli Pyar Ki, jisme bahut pyar se hum aapko sunwa rahe hain. रीजनल लैंग्वेजेस के गाने बाय रिक्वेस्ट, हर लैंग्वेज के, लेकिन हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर रहे हैं. अब आपका गाना चाहे सिंधी में हो या मलयालम में हो या भोजपुरी में हो, हम जरूर प्ले करेंगे, प्रोवाइडेड के पहले उसी लैंग्वेज के दो गाने नहीं प्ले किए जा चुके. जस्ट टू रीकैप सो एवरीवन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, वी प्लेड बांग्ला, पश्तो, तमिल, उड़िया, हरियाणवी, गुजराती, कन्नडा, नेपाली, पंजाबी, मराठी. And so Uriya ki, I think, I believe, ek hi gana hua hai, nahi, actually, haan, Uriya ka sirf ek hi gana hua hai. So there is still room in case you wanted to request a song. So let's see who's our next caller, Fun Asia Radio, aap on air hai, aapka naam?
2: Hello?
0: Ji.
2: Mere naam Vandana hai.
0: Vandana, boliye, kaun si language ka gana? आपकी ना आवाज बार बार कट रही है. जस्ट वॉन्ट यू टू नो द कनेक्शन इज रियली बैड. अच्छा कोई बात नहीं, बताइए आपके गाने का नाम क्या है.
2: गाने का नाम है झूमा झूमा गुलाबी बेड़ा रे.
0: झूमा झूमा झूमा या झूमो झूमो.
2: झूमा झूमा जे एच यू एम ए.
0: झूमा झूमा आगे
2: गुलाबी
0: गोलापी. ओके ठीक है, लेट्स सी. ओके लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग एंड प्ले. पुराना गाना है.
2: हाँ पुराना गाना है.
0: नो प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल प्ले दैट फॉर यू. हियर यू गो, सुनते हैं.

0: झुमा झुमा गुलाबी बेला रे, सुन रहे थे आप ये सेकंड उड़िया सॉन्ग। अब मैं जल्दी से सबको ये बता दूं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस का कोटा पूरा हो चुका है, ताकि आप नाराज ना हो जब आपकी बारी आए और आपका गाना हम प्ले ना कर पाए। विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट फॉर बांग्ला सॉन्ग्स, उड़िया सॉन्ग्स, गुजराती और पंजाबी सॉन्ग्स। उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, दे आर स्टिल ओपन, वी कैन स्टिल डू योर रिक्वेस्ट। 38 मिनट्स पास्ट फॉर दिस पार्ट ऑफ आवर शो, ब्रॉट टू यू बाय एजी FinTax, and it's one of the fastest growing tax firm in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. I'm actually planning to call them myself. Maine extension li thi aur ab I need some help. 469-942-9888 unka number hai, or you can visit agfintax.com. Let's see who's our next caller. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Trinada.
0: I'm sorry, फिर से बोलिए।
1: त्रिनाधा।
0: त्रिनाधा। ओके, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मुझको तेलुगु चाहिए।
0: तेलुगु सॉन्ग, और आपके गाने का क्या नाम है?
1: तेलुसा मनसा।
0: ओके, नहीं समझ में आया, पहला वर्ड क्या है?
1: तेलुसा।
0: तेलुसा
1: मनसा।
0: मनसा, ऑल राइट, क्या मतलब है इसका?
1: Do you know my heart?
0: Oh, is it that वो जो तू मिले दिल खिले वाला?
1: हिंदी वर्जन।
0: Oh, I love that. Yeah. That is awesome. Thank you for requesting that song.
1: That was actually the movie was first initially shot in Telugu. I think it was dubbed in Hindi.
0: I see, but they did a great job both ways. So here it is.
1: It's from the movie name.
0: Criminal.
1: Criminal. Uh-huh. Yeah, yeah.
0: All right, this is my first time hearing the original version. Let's see kaisa hai. Thank you, Trinada, for calling. Here's your Telugu song. And those of you who don't know, you know we have a Telugu station. That's right, Radio Sangam, 24/7 Telugu music ke liye.

0: तुमे ने दिल खेले और जीने को क्या चाहिए। ये कैसे पॉसिबल था कि इतना प्यारा गाना हम सुने और साथ में हम हिंदी वर्जन ना गुनगुनाए। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की ऑन 104.9 FM। ये था हमारा आज का पहला तेलुगु गाना। सरप्राइजिंगली आई गेस एवरीवन्स लिसनिंग टू रेडियो संगम, राइट? उन्हें फनीशा पे क्या जरूरत है तेलुगु गाना सुनने की। खैर, ये बोली प्यार की सेगमेंट विच इज जस्ट वंस अ वीक, यू ओनली गेट टू हियर इट on Saturday afternoons between 3:30 and 5 PM, yani ki sirf 15 minute baki hai ab aapki farmaishon ke liye. Let's see who's our next caller. Thank you so much, aap bahut sabr se patience se intezar kar rahe the apni bari ka. Aapka naam?
1: Hi, I'm Shilpa speaking.
0: Hi Shilpa, how are you?
1: I'm good, how are you?
0: I'm doing great. Boliye kaun si language ka gana request karengi?
1: Malayalam song.
0: मलयालम सॉन्ग, ऑलराइट। क्या नाम है आपके गाने का?
1: गाने का नाम है किलिए किलिए।
0: कैन यू स्पेल द फर्स्ट वर्ड?
1: या KILLYE।
0: करेक्ट, किलिए किलिए, यानी कि इसका क्या मतलब होता है?
1: इट्स ओ लिटिल बर्ड, ओ लिटिल बर्ड।
0: अच्छा, तो इसका आपको ओरिजिनल वर्जन चाहिए?
1: दिस इज फ्रॉम द मूवी लोका, LOKAH.
0: Yes. Okay, so that I believe is the new one, because there was an older song as well. Achha kiya maine pooch liya. Okay, thank you for your call. Enjoy Shilpa, and have a great Saturday. Aaiye sunte hain hamare segment ka pehla Malayalam song.

0: लोका फिल्म से लिया गया ये मलयालम सॉन्ग सुन रहे थे आपके लिए के लिए. एंड आई डू वांट टू मेंशन दैट फनीशा हैज मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज स्टेशंस. ओके, फनीशा पे आपको सुनने को मिलते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, राइट, हिंदी म्यूजिक, फिर है रेडियो संगम 24/7 तेलुगु, देन वी हैव बनकम रेडियो विच इज ऑल तमिल 24/7, देन वी हैव अपना पंजाब जिसमें आप सिर्फ पंजाबी म्यूजिक एंजॉय करते हैं, देन रेडियो कैरावान विच इज अगेन मोर बॉलीवुड जस्ट फॉर यू. आज के इस सेगमेंट्स में दिस इज बोली प्यार की जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवा रहे हैं. दिस इज गोना गो ऑन फॉर अनदर 10 मिनट्स. लेट्स सी हुज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो जी, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए सो आई कैन हियर यू एंड देयर इज नो फीडबैक. हाँ जी, आपका नाम? हेलो, आपकी आवाज कट रही है सर, आई कैंट हियर यू, व्हाट्स योर नेम?
1: लैम्पर, आई ड्राइविंग फॉर ट्रक, लैम्पर सिंह सिद्धू.
0: ओके, एंड व्हिच सॉन्ग, व्हिच लैंग्वेज सॉन्ग डिड यू वांट टू रिक्वेस्ट?
1: Your Punjabi no more have Punjabi or Hindi.
0: Oh, I'm so sorry because we can only...
1: Hindi.
0: I can play a Hindi song for you after 5 o'clock. Is that okay?
1: That's okay. Betab film. Betab movie.
0: Betab ya Pratab? Kya naam hai? Betab. Okay, I will play a nice song for you. Okay, I will do that.
1: Thank you
0: for your call. Well, that was very nice. वो नाराज भी नहीं हुए, उनको समझ में आ गई कि इस वक्त हम उनका पंजाबी गाना नहीं प्ले कर पाएंगे. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
2: आशीष लामिसा ने.
0: I'm sorry, मुझे समझ में नहीं आया. What's your first name?
2: आशीष.
0: आशीष, all right. Which language song did you want to request?
2: I want to dedicate to my newly appointment PM, Prime Minister of Nepal. We used to sing the song as well as...
0: Okay, a Nepali song. What's the name of the song?
2: Jai Mahakali.
0: Jai Mahakali?
2: Yeah, exactly.
0: All right, and it's a Nepali song? Okay.
2: It's a Nepali song.
0: Okay. I will play that for you. Thank you so much. And here is your song, Aziz. Here's the second and the final Nepali song for today.

0: was Jai Mahakali, a Nepali song. And इसी के साथ मैं recap कर दूं कि कौन सी languages के गानों की request अब हम नहीं ले पाएंगे. We've already played two Nepali songs, two Punjabi songs, two Bangla songs, two Odia and two Gujarati songs. यानी कि इन languages में हम और request नहीं ले पाएंगे. My apologies, nothing personal. That's just the rule of our segment, right? कि हर language के सिर्फ दो ही गाने play होंगे. Any other language, you're more than welcome to call 972-235-5555. दूसरी बात यह है कि हमारा ये सेगमेंट अगले 8 मिनटों में खत्म हो जाएगा. So let's see who are going to be the lucky callers today. Fanisha Radio, you're on the air. आपका नाम?
1: नमस्कार. जी, नमस्कार. मैं रविशंकर बोल रहा हूँ.
0: जी बोलिए सर, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: भोजपुरी गाना सुनना चाहूंगा मैम.
0: क्या नाम है आपके गाने का?
1: लागी नहीं छोटे रामा.
0: रागी रागी
1: नो लागी लागी नहीं छोटे रामा.
0: लागी नहीं छूटे रामा. ओके.
1: 1963 की फिल्म है मैडम.
0: कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं आपका गाना और प्ले करते हैं. थैंक यू. हियर्स आवर फर्स्ट भोजपुरी सॉन्ग ऑफ टुडे. वंस अगेन वी ओनली गॉट 7 मोर मिनट्स बिफोर बोली प्यार की एंड्स.

0: ये पुराना गाना है,
1: न्यू
0: नया गाना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल प्ले दैट फॉर यू. और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम और कोई रिक्वेस्ट ले पाएंगे कि नहीं. अच्छा, एक आखिरी जो ऑलरेडी ऑन होल्ड है उनकी रिक्वेस्ट प्ले करेंगे.

0: लागी नाही छूटे रामा, लता मंगेशकर जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये भोजपुरी गाना। इट इज 54 मिनट्स पास्ट 4। आई डोंट थिंक हमारे पास बहुत सारे गानों का वक्त रहेगा। लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट कॉलर। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हेलो, गौरव
0: जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: हरियाणवी।
0: हरियाणवी, ऑल राइट। क्या नाम है आपके गाने का?
1: बैरन।
0: बैरन,
1: या बी ए आई आर एन।
0: ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, हम प्ले करते हैं।

0: ऑलराइट, वादे के मुताबिक एक आखिरी गाना, आई होप कि वो ऐसी भाषा में है जिसके दो गाने अभी तक नहीं हुए. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है एंड यू आर आवर लास्ट कॉलर फॉर दिस सेगमेंट. आपका नाम?
1: हेलो जी, मेरा नाम श्रीरंग है
0: जी. बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: मराठी.
0: मराठी, ऑलराइट, दैट्स गोना बी आवर लास्ट मराठी सॉन्ग. बोलिए क्या नाम है गाने का?
1: अश्विनी, ये ना, ये किशोर कुमार ने गाया हुआ गाना है.
0: ओके, आई एम सो सॉरी, आवाज कट रही है. फिर से बोलिए पहला वर्ड क्या है?
1: अश्विनी.
0: अश्विनी ये ना. ऑलराइट, चलिए हम प्ले करते हैं आपका गाना. आई थिंक पुराना गाना है, राइट?
1: Yes, 1988.
0: All right, thank you so much for your call, ladies and gentlemen. अब लेकर चलते हैं हम आपको सेगमेंट के आखिरी गाने की तरफ, और इस बार गाना है मराठी भाषा में.

0: माझी माझी प्रीती अशी फुले मधुराणी तू ये ना तू ये ना जगू कसा तुझा विना मी राणी ग.
1: It was a fun song. वैसे ये हो ही नहीं सकता कि किशोर कुमार जी कोई गाना गाए और वो मजे का ना हो, अच्छा ना हो. So thank you. Today we played कितनी languages? 13 अलग अलग जुबानों के गाने play किए हमने. Everything from बांग्ला, पश्तो, तमिल, उड़िया, हरियाणवी, गुजराती, कनाडा, नेपाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, मलयालम as well as भोजपुरी. Thank you for making the show a success.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
9: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
13: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
14: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
13: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
15: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
16: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
17: चिकन बनाना
18: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब make the chicken right.
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
19: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
12: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
20: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
19: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
19: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
19: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
20: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
1: Hello, hello, hello, hello, Dallas. Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat, and I will be with you till 6 p.m. It is 5 minutes past 5 on the 16th of May, 2026. एंड यू नो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं बार बार आपको वक्त क्यों बताती हूँ, डेट क्यों बताती हूँ। वेल क्या पता आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, और ये भी तो हो सकता है ना अभी अभी अभी जगे हैं, आप अभी सोकर उठे हैं और आपको ये नहीं पता कौन सा दिन है, मैं कहाँ हूँ, कितने बज रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वी हैड अ फैंटास्टिक बोली प्यार की सेगमेंट, कितने सारे गाने प्ले किए, कितने सारे अच्छे अच्छे लोगों से बात हुई, बहुत मजा आया। वी मिस्ड यू, इन केस यू जस्ट जॉइंड इन, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। 87 degrees Fahrenheit is the current temperature. It's kind of gotten warmer. Well, the good news is this is the highest it's going to go for today. It's actually going to go down. Today's low was 71. Kal, there is a slight chance of rain. Ho sakta hai ho, ho sakta hai na ho, ho sakta hai kuch ilaqon mein ho aur kuch ilaqon mein na ho. So you're going to be okay. 86 for a high, 75 for a low. Ye hai janab hamara Bollywood segment, jisme ki hum Bollywood hits play karenge. हमारे एक लिसनर जिन्होंने हमारे पिछले सेगमेंट में कॉल की थी, पर अनफॉर्चुनेटली हम उनका गाना नहीं प्ले कर पाए थे बिकॉज हम पंजाबी गाने ऑलरेडी प्ले कर चुके थे। सो देन ही सेड कि हिंदी गाना लगा दो। अब जो हिंदी गाना उन्होंने कहा है, मैंने उनसे वादा किया था कि 5 बजे के बाद आपका गाना ज़रूर प्ले होगा। तो आज हम शुरुआत एटलीस्ट इस सेगमेंट की इसी गाने के साथ करेंगे, और ये गाना आपको ले जाएगा बैक इन टाइम लाइक इन दी 80s। एंड आप भी सोचेंगे कि जब मैंने ये गाना पहली दफा सुना था मैं कहाँ था या मैं कहाँ थी।

जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि फिल्म बेताब से लिया गया था। Doesn't it bring back a lot of memories? तो जनाब ये 80s का गाना था, अब क्यों ना 90s का एक गाना हो जाए। हम आहिस्ता आहिस्ता पायदान पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगले 20 मिनट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक और मेलोडियस गाने सुनवाऊंगी। 5:30 बजे के बाद टेम्पो को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, कुछ तेज कर देंगे, टू गिव अ जंप स्टार्ट टू योर वीकेंड।

90s की सुपरहिट फिल्म साजन से लिया गया ये टाइटल ट्रैक सुना आपने, जो कि माधुरी और संजय दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। आज के इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ रोमांटिक मेलोडियस गाने सुनवा रही हूँ। शुरुआत की थी 80 से 90s पर पहुंचे और अब आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस की तरफ से। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स, गैस स्टेशन वगैरह, वेल रवि समर किक ऑफ इज बैक, सो मार्क योर कैलेंडर June 3rd-4th सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। This event is going to be bigger. The entire warehouse is turned into a tropical experience. They've got crazy deals, new product launches, and free gifts all day long. You'll get to meet vendors, discover some of their best sellers, and you can stock up like never before. All this is happening at Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
3: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
0: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
4: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
0: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
7: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
0: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
7: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
8: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

फ्रेंकली स्पीकिंग, सीने से लगाए ना लगाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाय अच्छी होनी चाहिए. आई एम वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू टी. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम सो एडिक्टेड एंड दिस इज अ न्यू एडिक्शन. पिछले 2 साल से मैं रोजाना सुबह चाय पी रही हूँ. मैं पहले चाय नहीं पीती थी, दैट्स वाई इट्स एन एडिक्शन. सो रोज सुबह आई हैव टू हैव चाय, और रात को सोने से पहले आई हैव टू हैव चाय. और चाय खाली नहीं, चाय के साथ रस्क होना भी जरूरी है. नॉट केक रस्क बट द रेगुलर रस्क, और वो भी मक्खन लगा के. 5:38, ये तो है मेरी एडिक्शन. और दूसरी एडिक्शन क्या है? म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक. सो थैंक यू टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु आर कॉलिंग एंड वेलकमिंग मी बैक ऑन द एयरवेव्स ऑफ 104.9 FM. थैंक यू, बस आपके प्यार का, आपके साथ का जरूर की जरूरत है हमें. एंड एज आई मेंशनड अर्लियर, आई एम बैक ऑन 104.9 FM every Saturday between 3:30 and 6, or Sunday ko between 3 and 6 p.m. I'm only here on weekends, but everything else in my life is first class.

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कलंक फिल्म से लिया गया ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप। ये गाना वरुण धवन पर पिक्चराइज किया गया था। 42 minutes past 5 एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट गिव अवे फॉर यू। दिस इज योर चांस टू विन अ ग्रोसरी बास्केट फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन DFW। सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगी और आप जीतिए ये हैम्पर फिल्ड विद एसेंशियल ग्रोसरीज फ्रॉम देसी मंडी। लुइसविल में है ये मैं बता रही हूँ। एड्रेस क्या है, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने विन कर लिया तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ जाना है अपना गिफ्ट हैम्पर पिंक करने के लिए। सो कॉल कीजिए और मुझे बताइए एड्रेस। द फर्स्ट पर्सन टू कॉल टू गिव मी द एड्रेस wins the prize, as in the gift hamper from Desi Mandi. Meanwhile, we're going to continue the great music here at 104.9 FM.

0: ठुमका रहने दें, देसी मंडी का एड्रेस बता दें। लेट्स सी इफ आवर कॉलर हैज दैट आंसर। पनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। कैन यू प्लीज होल्ड द फोन इन योर हैंड। हेलो जी, थैंक यू सो मच, दैट साउंड्स मच बेटर। ओके, पहला सवाल ये है, हैव यू वन एनीथिंग फ्रॉम देसी मंडी बिफोर?
1: लास्ट मंथ।
0: ओ आई एम सो सॉरी, आप फिर क्वालिफाई नहीं करेंगे। विल हैव टू गिव दिस चांस टू अनदर पर्सन। सो वंस अगेन मैं क्वेश्चन पूछ लूं, आप लोगों को एड्रेस मांग रही हूं मैं देसी मंडी का, एंड इफ यू गिव मी द करेक्ट आंसर विच इज उनका एड्रेस, देन यू गेट ए gift hamper which is a basket full of essential groceries from Desi Mandi. Okay, try karte hain next caller ko. Fanisha Radio, radio ka volume please kam kar dijiye aur apna naam bataiye. Hello? Radio ka volume please band kar dijiye.
2: Ji.
0: Thank you. Aapka naam?
2: Mera naam Saida hai.
0: All right, and have you won anything from Desi Mandi before?
2: No.
0: Okay, तो हमको देसी मंडी का एड्रेस बताइए।
2: पूरा तो नहीं पता है, लुइसविल में है।
0: नहीं, पूरा एड्रेस चाहिए। लुइसविल तो मैंने ही बता दिया था। ओके, थैंक यू फॉर ट्राइंग। ऑल राइट, चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैंने तो आई थॉट बहुत आसान सवाल पूछा है। 9722355555 देसी मंडी का एड्रेस बताइए, ताकि जो गिफ्ट हैम्पर हम आपको दें, हमें इस बात की तसल्ली हो कि आपके पास एड्रेस है और आपको पता है कि हैम्पर लेने जाना कहाँ है। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
3: Hi, Bharat.
0: All right. Have you won anything from Desi Mandi before?
3: No.
0: Okay. तो हमें एड्रेस बताइए और जीतिए आज का गिफ्ट हैम्पर। क्या एड्रेस है उनका?
3: 420 East Round Grove Road.
0: बिल्कुल सही बताया। Unit 700 in Louisville. Congratulations. You got the gift hamper. Stay on the line and I'll get all the details. Meanwhile, let's enjoy this song. मुझे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला, मुझे तो ऐसा गिफ्ट चाहिए बुर्ज खलीफा जैसा।

एंड दैट्स बुर्ज खलीफा सॉन्ग. सुन रहे थे आप ये गाना जो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी पर पिक्चराइज किया गया था. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM. इफ यू'd लाइक टू एडवर्टाइज ऑन फन एशिया रेडियो, यू कैन कॉल मी हियर एट द स्टूडियो 972-235-5555, बिकॉज यू नो के अगर आप अपना मैसेज हमारी फ्रीक्वेंसी पर प्रमोट करेंगे तो वो आपके कस्टमर्स तक पहुंचे ही पहुंचेगा, क्योंकि हम खुद पहुंचाएंगे. मैं पहुंचाऊंगी अपने इस शो के जरिए. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. सुरमाया कुछ जो तो पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ.

Congratulations, Bharat, for winning that gift hamper from Desi Mandi in Louisville. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. वहां जाके ग्रोसरी लाइएगा, अच्छा सा खाना बनाइएगा, फिर मुझे कॉल करके खाने पे इनवाइट कीजिएगा. मतलब मेरा भी तो बनता है ना हक, कोई थोड़ा बहुत तो, मतलब थोड़ा बहुत तो बनता ही है ना. एक खाना नहीं, कोरमा, बिरयानी, समथिंग समथिंग समथिंग, पुलाव, कोफ्ते. नहीं नहीं, मतलब मेन्यू ऑर्डर नहीं कर रही,

That was Chamacello, taken from the film Raw One. Currently, the temperature in the McKinney area is 87 degrees Fahrenheit. मैंने सोचा था कि जैसे-जैसे शाम ढले की मौसम ठंडा हो जाएगा यहाँ मौसम जहाँ है वहीं रुका हुआ है. वैसे today's low is actually 71. Tomorrow there's a slight chance of rain and tomorrow's high 86, low of 75. I know मैंने कहा था कि मेरा show Sunday को भी होता है, लेकिन कल जो Sunday है उसमें मैं नहीं रहूँगी. तो देखिए आप बुरा ना मानिएगा, पहले से बता रही हूँ ताकि आपका दिल उदास ना हो, आपका दिल ना टूटे. वैसे जाते जाते, because I'm getting ready to play my last song, I just want to say thank you for being such good, such wonderful listeners. Good नहीं, बहुत अच्छे listeners हैं आप, बहुत प्यार देते हैं मुझे. वही प्यार तो है जो मुझे बार बार खींच के लाता है 104.9 FM की frequency पर. तो भाई आपके लिए मेरी यही दुआ है कि आप खुश रहिए, और इन केस आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं तो सोचिए, यू नो, खुश रहना सीखना पड़ता है आपको. और अगर सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए. देखिए ना, उसके नीचे आग लगी होती है लेकिन फिर भी सीटी मारता रहता है.

Positions are temporary. Ranks and titles are limited. But the way you treat people will always be remembered. इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ. हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा. स्वागत करते हुए इस खूबसूरत से सैटरडे की शाम में आप सभी का. वेल, आज तो सरप्राइज फैक्टर हो चुका है. वैसे तो मेरा और आपका साथ रहता है एवरी संडे की शाम 6 से 8, बट अभी आज मैं आपके लिए आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना था मुझे. और फिर मैंने कहा कि भाई अगर मुझे मेरे लिसनर्स के साथ मिलने का या फिर उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं निकी और पूछ, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर चली आई. वो कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए. तो इसी तरीके से मैं चली आई हूँ दोस्तों. तो आप भी अभी अगर आप अपनी गाड़ियों में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिर दोस्त के घर जा रहे हैं, या फिर खाना खाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे कि क्या करें, भाई 104.9 एफएम को ट्यून इन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है एंटरटेनमेंट का पूरा घमासान. फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू अमरीन जी. जी हाँ, अमरीन जी इज बैक ऑन द रेडियो और आ गई है वो आप सभी को एंटरटेन करने, हमारे पूरे डालस को एंटरटेन करने. तो अभी आप सुन रहे थे अमरीन जी को. आई थिंक एवरी सैटरडे बिटवीन 3:30 to 6 PM आप अमरीन जी को सुनेंगे, एंड ऑल्सो बिटवीन 3 PM to 6 PM एवरी संडे आप उनको सुनेंगे. सो प्लीज डालस वासी हो, आपकी सबकी चाहती, वेल मेरी भी चाहती, अमरीन जी इज बैक ऑन द रेडियो. तो यू शाउट आउट टू अमरीन जी, जिन्होंने आप सभी को इंटरटेन किया अभी मेरे से पहले और फिर बैटन दे दिया है मेरे हाथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के हाथ. तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली आज है. वैसे थोड़ी सी गर्मी वाली, कैसी भी हो हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के. वेल आज आपके और मेरे पसंद के गानों में कुछ एक अनोखी थीम रहने वाली है, कुछ एक अनोखा क्लू रहने वाला है. वेल गानों को गौर से सुनिए और अगर आपको कुछ क्लू पता चलता है तो आप मुझे फट से कॉल कीजिएगा. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. आपका और मेरा साथ रहने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक. तो ये पहला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ. गानों में जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन पर गौर फरमाइए, उनके नामों पर गौर फरमाइए और कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए. अगर आपको पैटर्न समझ में आता है, गिव मी अ कॉल. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं हमारे शो की तरफ और सुनवाते हैं आपको आज के हमारे शो का पहला गाना.

ब्यूटीफुल श्रेया घोषाल की आवाज में कलंक मूवी से सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। वेल, शो की शुरुआत में ही मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि शो की रहने वाली है कुछ अनोखी थीम। बस आपको एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के जो नाम है उन पे गौर फरमाना है, उनमें कुछ पैटर्न ढूंढना है। अगर आपको पैटर्न समझ में आता है तो प्लीज गिव मी अ कॉल। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ। आई थिंक अगले गाने से थोड़ी सी आपको हिंट आ जाएगी, और अगर आती है तो गिव मी अ कॉल।

जी हाँ, हमारे लिए आप और आपके लिए हम काफी है भाई। अगर आपके साथ 104.9 FM फनिशा रेडियो का साथ है तो आपके लिए कुछ भी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी आपके लाइफ में, इसकी गारंटी है हमारी। 24/7 365 days a year आपको हम करते हैं पूरा का पूरा एंटरटेन, आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। यानी कि यहाँ पर आकर आपके लिए ऐसे ऐसे गाने प्ले करते हैं, ऐसे ऐसे थीम्स लेकर आते हैं कि आपके दिलो दिमाग पर म्यूजिक का जादू छा जाता है। वही जादू आज आपके दिलो दिमाग पर छाने आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी अपनी अर्जी अपूर्वा, और रात साथ रहने वाला है हमारा रात के ठीक 9 बजे तक। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे शो की रहने वाली है एक अनोखी थीम। पहला गाना जो प्ले किया था वो था आलिया भट्ट का, दूसरा गाना प्ले किया आयुष्मान खुराना का, तो चलिए अभी तीसरे गाने की तरफ लेकर चलती हूँ। तीसरे गाने के बाद आने वाला है एक छोटा सा ब्रेक, अगर उसके बाद आपको कुछ थीम समझ में आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर 972-235-5555।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
4: इन प्लेनो।
3: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Tune सुनते ही brand click कर गया ना? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
14: Dill of Dallas. Heart to heart. Fun.

गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. वैसे तो आपका और मेरा साथ रहता है एवरी संडे की शाम 6 से 8, बट अभी आज ये साथ एकदम सरप्राइज वाला साथ हो गया है. और आज मैं आपका साथ दे रही हूँ सैटरडे की शाम को बिटवीन 6 to 9 PM. तो प्लीज प्लीज ट्यून इन कीजिए 104.9 FM फनिशा रेडियो पर, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे होने वाला है फुल ऑन एंटरटेनमेंट. गानों की बौछार होने वाली है, ऐसे धमाकेदार गाने चल रहे हैं, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के. और आपके पसंद के गानों में आज एक अनोखी थीम लेकर आई हूँ. वैसे मैंने हाफ ऑफ द आवर ऑफ आर शो तो हो चुका है. वैसे मैंने जिन्होंने अब मुझे शुरुआत से सुना है उनको मैंने बता चुकी हूँ कि ऐसे गाने आज मैं प्ले कर रही हूँ जहाँ पर आपको एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के नामों पे गौर फरमाना है. जी हाँ, एक्टर एक्ट्रेसेस के नामों पे गौर फरमाइए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और थीम को सोचने की कोशिश कीजिए. वैसे तो अगर आपको मैं अभी हिंट दे दूंगी ना तो थोड़ा सा आपको पूरा थीम ही समझ में आ जाएगा. मुझे एक दो लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थीम को पहचानने की. उसमें से कमलेश जी बिल्कुल एप्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी थीम पहचान ली है और उन्होंने मुझे बिल्कुल सही जवाब दे दिया है. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मोर कॉलर्स जो मुझे कॉल करके बताएंगे कि आज के हमारे शो की थीम क्या रहने वाली है. एक छोटा सा हिंट आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नामों पर गौर फरमाना है और उसमें से कोई पैटर्न अगर आपको ढूंढने को आता है तो फिर आपको मुझे फट से कॉल करना है. स्टूडियो का नंबर 9725555555.

वेल जमाल कुदू सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी एनिमल. वैसे तो एनिमल 2 की भी बातें चल रही है, पता नहीं कब आने वाली है एनिमल 2, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिमाग से धुरंधर का फीवर ही नहीं निकल रहा है दोस्तों. माय गुडनेस, मैंने फाइनली फाइनली धुरंधर 2 देख ली है एंड आई वॉज इन ऑ ऑफ रणवीर सिंह. क्या दिखे है भाई रणवीर सिंह इसमें. आई एम सो लविंग द मूवी और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. सॉन्ग्स भी अच्छे थे, बट आई मस्ट से कि धुरंधर 1 के गाने मुझे ज़्यादा पसंद आए. जी हाँ, बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे. धुरंधर 2 इट वॉज ऑल सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी. रणवीर सिंह वॉज जस्ट टॉप नॉच. वेल आपको बताया है कि थीम, जी हाँ थीम आपको बचानी है हमारे शो की. मुझे 2-3 कॉल्स आके गए हैं, तो अभी चलिए इंतजार की घड़िया जो है वो खत्म कर देती हूँ और आपको रिवील कर देती हूँ आज के हमारे शो की थीम. थैंक यू सो मच कमलेश जी. एंड नीलम का कॉल आया था, नीलम ने भी बिल्कुल सही थीम पहचानी है. वेल दोस्तों, फर्स्ट हाफ आवर और शो में मैंने आपको गाने सुनवाए थे आलिया भट्ट के, आयुष्मान खुराना के, उसके बाद आया था भूमि पेडनेकर का नंबर, और अभी जो गाना आपने सुना जमाल कुदू उसमें थे बॉबी देवल. तो कुछ आ रहा है थीम समझ में. ए फॉर आलिया भट्ट, बी फॉर बॉबी देवल, तो अभी चलिए सी फॉर चित्रांगदा सिंह से आपको गाना सुनवाती हूँ. तो यही है हमारे शो की थीम, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. जी हाँ, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के नामों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको गाने सुनवाने वाली हूँ. तो अगर ऐसे कोई एक्टर, अभी तो फिलहाल सी चल रहा है, सी से आपको चित्रांगदा सिंह का गाना सुनवाने वाली हूँ. डी से अगर आपके कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, जल्दी से जल्दी वो फ़ोन उठाइए और मुझे घुमा के बताइए कि कौन से है डी वाले आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का नाम और कौन सा उनका गाना आप सुनना चाहते. 972-235-5555. और यही है आज के हमारे शो की थीम, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नामों से गाने आपको सुनवा रही हूँ.

0: क्या बात है भाई, चित्रांगदा सिंह का गाना सुने थे हम नेहा कक्कर की आवाज में फ्रॉम द मूवी गब्बर इज बैक। एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गाने सुनवा रही हूँ आपको। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, अभी बारी है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू अप टू जेड। जी हाँ, जो भी आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, जिनका भी उनका फेवरेट जो अल्फाबेट है उनका और उनका फेवरेट गाना, जी हाँ ये भी आपको मुझे बताना है। स्टूडियो का नंबर 9722355555। ऑलरेडी मुझे, जी हाँ आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मुझे डी और ई का गाना ऑलरेडी मिल चुका है। सो अभी आपको यू नो अगर डी और ई वाले आपकी फेवरेट एक्ट्रेस एक्ट्रेस होंगे तो सॉरी आपने बस मिस कर दी है। अभी आपको एफ के आगे वाले गाने मुझे बताने हैं, तो जल्दी से जल्दी कॉल घुमाइए और बताइए मुझे गाने। तो डी से आपको चलिए सुनवाने चली हूँ गाना दिलजीत सिंह का, और ये गाना हमें रिक्वेस्ट किया है छोटे से प्यारे से अद्वीक ने। तो चलिए दिलजीत दोसांझ का ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, सुनते हैं इश्क दी बाजिया।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं, कभी मैं हूर हूर

वेल, बहुत ही घमासान आपकी रिक्वेस्ट की जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लाइन अप हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जी हाँ, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी डी हो चुका है, अभी बारी है ई की। कृष्णानु साहब का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि इमरान हाशमी का वो गाना सुनना चाहते हैं, मेरी पसंद का। तो इमरान हाशमी का गाना कृष्णानु जी के लिए लगाना चाहती हूँ आपके लिए। तो अगर आपकी भी कोई फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेस है, अभी तो ई हो चुका है, आपको एफ के आगे से आगे वाले जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में ये गाने रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जो भी गाने आप रिक्वेस्ट करेंगे, द ओनली कंडीशन इज दैट, मुझे बहुत अफसोस होता है जब आप लोग इतने अच्छे से कॉल करते हैं और गाने बताते हैं एकदम बहुत पुराने, लाइक 80s के या 70s के। सो आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द शो, हम 1990s के गाने ही के बाद के गाने ही यहाँ पर प्ले कर पाएंगे। तो द ओनली कंडीशन इज दैट जो भी गाने आप रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउ। ई लेटर हो चुका है, अभी बारी है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड यू नो हाउ द अल्फाबेट्स गोज। सो आप वैसे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो का नंबर 9722355555। फिलहाल बारी है ई यानी कि इमरान हाशमी की।

ब्यूटीफुल दोस्तों मोहित चौहान की अमेजिंग मखमली आवाज में सुने थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अमेजिंग मूवी थी दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गिव इट अ वॉच। इमरान हाशमी, प्राची देसाई, अजय देवगन और कंगना रनौत पे पिक्चराइज है। अमेजिंग अमेजिंग मूवी और पूरी स्टार कास्ट भी बहुत ही अमेजिंग थी। तो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज प्लीज गिव इट अ वॉच। एक्टर्स और एक्ट्रेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको गाने सुनवा रही हूँ। देखिए ए बी सी डी ई हो चुका है, ई से अभी अभी आपको इमरान हाशमी का गाना सुनाया, तो चलिए बढ़ते हैं एफ की बारी है अभी। तो एफ से आपको गाना सुनवाती हूँ। एफ से मुझे गाने की रिक्वेस्ट आई है मीरा जी की तरफ से और वो गाना सुनना चाहती है फरहान अख्तर का।

0: राज की रिक्वेस्ट पर आप गोगो को गाना सुनवा रही थी फ्रॉम द लेटर एफ, जो कि फरहान अख्तर पे पिक्चराइज था ये गाना।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल।